FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 57 सेकंड हो रहे हैं। आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू

0: ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से दो दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से हॉर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रभु स्मरण के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

विराम जो खटखटवासी हैं, कण कण में व्याप्त हैं और करुणामयी हैं, भक्तवत्सल भी हैं, ऐसे प्रभु श्री राम के श्री चरणों में जगह मिल जाए तो इससे बढ़कर और भला क्या सुख हो सकता है, क्या खुशी हो सकती है। और यह रटना, यह लगन आठों याम अगर रहे तो ये आराधना निश्चित ही सफल होगी। तो क्यों ना हे मन, प्रभु के श्री चरणों को उन्हें स्मरण कर, भज, दिन रात उन्हें याद कर, निश्चित रूप से श्री चरणों में जगह तो मिलेगी।

घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, आली मोहे लागे वृंदावन नीको। ये वृंदावन धाम, इसके रज कण स्पर्श भी अगर हो जाए तो मन पुलकित हो उठता है, जीवन धन्य उठता है। और हो भी क्यों ना, आखिर कान्हा का प्रिय धाम जो है, प्रिय स्थल है।

0: आप सुन रहे थे अभी संवेक स्वर में देशभक्ति पर रचना को। इसके अलावा आपने जिन गायक स्वर में भक्ति पर रचनाएं सुनी वे गायक स्वर थे पंडित जसराज साथी, वंदना सिंह, भावना लोनकर और अंशुना सक्सेना के। आज का वंदना कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। चिंतन बंधु क्रम में लीजिए प्रस्तुत है कर्मफल संबंधी विचार। आलेख जय कुमार मुद्गल, स्वर श्री कृष्ण शरद का है।
1: श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मैं कर्म करने से एक क्षण के लिए भी रुक जाऊं तो सारा विश्व ही नष्ट हो जाएगा। मुझे कर्म से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं, मैं जगत का एकमात्र प्रभु हूं। फिर भी मैं कर्म क्यों करता हूं? इसलिए कि मुझे संसार से प्रेम है। ईश्वर अनासक्त है। क्यों? इसलिए कि वह सच्चा प्रेमी है। उस सच्चे प्रेम से ही हम अनासक्त हो सकते हैं। जहां कहीं सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति है, वहां जान लेना चाहिए कि वह केवल भौतिक आकर्षण है, केवल कुछ जड़ कणों का दूसरे जड़ कणों के प्रति आकर्षण हो रहा है। मानो कोई एक चीज दो वस्तुओं को लगातार निकटतर खींचे ला रही है, और यदि वे दोनों वस्तुएं काफी निकट नहीं आ सकती तो फिर कष्ट उत्पन्न होता है। परंतु जहां सच्चा प्रेम है, वहां भौतिक आकर्षण बिल्कुल नहीं रहता। ऐसे प्रेमी चाहे सहस्रों योजन दूरी पर क्यों न रहें, उनका प्रेम सदैव वैसा ही रहता है। वो प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, उसमें कभी कोई कष्टदायक प्रक्रिया नहीं होती। इस प्रकार की अनासक्ति प्राप्त करना सारे जीवन भर का कार्य है।

परंतु इसका लाभ होते ही हमें अपनी प्रेम साधना का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है और हम मुक्त हो जाते हैं। तब हम प्रकृति के बंधन से छूट जाते हैं और उसके असली स्वरूप को जान लेते हैं। फिर वह बंधन में नहीं डाल सकती, तब हम बिल्कुल स्वाधीन हो जाते हैं और कर्म के फलाफल की ओर ध्यान ही नहीं देते।

0: और ध्यान ही नहीं देते। अपने बच्चों को जो हम देते हैं तो क्या बदले में उनसे कुछ मांगते हैं? ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लिए काम करें। इसी प्रकार किसी दूसरे पुरुष, किसी नगर अथवा देश के लिए हम जो कुछ कार्य करें उसके प्रति वैसा ही भाव रखें। उनसे किसी प्रकार के प्रतिदान की आशा न रखें। यदि हम सदैव ऐसा ही भाव रखेंगे तो हम दाता हैं और जो कुछ हम देते हैं उससे कुछ प्रतिदान की आशा नहीं रखते, तो उस कर्म में से हमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति तो तभी होती है जब हम प्रतिदान की आशा रखते हैं। यदि दासवत कार्य से स्वार्थपरता और आसक्ति उत्पन्न होती है तो अपने मन का स्वामी बनकर कार्य करने से अनासक्ति से उत्पन्न आनंद का लाभ होता है। हम अधिकांशतः अधिकार और न्याय की चर्चा करते हैं, लेकिन ये सब बच्चों की बातों के समान हैं। मनुष्य के चरित्र को नियमन करने वाली दो वस्तुएं होती हैं, बल और दया। बल का प्रयोग करना सदैव स्वार्थवश ही होता है। दया दैवी संपत्ति है। भले बनने के लिए हमें दयायुक्त होना चाहिए। यहाँ तक न्याय और अधिकार भी दया पर ही प्रतिष्ठित होने चाहिए। कर्म फल की लालसा तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं।
1: आप सुन रहे थे अभी चिंतन बिंदु क्रम में कर्म फल संबंधी विचार, आलेख जय कुमार मुद्गल और स्वर श्री कृष्ण शरद का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण।

हाथ में अपनी वीणा लिए हरिगुण गाते हुए एक बार देवर्षि नारद नारायण के समक्ष क्षीर सागर जा पहुंचे। यद्यपि शिवजी ने नारद जी को कामदेव की करतूत पर अपनी विजय का हाल भगवान पर प्रकट न करने का परामर्श दिया था, फिर भी देवर्षि ने प्रभु से कामदेव का चरित्र कह सुनाया। प्रभु से ये बात छिपी न रही कि नारद जी को कामदेव पर विजय पा लेने का अभिमान हो गया है। भक्तों का कल्याण प्रभु का गुण है, अतः अभिमान के अंकुर को नारद जी के मन में से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने 400 कोस विस्तार वाले एक माया नगर की रचना की और उसे वैकुंठ से भी अधिक सुंदर बना दिया। इस माया नगरी के राजा शील निधि ने अपनी अति सुंदर कन्या विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचा। इस अनिंद्य सुंदरी का वरण करने के लिए अगणित राजा वहां आ पहुंचे।

आप सुन रहे थे अभी श्री रामचरित मानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण, गायक स्वर भूपेंद्र सिंह और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सरोद वादन। कलाकार होंगे उस्ताद अमजद अली खां। संध्या 6:15 पर कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी संतुलित उर्वरक उपयोग खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत। डॉक्टर मनीष कामत की वार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय होगा ऊसर सुधार हेतु सामयिक कृषि कार्य। इसी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे किसान वीरेंद्र जोशी से वीरेंद्र सिंह की भेंट वार्ता। इस भेंट वार्ता में बातचीत का विषय होगा वर्मी कंपोस्ट उत्पादक किसान उत्पादक। संध्या 6:45 पर भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन प्रसारित किया जाएगा। संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे ब्रज काव्य सुधा के अंतर्गत कवि हरि बाबू ओम का काव्य पाठ। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा शाम सुहानी शाम 7:31 पर। और श्रोताओं के ही व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा गीत बात एसएमएस दिन में 12 बजे।

बहनें कार्यक्रम सुनेंगी वनिता लोक दिन में 1:15 पर। आज इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य और संतुलन का मार्ग योग और एकाकी परिवार और बच्चों को संस्कारित कैसे बनाएं, इन दोनों विषयों पर चर्चा की जाएगी। डॉक्टर आभा पांडे की वार्ता प्रसारित की जाएगी, शीर्षक होगा सुधी तेरी सुध आई। साथ ही कुछ घरेलू टिप्स भी बहनें इसी कार्यक्रम में सुन सकेंगी। दोपहर 2:30 पर सुनिएगा NCERT एवं CIT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। युवाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 5:30 पर। आज इस कार्यक्रम में सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और शिक्षा जीवन का आधार, इन दोनों विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसी कार्यक्रम में अजीत सिंह की विज्ञान

वार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे और बढ़ते खतरे। ब्रज लोकगीत कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा दोपहर 12:30 का। आज इस कार्यक्रम में कलाकार होंगी विनीता शर्मा। हेलो आकाशवाणी सुनिएगा पूर्वाह्न 11:00। ब्रज दर्पण कार्यक्रम आज आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। कार्यक्रम आबोहवा 9:25 पर सुबह आप सुनेंगे। इस कार्यक्रम में अशोक गुप्ता जानकारी देंगे स्वच्छता और पर्यावरण विषय पर। सुबह 9:00 सुनिएगा ब्रज विरासत संरक्षण एवं संवर्धन, इस विषय पर ओपी सिंह की ली गई लक्ष्मी नारायण तिवारी से भेंटवार्ता। ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में प्रातः 7:31 पर आज आप सुनेंगे ब्रज की माटी तोहे प्रणाम। इस कार्यक्रम में आज रश्मि शर्मा जानकारी लेकर आएंगी मंदिर श्री द्वारकाधीश जी में राग भोग सेवा और पर्व। और पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आज आप सुनेंगे प्रातः 7:00। ये था आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: खेती की बातें, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में। आज नया फल उद्यान लगाते समय सावधानियां जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, नया फल उद्यान लगाने से पहले उसके लिए उचित स्थान की देखभाल करना आवश्यक है। स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर पौधे अपनी वृद्धि सुचारू रूप से कर सकें, साथ ही साथ उन पर अच्छी फसल हो सके, जिससे उद्यानकर्ता को अधिक से अधिक लाभ हो। स्थान का चुनाव करते समय कुछ इन बातों का ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले हम जलवायु को ही लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि फल वृक्षों में विभिन्न तापक्रम सहन करने की काफ़ी क्षमता होती है, परंतु फिर भी कुछ फल वृक्ष निश्चित तापक्रम के ऊपर या नीचे फलत नहीं करते हैं। इसलिए विभिन्न फल वृक्षों को ऐसे तापक्रम में उगाना चाहिए जहां पर उसकी वृद्धि तथा फलत अच्छी प्रकार से हो सके। वर्षा की मात्रा और उसका वितरण फल उत्पादन पर विशेष प्रभाव डालता है। फूल के समय अगर वर्षा हो जाती है तो फूल के अंग नष्ट भ्रष्ट हो जाने से या पराग बह जाने से फलत नहीं हो पाती। अधिक वर्षा के कारण भी बहुत से फल वृक्षों की जड़ें सड़ जाती हैं तथा इसके विपरीत कम वर्षा होने से बहुत से पौधों को अत्यधिक सिंचाई देनी पड़ती है। मिट्टी को उद्यान का आधार कहा जाता है, इसलिए मिट्टी का चुनाव फल वृक्षों के अनुरूप होना चाहिए। फल उद्यान में दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी समझी जाती है। जहां तक हो भूमि अधिक गहरी होनी चाहिए। इसके नीचे अधिक गहराई तक कोई भी कड़ी सतह कंकड़ों या पत्थरों की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी दशा में फल वृक्षों की जड़ें भूमि से अधिक गहराई तक नहीं पहुंच सकती हैं। परिणाम स्वरूप फल वृक्ष सूखने लगते हैं। अधिक उथली भूमि जहां पर हमेशा पानी भरा रहता हो फल उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त नहीं समझी जाती। फल वृक्षों की अच्छी फलत के लिए उपजाऊ भुरभुरी हल्की दोमट मिट्टी आदर्श मानी जाती है। अधिक क्षारीय और अम्लीय मिट्टी फल वृक्षों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। रेतीली मिट्टी में खाद तत्वों का अभाव रहता है, इसलिए इसको चुनने में अधिक खाद और पानी देना पड़ता है। ऐसा ज्ञात किया गया है कि मिट्टी में थोड़े चूने की मात्रा उपस्थित होनी चाहिए, क्योंकि इससे फलों में मिठास यानी कि मीठापन आ जाता है। अधिक भारी या चिकनी मिट्टी में जल निकास की असुविधा रहती है, इसलिए ऐसी मिट्टी का चयन भी न करना चाहिए। बगीचे का आकार और उसकी सफलता भूमि के धरातल के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करती है। इसके लिए बहुत ऊंची नीची भूमि नहीं चुननी चाहिए, क्योंकि ऐसी भूमि में जल द्वारा कटाव अधिक होता है तथा खाद्य पदार्थ मिट्टी के साथ बह करके नीचे चले

0: जाते हैं। इसके विपरीत निचली भूमि में पानी एकत्र हो जाता है, जिससे पौधों की जड़ें सड़ जाती हैं। बाग लगाने के लिए मामूली ढलानदार और समतल भूमि अच्छी रहती है। बाग बाजार के पास होना चाहिए, क्योंकि फल शीघ्र नष्ट होने वाली फसल है। अगर इसको समय पर बाजार नहीं पहुंचाया गया तो फल सड़ने लगते हैं। किस्म खराब हो जाने से बाजार का मूल्य भी कम मिलता है।
1: आप सुन रहे थे अभी कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आप जानकारी ले रहे थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत से। विषय था नया फल उद्यान लगाते समय सावधानियां। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

प्रस्तुत है पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का ये पहला गीत साथियों आप सबकी नजर इस गीत से है।

ओपी नैयर के लिखे इन बोलों को आवाज़ें दी थी मोहम्मद रफी, गीता दत्त ने। फिल्म थी 12 o'clock और संगीत दिया था ओपी नैयर ने और गीत मजरूह सुल्तानपुरी का था। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में लविन शिमला का आपने फिल्म का ये गीत सुना। राजेंद्र कृष्ण ने शब्दों में ढाला था और इकबाल कुरैशी का संगीत था। अब आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सुन रहे थे अभी हेमंत कुमार की आवाज़ में फिल्म हाउस नंबर 44 का ये गीत। साहिर ने इन बोलों को अपने लेखनी में ढाला था और संगीत SD बर्मन का था। साथियों, इस वक्त आप आनंद दे रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। तो आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आपने सुना अभी मदारी फिल्म के गीत को लता मंगेशकर मुकेश की आवाज में फारूक कैसर ने लिखा था, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। साथियों, इसी गीत के साथ ही आज का ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

साथियों कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। इसमें प्रातः के 10 बजे हैं श्रोताओं। इस समय प्रसारित होने वाले NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण अब आप दोपहर में 2:30 पर सुन सकते हैं। तो समय याद रखिए, आज दिन में 2:30 पर। सूचना समाप्त थी और अब समय हो चुका है अगले प्रसारण का, तो बस अब से कुछ ही देर में।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूरे किए 12 वर्ष। प्रधानमंत्री ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्रालय ने सीतापुर जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को दी मंजूरी। 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर होगी स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय में की नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कल 12 वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि यह उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सेवा, सुशासन और समृद्धि के इसी पंथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई प्रमुख लोगों ने बधाई दी। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित इस 12 वर्षीय परिवर्तनकारी नेतृत्व ने अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए भारत को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नई ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित किया है। श्री योगी ने कहा के कालखंड पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक प्रेरक अध्याय है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
3: 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक

0: आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जय प्रकाश शिवहरे ने कल लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सरकार ने जन विश्वास के तीसरे चरण के लिए पहल शुरू कर दी है।
2: भारत सरकार ने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए जिस तरह के कदम लिए हैं, खासकर जन विश्वास एक और जन विश्वास दो के द्वारा बहुत सारे एक्ट उन प्रावधानों को हटाया गया और अब 12 वर्ष पूरे हुए हैं तो भारत सरकार ने जन विश्वास फूल के लिए पहल शुरू की और अब जो प्रोसीजर पार्ट फोकस करके इस तरह के चेंजेस किए जाने चाहिए, एक बिग टाइम लिया जा रहा है।
1: रक्षा मंत्रालय ने प्रदेश के सीतापुर जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की इस पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में प्रदेश में प्रस्तावित सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन परियोजना के प्रगति की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। परियोजना को केवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में 9 क्षेत्रीय जोन में प्रस्तावित केंद्रों की संरचना प्रस्तुत की गई। प्रत्येक जोन में एक उत्कृष्टता केंद्र तथा उससे जुड़े क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र विकसित किए जाएंगे। परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण एवं प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रशिक्षित युवाओं के लिए 80% प्लेसमेंट सुनिश्चित करने की योजना है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: एक अन्य बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और पारिश्रमिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डिजिटल नवाचार के अभियान को गति देने के लिए कल लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभिनव पहल डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाती है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को प्रस्तावित नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की।
4: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहां ऑनलाइन जुड़ते हैं, अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी। आने वाले दिनों में भारत सरकार की

0: गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे पूर्व सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व समाजवादी चिंतक स्वर्गीय गौरी शंकर राय की आज 102वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर बलिया जिले के करनई स्थित गौरी शंकर राय कन्या महाविद्यालय में श्रद्धांजलि सभा और गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूरे किए 12 वर्ष। प्रधानमंत्री ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्रालय ने सीतापुर जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को दी मंजूरी। 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर होगी स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय में की नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
2: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।

अब आरंभ होय है आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम। ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सब श्रोता साथिन को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।

श्रोता साथियों, ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में आज ब्रज की माटी तोहे प्रणाम हम ये कार्यक्रम में मंदिर श्री द्वारकाधीश जी राग भोग सेवा और पर्व या विषय से संबंधित जानकारी ले आए हैं और या विषय पर जानकारी दे रही हैं रश्मि शर्मा और यह कार्यक्रम के प्रस्तुत करते हैं विजय सिंह नौलखा।

राज अधिराज की कृपा अनंत है और या को अनुभव उन भक्तन को विशेष रूप से है जो रात्रि में सोवे से पूर्व

जमे हैं। हमारे यहाँ तो कहावत है, जाने करी मंगला कबहु ना होई कंगला। क्योंकि जाने राजाधिराज की शरण ले ली, वाकू राजाधिराज कबहु निराश नाई करे हैं।

0: राजाधिराज की प्रातः और सायं चार चार झांकी हुई हैं, यानी कुल आठ झांकी हुई हैं ठाकुर जी को। झांकी के अनुसार ही वस्त्र और श्रृंगार धारण कराया जाए है, साथ ही ऋतु परिवर्तन के अनुरूप भी उनके वस्त्र और श्रृंगार में परिवर्तन हो जाए है।
1: यहाँ ऐसा है, ठाकुर जी को जो भी श्रृंगार आते हैं वो ऋतु अनुसार आते हैं। अब आजकल ग्रीष्म ऋतु है तो ठाकुर जी को सुख आनंद पहुँचे इसका ख्याल रखते हुए हल्के से हल्के वस्त्र आते हैं भगवान को। ऐसा है, ठाकुर जी का श्रीअंग जो है ग्रीष्म ऋतु में शीतल रहना चाहिए, ऐसा महसूस हो कि ठाकुर जी का श्रीअंग शीतल है। और शीतकाल की जो सेवा है उनमें अग्नि ठाकुर जी का श्रीअंग गर्म बना रहे तो उसके लिए उसी हिसाब से सब सेवा क्रम बना हुआ है।
0: राजाधिराज के भोग में भी कोई परिवर्तन नाए हुए है। कच्ची रसोई और पक्की रसोई दोनों प्रकार की रसोई नित्य प्रति बनाई जामे हैं। भोग सेवा करवे वाले सेवादारों नहाए धोए के धोती धारण करके वह रसोई को तैयार करे हैं। ठाकुर जी के भोग में कोई परिवर्तन नाए हुए है, किंतु यदि काउ दिना विशेष पर्व पे विशेष तिथि पे ठाकुर जी ने अधिक समय को दर्शन दिए हैं तो ऐसो मान्यो जावे है कि वा दिना ठाकुर जी ने श्रम अधिक करो है, तो या काजे बाल रूप में उनकी सेवा में वृद्धि करी जाए है। मीडिया प्रभारी श्री राकेश तिवारी या संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं।
2: हमारे यहाँ एक कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन अच्छा है और आपने दो मिनट के लिए आंखें बंद की हुई हैं तो ठाकुर जी आपके समक्ष ही आ जाएंगे। हमारे ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो साक्षात श्री जी का स्वरूप है, और जैसे श्रीनाथ जी के दर्शन आप करते हैं उसी विग्रह के दर्शन हमारे यहाँ होते हैं। और ठाकुर जी देखिए मंगला में ठाकुर जी वस्त्र धारण नहीं करते हैं, 7:40 में स्वरूप वही है कि बालक जैसे सुबह उठा है तो बालक उठते ही माता जी ने उसको माखन मिश्री का भोग लगा

0: 7:40 पे बालक स्नान करने गया, तो स्नान करने के बाद सारे वस्त्र श्रृंगार फूल माला सब 7:40 पे, तो 7:40 पे श्रृंगार के दर्शन होंगे। उसके बाद ग्वाल वाल जैसे ही आ जाएंगे सोई ठाकुर जी का प्रसाद आ जाएगा। राजभोग एक ऐसा भोग है जिसमें ठाकुर जी को सभी वस्तु मतलब कड़ी चावल रोटी सब्जी दही खीर रबड़ी सब धराया जाता है। और एक विशेषता मैं आपको बताऊं, कोई व्यक्ति मंदिर द्वारकाधीश में 1 रुपया भी न चढ़ाए, लेकिन ठाकुर जी के भोग में ठाकुर जी का जो क्रम है उसमें कोई परिवर्तन किसी प्रकार का नहीं हो सकता है। चाहे राष्ट्रपति आए, चाहे प्रधानमंत्री आए या मुख्यमंत्री आए, ठाकुर जी के दर्शन क्रम में ठाकुर जी के भोग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सेवा का स्वरूप जो बाल स्वरूप है। अगर मान्यता ये भी है कि अगर ठाकुर जी के कोई विशेष मनोरथ होता है, उस मनोरथ में अगर आधे घंटे ज़्यादा दर्शन खोले जाते हैं, तो मान्यता ये होती है कि आज बालक पर श्रम पड़ेगा, तो श्रम भोग का भी प्रोविजन अलग से है कि आज उनको श्रम भोग लगाया जाएगा कि अगर आपने ज़्यादा मेहनत की है तो आप भोजन भी ज़्यादा करेंगे, तो वो भी हमारे यहाँ प्रोविजन पुष्टि वाले संप्रदाय में।
1: राजाधिराज को भोग के संगई रागव अत्यधिक प्रिय है। प्रातः से सायंकाल विविध रागन में कीर्तन की यहाँ परंपरा है। या में ऋतु के अनुसारो परिवर्तन है जाए है या संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं कीर्तनिया श्री गोविंद चतुर्वेदी जी।
2: सुबह जो होती है मंगला श्रृंगार ग्वाल राई, इन चारों झांकियों में चारों अलग अलग राग बोलती है। सुबह जैसे इस समय सुगा चल रहा है, ग्वाल में सुगा बिलावल, श्रृंगार में राजभोग और ग्वाल में है ठाकुर जी जो पलना में झूलते हैं उसके भाव का कीर्तन होता है। जैसे आशावरी राग है कि बिलावल राग है, और दोपहर में राजभोग होती है उस समय राग बहुत सारे हमारे ये ऋतु अनुसार राग बोले जाते हैं।
3: अच्छा,
2: चारों झांकी सुबह की है। अब शाम को ऐसे शाम को है, चार झांकी शाम को है हमारे यहाँ, पहले पूर्वी है, उसके बाद 2 झांकियों में सूरत बोला जाता है। सूरत उस चैन में जैसे कांदरा है, अड़ाना है, इदारा है, क्या नाम बिहाग है, ऐसे राग बोले जाते हैं। अब जब वर्षा ऋतु आ जाएगी तब राग मलार चालू हो जाएगा।
3: जी, तो ऋतु के अनुसार भी इनमें परिवर्तन होता है। अब विशेष पर्वों की भी बात आपसे करेंगे, विशेष पर्वों पर भी कुछ खास आप विशेष ठाकुर जी को सुनाते हैं।
2: अब जैसे विशेष में जन्माष्टमी हमारे सबसे बड़ा पर्व है, तो जन्माष्टमी या ठाकुर जी का जैसा श्रृंगार जैसा वो उसके हिसाब से जन्माष्टमी बधाई बोली जाती है हमारे, तो ऐसे वो भी रागों में बोली जाती है।
3: जी, इसके अलावा अभी जैसे ग्रीष्म ऋतु में
2: ग्रीष्म ऋतु में अलग राग हो जाती है
3: जी।
2: उसमें सुबह भैरव है, बिलावल है, तुम्हारा नूर नूर सारंग है, सारंग है, शुद्ध सारंग है, बिंदावनी सारंग है, कई कई तरह के अलग अलग राग है
3: जी।
2: ऐसी शाम को
3: जी।
2: राग हमीर है, केदारा है
3: जी।
2: कांदरा है
3: जी।
2: अड़ाना है, बिहाग है, ऐसे राग है।
3: कोई एक विशेष ऐसी राग में लिपिबद्ध कोई ऐसी कीर्तन या कुछ हमारे श्रोताओं को सुना सकेंगे?
2: सुंदर यमुना तीर रीम मनमोहन डाल सुंदर

राज हृदयराज की पिछवाई, पर्दा, पोशाक, इन सबन की सेवा मंदिर में ही करी जाए है। और यहाँ पे ठाकुर जी के फूल घर में ठाकुर जी को फूलन को श्रृंगारो बनाया जाए है। जामे नित्य प्रति कंठी प्राप्त स्थानीय महिलाओं फूल सेवा करवे के काजया में हैं।

0: फूलों का श्रृंगार बनाते हैं हम, बहुत अच्छे अच्छे।
1: इसमें क्या क्या बनाते हैं?
0: इसमें बनाते हैं ठाक बनाते हैं, माला बनाते हैं, छोंगे बनाते हैं, शीश फूल बनाते हैं, शीश सुइयां भरते हैं, सब कुछ करते हैं।
1: किन किन फूलों का प्रयोग होता है
0: यहाँ में? कमल का होता है, कदम का होता है, राय बेल का होता है, सब चीजन का प्रयोग होता है इसमें।
1: तो ये सेवा केवल प्रातःकाल में?
0: प्रातःकाल में ही की जाती है, सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक सेवा की जाती है। ये
1: कितने समय से सेवा कर रही है?
0: हम है हो गए 10-15 साल हो गए हमको। तो
2: ठाकुर जी के वैसे तो विशेष पर्वन पे विशेष दर्शन कराए जाए हैं, किंतु ऋतु के अनुसार भी ठाकुर जी की सेवा में परिवर्तन करो जाए है। जैसे ग्रीष्म ऋतु की सेवा में ठाकुर जी के फूल बंगला सजाए जाए हैं, जमुना जी भरी जाए हैं और विशेष प्रकार के मनोरथ भी करे जाए हैं। या संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं श्री राजीव चतुर्वेदी जी।
3: ग्रीष्म ऋतु में पूरे में भक्तजन आते हैं और सेवा लिखवा के ठाकुर जी के फूल बंगलाओं की सेवा करते हैं। ग्रीष्म ऋतु की फूल बंगला है, नौका विहार है, चंदन बागा है, ऐसी अनेकों सेवाएं हैं। और ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए अनेक वस्तु ग्रीष्मकाल की होती हैं, जैसे खस के पर्दे लगते हैं, आगे फुहारा चलता है भगवान के, गुलाब जल वगैरह शीतल करने वाले इत्र वगैरह, ये सब ठाकुर जी की सेवा में आते हैं।
2: वैसे तो ब्रज में 7 वार और 9 त्योहार की परंपरा है, किंतु कन्हैया के काजे तो नित नए उत्सव ब्रजवासी करते ही रहे, क्योंकि यहाँ भाव की सेवा है और या प्रकार से जब विशेष पर्व आवे हैं तो ये भाव अत्यधिक बढ़ उठे है। और ऐसा ही भाव फागुन के महीना में विशेष रूप से आलादित करन लगे है सभी भक्त जनन को, सभी रसिक जनन को, जब द्वारकाधीश मंदिर में उड़ायो जाए है गुलाल, भर भर के टेसू के पिचकारी मारी जाए और बज उठे हैं झांझ और ढप, जिनके संग गाई जाए हैं पारंपरिक होरी।

0: सावन के महीना में ठाकुर जी स्वर्ण और रजत के हिंडोलान पे दर्शन देते हैं और वहीं मंदिर में रंग बिरंगी घटा के दर्शन भी कराए जावे हैं। यह संदर्भ में जानकारी दे रही हैं मीडिया प्रभारी श्री राकेश तिवारी।
1: जनों की क्योंकि मंदिर में जो सावन में कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं वे सावन कृष्ण पक्ष दोष से प्रारंभ होते हैं। सावन कृष्ण पक्ष की जो दोज हो है वाके दिन पहला हिंडोला ठाकुर जी को धरायो जाए और फिर वह हिंडोला को कार्यक्रम पूरे श्रावण मास में प्रारंभ रहे और विभिन्न प्रकार के हिंडोला या पूरे श्रावण मास में किए जाए हैं, जिनमें फल फूलन को हिंडोला है, फिरोजी जरी हिंडोला को आयोजन है, गुलाबी मखमल हिंडोला को आयोजन है और इन सब हिंडोलन को जो कार्यक्रम है वो हमेशा संध्या आरती में, क्योंकि पुष्टि महाराज संप्रदाय में 8 झांकी के दर्शन होए, जहाँ में 4 झांकी सवेरे होए, जैसे प्रथम झांकी होए मंगला, दूसरी जो है सिंगार, तीसरी ग्वाल और चौथी राजभोग, और शाम को यही प्रकार से 4 झांकी का आयोजन हुए, पहली झांकी हो अध्यापन, वाके बाद भोग, वाके बाद संध्या आरती। तो जो हिंडोलन को कार्यक्रम हुए वो भोग संध्या आरती में हुए और भात प्रतिपदा की जो दोज हुए वह संध्या आरती में ही हिंडोला विजय हुए, या प्रकार से पूरे श्रावण मास में हिंडोलन को कार्यक्रम हुए। अब हिंडोलन के साथ हम बात करेंगे तो हिंडोलन के साथ

0: जो गठन को आयोजन हुए वो हमारे पुष्टि मार्ग संप्रदाय में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संप्रदाय में हमारे जो सबरे कार्यक्रम है उन सभी कार्यक्रम को निर्धारण द्वारकाधीश मंदिर के जो गोस्वामी हैं बृजेश कुमार जी महाराज और उनके सुपुत्र कांकरौली युवराज डॉक्टर बागीश कुमार जी महाराज के द्वारा किया जाए है, और वो इन सभी कार्यक्रमों को संपूर्ण निर्धारण करके एक महीना के सभी कार्यक्रम बनाए में हैं, और उन कार्यक्रम के हिसाब से घटन को माध्यम से सब घटन को कार्यक्रम हुए हैं। घटन से तात्पर्य यहाँ आप सबको बताए हुआ बहुत जरूरी है कि ठाकुर जी को जो बाल स्वरूप है वाकु बाहर के मौसम की अनुभूति कराए वही घटा है, और द्वारकाधीश मंदिर में विभिन्न प्रकार से 9 घटन को आयोजन हुए है, और सबसे पहली जो घटा हमारे यहाँ हुए वो घटा भी हरी घटा हुए है, और हरी घटा के बाद सोसनी घटा है, आसमानी घटा, गुलाबी घटा और लाल घटा के अलावा श्रावण के शुक्ल पक्ष में जो 10वीं के दिन घटा को आयोजन हुए है वो हुए काली घटा, जाकू श्याम घटा भी कहो जाए है, और वह काली घटा और श्याम घटा को देखने के लिए पूरे ब्रज मंडल के लोग अलग अलग जगह से आमे, और वो काली घटा को जो एक स्वरूप मंदिर में हुए वह स्वरूप को देखने के लिए वहाँ में बादलन की गड़गड़ाहट है, चिड़ियन की चहचाहट है, और यह प्रकार से ऐसी घटा वो सजाई जाए है कि आराम आदमी वक आया है कि दूर दूर से देखे, क्योंकि वहाँ मौसम के अनुकूल उस सब वातावरण को दिखाए वो ही घटा है। और इन घटन को जो पूर्व क्रम श्रावण मास में चले है या कारी घटा के बाद जो घटा हुए वो हुए लहरिया घटा, और लहरिया घटा के बाद जब हम आगे जाएंगे तो पूरे श्रावण मास में जो लास्ट घटा है वह घटा को हम सफेद घटा गए हैं। वह सफेद घटा से तात्पर्य है कि बाहर को मौसम अब बिल्कुल सफेद है चुका है, तो पूरे श्रावण मास में जो हम कार्यक्रम घटन के करें हैं वो ठाकुर जी को पूरी अनुभूति कराए हुए को इन सब कार्यक्रम को निर्धारण किया जाए है, और सफेद घटा जहाँ दिन है वह है वह दिन मान्यता के अनुसार ये मान्यता है कि श्रावण मास की समाप्ति भई और समाप्ति के दिन ही सफेद घटा को आए अनु।
1: वैसे तो हर पर्व को हर उत्सव को आनंद अनूठो है, किंतु जन्माष्टमी के पर्व पे तो पूरो ब्रजमंडल ही ऐसो लगे है कि जैसे हर घर में कन्हैया अवतरित है रही हूँ। और बात करें द्वारकाधीश मंदिर की तो यहाँ तो प्रातः काल से रात्रि तक विशेष रूप से उत्सव मनाए जाए हैं, और ऐसे ही ठाकुर जी को अभिषेक भी करो जाए है, जामे पंचामृत अभिषेक विशेष रूप से करो जाए है, और अगले दिन नंदोत्सव भी मनाया जाए है।

तो यह प्रकार से ठाकुर जी के दर्शन करके यहाँ भक्त भाव विभोर है जाए हैं। जिनके नैनन में राजाधिराज एक बार बस गए, उनके चित्त को कहूं और चैन नाए मिले, क्योंकि मन से मन को भाव जुड़ जाए है। राजाधिराज जीवन में सर्व सुख प्रदाता है, और सबसे बड़ा सुख है भाव का सुख, भक्ति का सुख, क्योंकि भाव से भगवान मिलते, भाव ही में सार है। या प्रकार से ठाकुर जी की पुष्टि मार्गीय सेवा में विविध प्रकार से लाड़ लड़ायो जाए है, और भक्तन के यही अभिलाषा है कि राजाधिराज की द्वारिकाधीश की अनुकंपा बिन पे सदैव बरसती रहे।

तो अभी जो है आप सुन रहे थे ब्रज की माटी तोहे प्रणाम कार्यक्रम में मंदिर श्री द्वारकाधीश जी राग भोग सेवा और पर्व से संबंधित जानकारी दे रही थी रश्मि शर्मा। और अब साथियों फिर एक लोकगीत सुन लियो जाए।

0: चौधरी कार्यक्रम यहीं संपन्न हुए। आप सबन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी और समय हो चुका है अगले प्रसारण का, तो बस सबसे कुछ ही देर में।
1: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने

0: रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से

0: लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
0: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
4: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
3: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे।
3: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 1,25,00,000 रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए

0: जी हाँ, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
5: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
8: RBI कहता है,
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
2: हमारी जनगणना हमारा विकास।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
10: ये जो चिलमन है।
11: प्रस्तुत

अभी आपने सुना महबूब की मेहंदी फिल्म के इस गीत को रफ़ी साहब की आवाज़ में, लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आपकी कसम फिल्म के इस गीत को आपने सुना लता मंगेशकर किशोर कुमार के युगल स्वरों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत दिया था आर डी वर्मन ने। आइए अब सुनते हैं साथियों

आपने सुना अभी किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म जीवन ज्योति के इस गीत को सलिल चौधरी ने संगीतबद्ध किया था और लिखा था आनंद बख्शी ने। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत।

आपने सुना अभी कोहिनूर फिल्म के गीत को लता मंगेशकर की आवाज़ में, शकील बदानी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था संगीतकार नौशाद साहब ने। और अब साथियों आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये

0: श्रेया घोषाल और हरिहरन की आवाज़ में आपने सुना साथियों अभी फिल्म धूप का ये गीत। निदा फाजली के इन बोलों को संगीतबद्ध किया था ललित सेन ने। साथियों आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है भेंट वार्ता संरक्षण एवं संवर्धन, ब्रज विरासत संरक्षण एवं संवर्धन और लक्ष्मी नारायण तिवारी से इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं OP सिंह।
1: ब्रज धर्म की भूमि, आध्यात्म की भूमि, योग की भूमि, भक्ति की भूमि। ब्रज के जितने आयाम हम लेके चले वो कम है। जब भी ब्रज शब्द हमारे जहन में आता है तो बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं स्वयमेव साकार हो उठती हैं। व्यक्ति के अपने अनुभव और अपनी चेतना के स्तर से वो ब्रज को देखता है, समझता है और जानने की कोशिश करता है, लेकिन हर वो स्थिति और आयाम छोटा पड़ जाता है जो ब्रज का अपना मूल स्वरूप है। ब्रज क्या है, ब्रज की उस विरासत को संरक्षण की कहाँ कहाँ आवश्यकता है, कैसे उसका संरक्षण और संवर्धन हम कर सकते हैं। निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे लोग और संस्थाएं और कलाकार लगे हुए हैं जो अपने अपने कार्य से, अपनी अपनी समझ से और अपने अपने दायरे में रह करके इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ और किया जाना आवश्यक है और एक आम व्यक्ति इसको कैसे उसमें जुड़ सकता है और कैसे अपनी सहभागिता निभा सकता है, ये आज हमारी चर्चा का विषय है। हमारे साथ हैं लक्ष्मी नारायण तिवारी जी जो ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के सचिव हैं और एक बड़े नेक कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण जी, मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं और आपकी नजर से जो ब्रज हो सकता है आप जिस रूप में देखते हैं, समझते हैं और उस कार्य के संरक्षण और संवर्धन में लगे हुए हैं, तो मैं जानना चाहता हूं अपने श्रोताओं के लिए कि ब्रज वास्तव में है क्या।
2: दरअसल ब्रज तो इस पूरे भारत का जी, अगर कोई ललित भाव है तो वो ब्रज ही तो है। आप ये देखिए कि पूरे भारत के लोक वार्ताओं में, कथा गीतों में, कहानियों में और धार्मिक साहित्य में जहां लालित की बात होगी, जहां लालित है वहां ब्रज ही है। चाहे हम तेलुगु या तमिल के लोकगीतों को भी देख लें, वहां पे भी राधा और माधव के गीतों की आपको एक पूरी परंपरा मिलेगी। यानी इस भारत का जो पूरा ललित भाव है वो ब्रज है। परंतु समय जैसे कि बदला है और समय ने सारी चीजों को और पुरानी अवधारणाओं को बदल दिया है। आज बहुत गंभीर संकट हमारे सामने ये है कि ये जो सुगंध जिसने पूरे भारत और भारत से बाहर भी जो फैल रही है, अब मूल जगह पे कमजोर पड़ने लगी। आज इसके संरक्षण की और संवर्धन की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जन सहभागिता इसमें कैसे हम कर सकते हैं या हो सकती है। बिना कोई भी संस्कृति है, बिना जनमानस का जो रुझान है उसके तो हो ही नहीं सकती। और ब्रज फैला ही जनमानस की वजह से है। ब्रज तो नाथद्वारा तक फैल गया, ब्रज तो जगन्नाथ तक गया, ब्रज नवद्वीप बंगाल तक फैला। ये जो भौगोलिक परिधि के अलावा एक इसका एक सांस्कृतिक विस्तार भी है जो दक्षिण तक फैल गया।
1: तो निश्चित तौर पर संरक्षण की बात तो बनती है, तो फिर प्रयास कहां से शुरू होने
2: चाहिए? देखिए, ब्रज जो है मूलतः वन्य संस्कृति है जी। स्वयं श्री कृष्ण ने भागवत में श्लोक भी आता है, उन्होंने नंद बाबा से ये कहा कि बाबा ये जो वन पर्वत है ये ही हमारे घर है। ये बात श्री कृष्ण के मुख से भागवतकार ने कहलवाई है कि श्लोक के रूप में। तो ब्रज था तो मूल रूप से वन संस्कृति जी, किंतु आपकी बात यह है कि देखिए अब बहुत कुछ यमुना में पानी बह चुका है, हम पीछे तो अब लौट नहीं सकते। नगरीकरण जिस तरह से हुआ और तीर्थ जो है जिस तरह से नगरों में बने, दरअसल ब्रज यात्रा मूलतः वन यात्रा थी, पर वन और उपवन जो थे अब पूरी तरह से नगर में बदल चुके हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे समय में हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, कैसे इसका संरक्षण करें। तो मैं एक आपको इस चीज के बारे में कहना चाह रहा था कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार

0: की तो है ही, पर उससे भी बड़ी जिम्मेदारी लोगों की है। और अब मैं ये देख रहा हूं कि ये जो युवा पीढ़ी है, शिक्षित युवा पीढ़ी है, वो संरक्षण के प्रति संजीदा है और वो इस बात को समझती है कि पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है। मैं देख रहा हूं कि हम लोगों के धीरे धीरे धीरे धीरे प्लास्टिक का हम लोगों ने ब्रज में से हटाने की बात कही थी, तो शुरुआत में तो नहीं मिला था और अभी भी जो आम आदमी है उसका उतना संरक्षण सहयोग नहीं मिल रहा है, परंतु हम देखते हैं कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं या विदेशी जो लोग आ रहे हैं वो इस चीज के प्रति काफी सजीदा है कि वृंदावन में से ब्रज में से अगर हम प्लास्टिक को भी हटा दें व्यवहार से, और हम लोग काफी इसका प्रयास भी कर रहे हैं और बहुत हद तक हुआ है, सरकार भी ये चाहती है, हम लोग भी ये चाहते हैं कि ये हो, पर थोड़ी सी जन जागरण की आवश्यकता है। जब वृंदावन और मथुरा का मूल व्यक्ति जो है, मूल निवासी जग जाएगा और उसके दिमाग में जिस दिन ये आ जाए कि भाई ब्रज का संरक्षण हमें करना है, तो जहां स्थिति है और बेहतर स्थिति हो जाएगी, इससे कोई दूसरी राय नहीं है। हमें आज ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने लोगों को जन जागरण करने की ज्यादा जरूरत है। धीरे धीरे देखिए कई संस्थाओं ने काम किया है और लगातार कुंडों का, वनों का संरक्षण का काम हो रहा है और लोग उसको देख करके, बाहर से आने वाले लोग जो हैं, तीर्थयात्री जो हैं, उसे देख करके आनंदित हो रहे हैं और काफी काम हुआ भी है। एकदम तस्वीर तो अभी नहीं बदल
1: जी,
0: परंतु उस दिशा में काम हुआ है और मैं ये कह रहा हूं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, आशा की किरणें अभी भी जगमगा रही हैं।
1: अब थोड़ा सा जैसे वर्तमान को अगर हम ले, लोगों को रोजी रोटी भी कमानी है, रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, हर आदमी को जीविका भी चाहिए, विकास की बात होती है, साधन सुविधाएं भी व्यक्ति को चाहिए जिस हिसाब से वो रहना चाहता है, तो विकास भी हो लेकिन ब्रज का मूल स्वरूप भी बना रहे, जैसे बात कई बार पर्यटन से जोड़ने की चलती है, तो जो तीर्थ नगरी है, अगर हम कहें ब्रज भी एक धार्मिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी है, ये तीर्थ नगरी पहले है, पर्यटन थोड़ा बाद में आता है, क्योंकि पर्यटन जुड़ते ही थोड़ा सा रोजगार की बात आती है, साधन सुविधाओं की बात आती है, तो क्या जो एक जो आपने शुरुआत में लालित्य की बात की, ब्रज लालित्य है, ब्रज भाव है, तो वो भाव भूमि बनी रहे, वो भक्ति भूमि बनी रहे, ब्रज का लालित्य बना रहे लेकिन लोगों को रोजगार भी मिलता रहे, लोगों को सुविधाएं भी मिलती रहे, उसका जब हम एक खाका खींचते हैं तो कहीं बीच का एक रास्ता आपको नजर आता होगा, तो फिर कहां थोड़ा कहीं कि संरक्षण भी जरूरी है और उसमें संवर्धन भी हो जाए लेकिन हमारा भाव और वो भक्ति भी बनी रहे।
0: देखिए आप, बात यह है कि जिस तरह से समय की धारा बह रही है, बहना तो सबको उसी के साथ पड़ता है, पर फिर भी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो पर्यटन शब्द है वो संस्कृति है कि सुविधा आप पैसा दीजिए सुविधा लीजिए, परंतु तीर्थ जहां आता है तो वहां व्यक्ति जो ये सोचता है कि यहाँ जो है ना लेने और देने की संस्कृति नहीं है, यहाँ हमें आश्रय मिलेगा, यहाँ हमें वो शांति की जो भूख हमें हमारे उसमें नहीं पूरी हो रही है वो यहाँ पूरी होगी। यहाँ व्यक्ति का मन ऐसा नहीं होता कि वो यहाँ पैसा दे और सुविधा ले। आप, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस चीज को मैं बहुत जोर दे के कहना चाहता हूँ कि देखिए भाई, ब्रज की जो है ना लेने देने की संस्कृति नहीं है,
1: जी।
0: ब्रज की संस्कृति तो देने देने की है, आप दीजिए,
1: आप भी दें और ऊपर वाले से भी लें,
0: वो तो अपने आप देगा जी। वो तो मैं ब्रजवासियों से बार बार कहता हूँ कि भाई आप दो हो, वो तो ठाकुर हमारा बैठा हुआ है देने के लिए, वो तो देगा ही देगा। वास्तविकता में ये है कि अगर आप लेने देने की वो जिस तरह से आप सोचेंगे, जो इसको होटल कल्चर में बदलेंगे और जो कि हो रहा है, इसको वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग आश्रय के लिए आते हैं, लोग परेशान हैं अपने जीवन से, अपने जीवन की शांति खोजने के लिए यहाँ आते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य खोजने के लिए यहाँ आते हैं, यहाँ से प्रेरणा से भर के जाते हैं, यहाँ पे चार्ज होने के लिए आते हैं, तो वो हमें देना है। हम अगर उनके साथ में ये इस टाइप का व्यवहार करेंगे,
1: सुविधाओं में चीजों को तोड़ने लगेंगे,
0: तो वो नहीं हो पाएगा,
1: सतही हो जाएगा।
0: पर्यटन तो बनता जा रहा है क्योंकि आधुनिकता के हिसाब से, परंतु ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ब्रज का मूल जो है वो तीर्थ में है और तीर्थ हमेशा देते रहे, लेने का यहाँ कोई भी विचार मूल में नहीं है।
1: तो वो
0: अब चूंकि वो व्यवसायीकरण हो गया है, तो तीर्थ जो है पर्यटन स्थल के रूप में बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है।
1: हमारी बात संरक्षण की थी और ब्रज के मूलभूत संरक्षण की थी, ब्रज विरासत की बात थी, तो मैं

0: थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि जब ब्रज के रूप जब जिसको हम देखना चाहते वो रूप वास्तव में है क्या, क्योंकि आपने कहा कि वन उपवन तो अब कम हो गए, मंदिरों में अब वो जो पर्यटन और उस वाली बात आ गई, तो फिर वो मिल नहीं रहा है लोगों का जो वो चाहते, वो शांति नहीं मिल रही है, वो चार्ज जो कहते हैं ट्रांसमिशन मिलना चाहिए मंदिरों से वो नहीं मिला, वो कहीं एक भीड़ और शोर के कोलाहल में खोता जा रहा है उसमें। तो ब्रज का जो अगर रूपों की बात करें तो वो जो रूप आप बताना चाहें श्रोताओं को वो क्या हो सकते हैं?
1: दरअसल ऐसा था कि आज से 30 साल पहले जो तीर्थ यात्री ब्रज में आ रहा था, तो उसके एक बहुत अभिन्न एक चीज थी जिसके
0: जी
1: बारे में मैं आपको बता के उदाहरण देता हूं कि तीर्थ में जो है स्नान बहुत अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ था। अब चूंकि यमुना प्रदूषित हो गई, मथुरा में भी वृंदावन में भी,
0: जी
1: अब पूरे अब ब्रज यात्रा में यमुना स्नान कट गया है। आप देखिए जो
0: जी
1: है
0: जी
1: किस
0: अब
1: तरह से
0: आचमन
1: एक
0: लायक भी नहीं रहा।
1: मुख्य जो चीज थी, मतलब यात्रा का एक मुख्य आकर्षण जो था, अब वो आचमन लायक भी नहीं रह गया। अच्छा, इस दिशा में जो सरकारों का जो रवैया है वो बहुत अच्छा नहीं रहा, उन्होंने उस चीज को नहीं समझा। जो है यमुना वाला जो मामला है उसमें स्थानीय लोगों ने तो जो किया किया, सरकारों ने उसके लिए नहीं समझा। अब चूंकि सिंचाई के लिए जमीन को पानी चाहिए और हरियाणा में वो बहुत जरूरी होता है, तो यमुना आंदोलन के बारे में तो आपको पता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो यमुना जो ब्रज की जीवन दायिनी एक संचार प्रणाली थी जिससे
0: जी
1: ब्रज
0: जी
1: को जीवन मिलता था, कृषि को जीवन मिल रहा था, जिससे संस्कृति को जीवन मिल रहा था, वो पूरा का पूरा भाग जो है अब ब्रज यात्रा से गायब हो गया। अब ब्रज यात्रा क्या रह गई है? अब ब्रज यात्रा रह गई है बांके बिहारी के दर्शन, टिकिया पकौड़ी लस्सी, ये अब पिकनिक का रूप उसने लेना शुरू कर दिया है।
0: उसके अंदर की जो सांस्कृतिक चेतना और जो जीवंतता थी
1: नहीं,
0: वो गायब
1: तीर्थ
0: हो।
1: में आकर के जो तप की भावना थी, जब यात्री आता था स्नान करता था नंगे पैर पूरे नगर में घूमता था, मथुरा में, वृंदावन में, गोवर्धन में, तो उसके अंदर में एक ये थी कि तीर्थ में आना एक तप, हमें
0: तप
1: जीवन की जो सुविधाएं हम अपने घर पे प्राप्त कर रहे हैं वो यहां पे त्याग नहीं है,
0: त्याग नहीं
1: कुछ
0: है।
1: समय के लिए हमें अपने इसको पहचानना है, यहां इस चीज की तलाश में व्यक्ति आता था।
0: अब वो बिल्कुल गायब हो
1: अब
0: गए।
1: बिल्कुल गायब हो गया। अब वो धीरे धीरे वहीं आ गया कि वो हम वीकेंड हो रहा है और वीकेंड पे जो है हमें बच्चों को घुमाना है, तो कुछ मथुरा वृंदावन से बढ़िया जगह कौन सी हो सकती है, और वहां अन्य जगह घुमाओ, तो दिल्ली तो महंगी है, मथुरा वृंदावन सस्ता है इस मुकाबले जो है।
0: मतलब
1: तो
0: आम
1: जब
0: के
1: ये
0: आम गुठली के दाम वाली बात है
1: तो इससे ब्रज का
0: कि
1: संरक्षण कैसे हो, इससे ब्रज का संरक्षण कैसे हो, ये नहीं हो सकता। हमें खुद बदलना होगा, हमें लोगों को बदलना होगा। और ऐसी बात नहीं है, अगर आप खड़े हो जाएंगे तो लोग खड़े हो जाएंगे, जिसको आप सही दिशा देंगे तो वो तैयार है, युवा बदलने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि युवा हमारा बदलने के
0: जी
1: लिए
0: जी
1: नहीं,
0: जी अपनी जड़ों से अपनी पहचान से
1: वो जुड़ना
0: जुड़ना
1: चाहता है।
0: चाहता है
1: आप उसे उस ढंग से
0: मौका।
1: जोड़िए तो सही, नए
0: जी
1: परिप्रेक्ष्य में आपको पुरानी चीज को थोड़ा नया ढंग से पेश तो करना है ना,
0: जी बताना तो पड़ेगा
1: बताना
0: उसमें।
1: पड़ेगा।
0: तो कुल मिलाकर के जो ब्रज का मूर्त रूप और अमूर्त रूप दोनों है, उन दोनों के ही संरक्षण की बात है, दोनों के ही संवर्धन की बात है, और जो आने वाली पीढ़ी है उसको समझाने की भी बात है कि भाई ये हमारी अपनी जड़ें हैं, और जब तक जड़ें सुरक्षित हैं पेड़ भी सुरक्षित रहेगा, जड़ों को अगर आप काट दोगे तो पेड़ भी सूख जाएगा।
1: बिल्कुल
0: तो उस आने वाली पीढ़ी को हमारी पुरातन संस्कृति से जोड़ करके समझा करके अगर हम बात रखेंगे तो शायद बात बन जाएगी, ये आप कहना चाह रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि युवाओं को बहुत ब्रज के काम में जोड़ने की जरूरत है, और युवाओं के अंदर ही वो शक्ति है जो हमें ब्रज के ये जो हमारा पूरा जो संरक्षण का जो विचार है इसको आगे ले जाने के लिए हमें युवा शक्ति की जरूरत है।
0: और इसके फायदों को पहचाने तो शायद बेहतर हो सकता है। एक बार पुनः आपका धन्यवाद, नमस्कार।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रोताओं, ब्रज
2: आप सुन रहे थे अभी ये भेंट वार्ता लक्ष्मी नारायण तिवारी जी से ली गई। विषय था ब्रज विरासत संरक्षण एवं संवर्धन, और इस विषय पर इनसे बात कर रहे थे ओपी सिंह। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:15 होने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मथुरा और प्रतापगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मथुरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद उमर कुरैशी का।
1: जनपद मथुरा के प्रभारी एवं प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न जन कल्याणकारी एवं जन जागरूकता कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक संपन्न हुई। यह बैठक वृंदावन स्थित गीता शोध संस्थान में आयोजित की गयी। बैठक में 5 जून 2026 से 21 जून 2026 तक चलने वाले समय के जन एवं जन जागरूकता अभियान के सफल संचालन हेतु विभिन्न विभागों द्वारा की गई तैयारियों एवं कार्य योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों योजनाओं उपलब्धियों तथा जन सामान्य के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तनों का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर मंत्री संदीप सिंह ने गीता शोध संस्थान परिसर में वृक्षारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि सेवा संस्कार सुशासन एवं सम्मान के मूल भाव के अनुरूप सादगी अनुशासन ईंधन बचत पर्यावरण संरक्षण तथा जन भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2026 को जनपद मथुरा में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस अवसर पर जनपद में लगभग 6,17,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मथुरा के वन प्रभाग के प्रभागी वन अधिकारी DFO BS पटेल ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण एवं हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों शैक्षणिक संस्थानों ग्राम पंचायतों तथा सामाजिक संगठनों के सहयोग से जनपद भर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मथुरा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 25 प्रमुख धार्मिक कुंडों के संरक्षण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि ब्रज की पवित्रता और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। यहां धार्मिक कुंडों और तालाबों को प्रदूषण से बचाने के लिए 406 ग्राम पंचायतों के तालाबों और 25 धार्मिक कुंडों के संरक्षण का विशेष अभियान चलाया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी धनंजय जायसवाल के अनुसार जल को दूषित होने से बचाने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा कई ठोस कदम उठाए गए हैं। मथुरा में विश्व पर्यावरण दिवस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान दुवासु परिसर में वृक्षारोपण किया गया। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हुए कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अभिजीत मित्र जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और प्रभागीय वन अधिकारी DFO वेंकट श्रीकर पटेल शामिल हुए। यहां कुलपति डॉक्टर अभिजीत मित्र ने पेल जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश ने आम और DFO वेंकट श्रीकर पटेल ने शहतूत का पौधा लगाया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना था। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान दुवासु के कुलपति डॉक्टर अभिजीत मित्र ने बताया कि
2: करीब 384 पौध को लगाया गया। अब हर बच्चे ने हर फैकल्टी ने अपना माँ के नाम में पौध लगाया है और आगे वाला अगले साल तक उसका देखभाल करेगा।
1: मथुरा चटपट के राया निवासी युवा नेता और सामाजिक नीतीश पाठक ने प्रयागराज में आयोजित युवा संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्हें इस आयोजन में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया जिससे उन्होंने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। युवा संसद सत्र के दौरान नीतीश पाठक ने एक संसद सदस्य की भूमिका निभाते हुए नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए। अपने संबोधन में उन्होंने नारी को माँ सरस्वती का स्वरूप बताया। पाठक ने कहा कि महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण राष्ट्र की प्रगति का आधार है। मथुरा जिला न्यायालय परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विकास कुमार की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय परिसर में समस्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश और अन्य न्यायाधिकारी गण द्वारा जनपद न्यायालय परिसर मथुरा में वृक्षारोपण किया गया। जिला

0: सार्वजनिक सेवा प्राधिकरण की अनीता सिंह द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए वृक्षों की उपयोगिता के संबंध में बताया गया तथा सभी से अपील की गई कि साफ सफाई का ध्यान रखते हुए पर्यावरण को संरक्षित रखने हेतु अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और उनका संरक्षण करें।
1: मथुरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं प्रतापगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजितेश त्रिपाठी का।
2: जिले में इस महीने की शुरुआत जनपद वासियों को समय रहते मौसम संबंधी सटीक जानकारी उपलब्ध कराने तथा आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण पहल के साथ हुई। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे के निर्देशन में जनपद में 5 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 34 ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन स्थापित किए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि इन आधुनिक स्टेशनों के माध्यम से तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति, दिशा, वायु दाब जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां वास्तविक समय में प्राप्त की जा रही हैं। इससे मौसम की सतत निगरानी संभव हो सकेगी तथा किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा या मौसम परिवर्तन की स्थिति में प्रशासन समय रहते आवश्यक कदम उठा सकेगा। जनपद में स्थापित 5 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन तहसील सदर कुंडा लालगंज पट्टी एवं रानीगंज में संचालित हैं, जबकि 34 ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन विभिन्न विकास खंडों एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए गए हैं। जिलाधिकारी ने जनसामान्य से अपील करते हुए कहा कि मौसम संबंधी अद्यतन जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करें तथा आपदा अथवा खराब मौसम की स्थिति में प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल अधिकारी सूचना पर भरोसा करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि मौसम एवं वर्षा से संबंधित रियल टाइम डेटा उत्तर प्रदेश शासन की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आम जन भी सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिले में इस महीने 15 जून से 21 जून तक आयोजित होने वाली योग सप्ताह की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस संबंध में परियोजना निर्देशक DRDA दयाराम यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर सुमन कुशवाहा ने बताया कि दिनांक 15 जून से 21 जून तक जनपद में योग सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने योग सप्ताह कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। परियोजना निदेशक ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी योग्या अभ्यास के कार्यक्रम आयोजित कराएं। तहसील, ब्लॉक और जिला स्तर पर योग्या अभ्यास कराए जाने की समुचित व्यवस्था योगा संस्थाओं के साथ बैठक कर ली जाए, जिससे योग सप्ताह के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया जा सके। उन्होंने कहा कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पुलिस लाइन में भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसमें प्रभारी मंत्री, जनप्रतिनिधिगण, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं, समाज सेवी, व्यापारी व जनपद के अन्य गणमान्य नागरिक व पत्रकार बंधुओं का सामूहिक योग्या अभ्यास कराया जाएगा। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान में बैठे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह बात भारत सरकार के प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य धीरेन्द्र वाल्मीकि ने समीक्षा बैठक के दौरान की। जनपद में संचालित केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। सदस्य धीरेन्द्र वाल्मीकि ने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन, पात्र लाभार्थियों को मिल रहे लाभ तथा लंबित कार्यों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें, ताकि गरीब, दलित, पिछड़े एवं वंचित लोगों को समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका वास्तविक लाभ गांव और शहर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। बैठक के दौरान अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा जनपद में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी संतोष कुमार सिंह, संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पंचायत पहुता में इस महीने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 11वीं वाहिनी द्वारा आपदा प्रबंधन एवं बचाव को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से बचाव के प्रति जागरूक करना तथा आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के उपायों की जानकारी देना रहा। इसी क्रम में आपदा प्रबंधन के उप निरीक्षक प्रभास सिंह ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी आपदा के दौरान सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा सुरक्षित करनी चाहिए तथा जरूरत पड़ने पर तुरंत प्रशासन एवं राहत एजेंसियों से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने लोगों को प्राथमिक उपचार, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के तरीके तथा आपातकालीन सहायता नंबरों की जानकारी भी। कार्यक्रम में CPR देने की प्रक्रिया का डेमो करके दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान NDRF की टीम ने आकाशीय बिजली, डूबने से बचने आदि प्रबंध आपदा से बचाव के व्यवहारिक उपायों का प्रदर्शन भी किया, जिसे ग्रामीणों ने काफी रुचि के साथ देखा और जानकारी प्राप्त की।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार विकास द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम आबो हवा के अंतर्गत जानकारी अशोक गुप्ता से। विषय है स्वच्छता और पर्यावरण।
1: स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। हमारा शरीर तभी स्वस्थ रह पाएगा जब हमारा पर्यावरण अर्थात नजदीकी परिवेश भी स्वस्थ होगा, और हमारा पर्यावरण तभी स्वस्थ होगा जब हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहकर हमें स्वच्छता का संदेश देता रहेगा। इस प्रकार स्वच्छता और पर्यावरण का चोली दामन का साथ है। यदि स्वच्छता और पर्यावरण के आपसी सामंजस्य में जरा सा भी विकार आ जावे तो प्रदूषण रूपी दानव का जन्म होना स्वाभाविक है। तंदुरुस्ती हजार नियामत है तो स्वच्छता लाखों, अर्थात हमारे जीवन में जितना खाना पीना जरूरी है उतना ही आवश्यकता है स्वच्छता की। स्वच्छता हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकता के साथ साथ ही हमारे नैतिक दायित्व का भी एक अंग है। स्वच्छता के मामले में आदिकाल से ही प्रकृति मनुष्य से आगे रही है। जल वायु व भूमि को शुद्ध रखने का प्रकृति का अपना कुदरती तरीका है। आदिकाल से ही जल वायु व भूमि में मनुष्य द्वारा प्रदूषण के रूप में फैलाई गई गंदगी तुरंत साफ होती रही है, किंतु कालांतर में बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण, पॉलिथीन का बढ़ता उपयोग, वनों का विनाश इत्यादि के साथ साथ ही मनुष्य का स्वार्थी एवं लालची होना इत्यादि ने इस कुदरती प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़कर हमें गंदगी एवं प्रदूषित वातावरण में रहने को मजबूर कर दिया है। प्राचीन समय में प्रदूषण बहुत ही सीमित स्तर पर अर्थात केवल लकड़ी कंडे जलाने एवं प्राणियों के मलमूत्र विसर्जन तक ही सीमित था, लेकिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग, शहरीकरण, औद्योगिकरण, वाहनों का अधिक उपयोग एवं स्वच्छता की आदत विकसित नहीं होने से हमारा जल वायु एवं भूमि सभी प्रदूषित हो चुके हैं तथा हमें जगह जगह कूड़ा करकट व गंदगी के ढेर नजर आने लगे हैं। इस गंदगी के ढेर में घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा, होटल अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट के साथ साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट भी मौजूद रहता है, जिसमें लाखों करोड़ों संक्रामक जीवाणु व वायरस होते हैं जो कि कई बीमारियों का प्रमुख कारण है। भारत में 80% आबादी ग्रामीण परिवेश में अथवा झुग्गी झोपड़ियों में निवास करती है। इन क्षेत्रों में प्राय घरों में शौचालय नहीं होते और खुले में शौच जाना मजबूरी है। कुछ ग्रामीणों की तो अभी तक यह भ्रांति है कि घर में शौचालय होने के बावजूद भी खुले में शौच जाना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। शिशु का मल भी उतना ही संक्रामक होता है जितना कि वयस्क का मल। एक मनुष्य के इस मल में औसतन 1 करोड़ वायरस, 10 लाख जीवाणु तथा लगभग 100 परजीवी कृमि अथवा इनके अंडे पाए जाते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक मनुष्य का मल इतना संक्रामक है तो लाखों मनुष्यों का मल कितना संक्रामक होगा। इसी संक्रामक मल के कारण मनुष्य में हैजा, पेचिश, डायरिया, पीलिया, आंत्रशोथ एवं कृमि जनित रोग जैसे हेलमेंथेसियसिस, एस्केरियसिस एवं टीनियसिस इत्यादि हो जाते हैं। मानव मल में मौजूद कीटाणु या कृमि अंडे मक्खियों के माध्यम से शौच के बाद सफाई के समय हाथों के माध्यम से, इस मल के जल में घुलने के माध्यम से अथवा इस मल में मौजूद कृमि या कीटाणुओं के आसपास खेत में लगे फल सब्जियों के माध्यम से मनुष्य के शरीर तक इनका संक्रमण हो जाता है और ये हमें रोगी बना देते हैं। राउंड वर्म, विप वर्म व हुक वर्म के अंडे तो मानव की आंत, फेफड़ों, पित्त नली, यकृत और अग्नाशय तक पहुंच जाते हैं और इनके लार्वा व वयस्क रूप विभिन्न प्रकार के घातक रोग उत्पन्न करते हैं जिससे मृत्यु तक भी हो सकती है। अतः खुले में शौच करना अपने स्वयं के लिए तथा औरों के लिए भी एक अभिशाप है। पर्यावरण की स्वच्छता के लिए कोई विशेष धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आवश्यकता है तो केवल हमारी विकृत सोच एवं आदतें बदलकर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की। खुले में शौच नहीं जाना, प्रत्येक घर में स्वयं के खर्चे से अथवा सक्षम न होने पर सरकार द्वारा दिए गए अनुदान से शौचालय बनाना, अपने घर के बाहर कचरा न फेंक

कर निर्धारित कचरा पॉइंट पर कचरा डालना, फल व सब्जियों को धोकर खाना, प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदी तालाब व कुएं में कचरा नहीं फेंकना, पॉलिथीन थैलियों के स्थान पर कागज या जूट की थैली का उपयोग करना, सार्वजनिक स्थानों पर सफाई का श्रमदान कर एवं अपनी शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान दिया जाकर हम अपने आसपास के पर्यावरण को तो स्वच्छ रख ही सकते हैं।

0: स्वस्थ शरीर में ही।
1: आप अभी सुन रहे थे कार्यक्रम आबो हवा के अंतर्गत जानकारी, विषय था स्वच्छता और पर्यावरण, और जानकारी दे रहे थे अशोक गुप्ता। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण। आज इस कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं जितेंद्र सिंह।
2: ब्रज दर्पण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को जितेंद्र सिंह का नमस्कार।
1: संयोजक हैं ओपी सिंह।
2: शिक्षा, सूचना और मनोरंजन से भरपूर आपके अपने कार्यक्रम ब्रज दर्पण में आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, जैसा कि हम कार्यक्रम की शुरुआत एक अच्छे और सकारात्मक विचार के साथ करते हैं, तो मित्रों आज का हमारा सुविचार है कि पहला सुख निरोगी काया। वास्तव में जीवन का आनंद तभी है जब हम पूरी तरह से स्वस्थ हों। और अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी भी काम को तन मन से करिए। तन और मन, यानी अगर ये दोनों चीज़ एक दूसरे की पूरक हैं, अगर हमारा तन स्वस्थ रहेगा तभी हम किसी भी काम को पूरे मन से कर पाएंगे। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमें हमारा काम अच्छी तरह से होगा, हम अपने काम काजों में मन लगा पाएंगे। अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो हम अपने किसी भी कार्य को ठीक से नहीं कर सकते। यानी कह सकते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए एक अच्छी सेहत का होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन आजकल लोगों की जिस तरह की अनियमित जीवन शैली है, जिसके चलते अधिकांश लोग विभिन्न तरह की बीमारियों जैसे कि मधुमेह है, रक्तचाप, मोटापा, हृदय रोग आदि से ग्रसित हो रहे हैं, इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि वास्तव में सेहतमंद रहना भी अपने आप में काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। और स्वस्थ रहने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी दिनचर्या को नियमित करें, सही समय पर सोएं, सही समय पर जागें और सही समय पर भोजन करें। इसके अलावा अपनी व्यस्त जीवन शैली में अपने शरीर के लिए थोड़ा समय निकालें। यानी हम चाहे हमको सुबह समय मिलता है या शाम को समय मिलता है, तो थोड़ा हम व्यायाम या योगा आदि को अपने जीवन में स्थान दें। और इसी के साथ ही अपने जीवन में पौष्टिक भोजन को अवश्य महत्व दें, क्योंकि आजकल ये देखा जाता है कि लोग फास्ट फूड की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसका टेस्ट लोगों को अच्छा तो लगता है, लेकिन ये भोजन इतने पौष्टिक नहीं होते। जो हमारे पारंपरिक भोजन हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा अपने जीवन में महत्व देंगे तो उससे भी हमारी सेहत में काफ़ी अच्छा सुधार होगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि जितनी सारी ज़रूरी चीज़ें आपके जीवन में हैं उससे कहीं महत्वपूर्ण आपका स्वास्थ्य है। बस यही कहेंगे कि स्वस्थ तन में ही रहता सदा स्वस्थ है मन, इसलिए स्वस्थ रहने का हमेशा करते रहें प्रयत्न।

0: श्रोताओं, जैसा कि हम हर वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं, इस दिवस को मनाए जाने का क्या उद्देश्य है और हमारे भारत में बाल श्रम को लेकर क्या कानूनी प्रावधान है, आज इस बारे में हम बात करते हैं श्रम विभाग मथुरा से सहायक श्रम आयुक्त श्री राजकुमार सिंह जी से।
1: सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम ब्रज दर्पण में हार्दिक अभिनंदन।
2: जी धन्यवाद। देखिए, बाल श्रम निषेध दिवस जो है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बाल श्रम कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी बुराई है। बच्चों से काम कराना किसी भी देश का भविष्य खराब करने जैसा होता है, और इसमें ये कहा गया है कि अगर यदि कोई किसी समाज को, किसी भी वर्ग को शिक्षा ना मिले तो आप समझ सकते हो कि वो शिक्षा ना मिलने के परिणाम या दुष्परिणाम क्या होते हैं। इसीलिए बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि बाल श्रम निषेध दिवस को मनाने के पीछे यह उद्देश्य है कि बाल श्रमिकों से पूर्णतया मतलब काम करने पर पाबंदी है, और इसके लिए भारत सरकार द्वारा बाल श्रम अधिनियम 1986 जो है बनाया गया था, जिसमें तत्पश्चात जो है 2016 में संशोधन किया गया था। इसके प्रावधानों के विषय में ये बताना चाहूंगा कि इसमें दो प्रकार के बाल श्रमिक इस समय हमारे यहाँ पे जो जिन पर हम कार्रवाई करते हैं वो दो प्रकार के हैं। जैसे कुछ प्रतिष्ठान हमारे ऐसे हैं जैसे जो नॉन हजार्डस हैं, तो वहां पर 18 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं कुछ कंडीशन के साथ में काम कर सकते हैं, लेकिन वह बच्चे 14 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए। 14 वर्ष का जो बाल श्रमिक होता है या बच्चा काम करने वाला होता है वह किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में अनुमन्य नहीं है। 14 से 18 वर्ष के बीच के कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो नॉन हजार्डस प्रक्रिया में आते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि यदि वो बच्चा 3-3 घंटे की दो शिफ्टों में काम करना चाहता है स्कूल गोइंग के साथ में, यानी कि उसको विद्यालय में जाना आवश्यक है, और एम्प्लॉयर को भी उसकी सूचना जब काम कराते हैं या जिस तरह की ऐसी व्यवस्था में वो अपने पार्टिसिपेट करेंगे तो उसकी सूचना लिखित में हमारे विभाग को देनी पड़ेगी। दूसरी प्रकार की जो एक बाल श्रम होते हैं, जैसे हमारे धारा 3 है, हमारे बाल श्रम अधिनियम 1986 की धारा 3 जो है, धारा 3 में और धारा 3A, ये दोनों धारा 3 जो है हमारी वो है कि इसमें 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा जो है बिल्कुल एकदम प्रतिषिद्ध है, मतलब वो निषिद्ध है एकदम, उसमें उससे काम नहीं लिया जा सकता है
1: जी।
2: एक अन्य धारा है इसमें जो इस पर हम काम करते हैं, धारा 3A। धारा 3A में यह है कि जैसे हमारे बच्चे, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है, हजार्डस वर्क है, केमिकल वर्क है, कोई केमिकल प्लांट है, तो वहां पर 18 साल से कम आयु का कोई भी व्यक्ति कार्य कर नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में वो वहां पर उसके जो उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके विरुद्ध जो है नियमानुसार कार्रवाई अपनाई जाएगी।
1: जो नियोक्ता बाल श्रम करवाते हैं तो उनके लिए दंड का क्या प्रावधान है, इसमें क्या जुर्माना आदि की प्रक्रिया है?
2: धारा 3 के अंतर्गत जो हम धारा 3 और धारा 3A दोनों में जो उल्लंघन है, उल्लंघन जहां भी पाए जाएंगे तो उसमें बच्चे को वहां से लेकर तुरंत उस बच्चे का CWC के सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है। CWC उस पर एक ऑर्डर करती है कि इस बच्चे की आयु परीक्षण कराया जाए, तो CMO साहब के माध्यम से जिला अस्पताल में उसका आयु परीक्षण

0: किया जाता है। आयु परीक्षण में यदि वह बच्चा 14 वर्ष से कम आयु का सिद्ध हो जाता है तो उस बच्चे के जो सेवायोजक होते हैं उनके खिलाफ में जो है 20,000 रुपए की एक धनराशि का जो है उसके रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उसके विरुद्ध में, प्लस उसके खिलाफ जो है माननीय सीजम न्यायालय में एक वाद दायर किया जाता है। अभियोजन उसको कह सकते हैं, मुकदमा एक तरह से देसी भाषा में अगर बोलेंगे तो उसका एक मुकदमा दर्ज उसके विरुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो एक्ट में प्रावधान है, हमारे अधिनियम में जो प्रावधान बनाए गए हैं वह इस तरह के हैं कि जैसे मिनिमम 20,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक जुर्माना या 2 वर्ष की सजा अथवा दोनों, वो भी वो माननीय जो हमारे सीजम साहब होते हैं उनकी उस पर विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या उस पर लगाते हैं। इसी प्रकार जो अन्य हमने एक धारा बताई है धारा 7, 8, 9, जो नॉन हैजार्डस प्रक्रिया के बच्चे हैं जहाँ पे 14 से लेकर 18 तक के रेगुलेटरी हो सकते हैं, वहाँ
1: जी
0: उल्लंघन पाए जाने पर वो भी एक मुकदमा जो है या वाद जो है हमारे माननीय सीजम न्यायालय की कोर्ट में वो लगाना होता है। वहां पर मिनिमम जुर्माना 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक हो सकता है, या उसमें सजा वही 2 वर्ष की
1: जी
0: सजा या 2,000 रुपये जुर्माना या अथवा दोनों।
1: अपने भारत में बाल श्रम को लेकर आप किस तरह की स्थिति देखते हैं?
0: भारत में बाल श्रम की स्थिति देखिए, हमारा एक वृद्ध जनसंख्या वाला हमारा प्रदेश या देश है तो एजुकेशन के अभाव में भी बाल श्रम की दिखता है और उस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। उस पर कानूनी रूप से हम अगर काम करेंगे तो सफल नहीं हो सकते, हमें इसमें सभी वर्ग का सहयोग चाहिए। ये एक एक्चुअली सामाजिक बुराई है, इस सामाजिक
1: जी
0: बुराई को दूर करने के लिए हमें समाज के सभी वर्गों का, सभी हमारे संगठनों का, एनजीओ का, चाइल्ड लाइन का, इनका सबका सहयोग लेकर हम इसमें काम कर सकते हैं क्योंकि इसमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब तक कि हम इसमें अवेयरनेस नहीं लाएंगे लोगों के बीच में, उनको पता नहीं होगा कि इस बाल श्रम कराने के पीछे हम क्या खो रहे हैं, तब तक हम उस चीज को नहीं जान सकते कि हम अपना नुकसान कितना कर रहे हैं देश का और प्रदेश का। तो इसके लिए जानना आवश्यक है कि मतलब जो है हमारे सभी समाज के सभी वर्ग, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, ये सब इस तरह के लोग जो भी हमारे तबके हैं, जहां जहां इस तरह की जनसंख्या जहाँ पे ये है जो वर्किंग है, जिनके बच्चे स्कूल विद्यालयों में नहीं जा पाते, वहां हमें विभिन्न प्रकार के अभियान चलाकर जो है इनको हतोत्साहित करना पड़ेगा।
1: तो बाल श्रम को लेकर हमारे समाज में ऐसे क्या प्रमुख आप कारक देखते हैं जो कि इस समस्या को बढ़ावा देते हैं?
0: इसमें सबसे एक बात तो गरीबी है। देखिए गरीबी अपने आप में एक कारण है और जनसंख्या का अधिक होना भी इसका एक कारण ही है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है सामाजिक अवेयरनेस या जो इसमें लोगों में एक समझ की बात है, वो इसका मुख्य कारण है।
1: आम नागरिकों की क्या इसमें भूमिका हो सकती है?
0: इसमें आम नागरिकों को से मेरी यही अपील है, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगीनाथ जी द्वारा भी ये प्रण लिया गया है कि 2027 तक हमें पूरे उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त करना है,
1: जी
0: तो उसी क्रम में हम अपने हॉटस्पॉट बना बना के चिन्हित करके क्षेत्र वाइज हम उनको उस पर काम करेंगे। उस
1: जी
0: पर काम करने के बाद जो है जैसे हम चिन्हित करेंगे कि भाई हमने एक ब्लॉक ले लिया, एक वार्ड ले लिया, एक गांव ले लिया हमने, ऐसे करके उसको टारगेट करके चिन्हित करके उनको बाल श्रम फ्री करेंगे। और इसके लिए हमें वहाँ के प्रधान हो, सभासद हो या और भी मौजूद लोग जो गांव के होते हैं या एरिया के होंगे, उनका सहयोग लेके लोगों को उसके प्रति अवेयर किया जाएगा कि भाई इस बच्चे को इस काम में ना डाल के इसको विद्यालय की तरफ बढ़ाया जाए जिसमें शिक्षा विभाग हमारा पूर्ण सहयोग करता है। उसके परिवार की अगर गरीबी का भी मामला है तो उसके लिए हमारा जो है ग्रामीण बच्चों के लिए ग्राम विकास विभाग, शहरी बच्चों के लिए डूडा जो होता है नगरीय विकास अभिकरण जो होता है, वो उसके माध्यम से उसके परिवार को पुनर्वासित भी किया जाता है। तो इसलिए इसकी सारी व्यवस्था है इसमें, बस हमें मिलकर इसमें काम करने की जरूरत है। मात्र इसको दंडात्मक प्रवृत्ति से काम करने पर हम जो बुराई है, एक बड़ी वृद्ध बुराई है, इससे छुटकारा नहीं पा सकते। मतलब
1: तो इस बार श्रम विभाग मथुरा की बाल श्रम निषेध दिवस को लेकर क्या कुछ गतिविधि रहेगी?
0: अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस हम प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी मनाएंगे और इसमें हम अपने जो हमारे असंगठित संगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं, हमारे सामाजिक संगठन होते हैं और हमारे जो इंडस्ट्री वाले होते हैं, जो सेवायोजक होते हैं हमारे, एक हमारा श्रम बंधु का एक कमेटी होती है, एक हमारी चाइल्ड लेबर कमेटी होती है, जिला टास्क फोर्स समिति के नाम से जानी जाती है, बंधुआ श्रम समिति होती है, हम उन सबको उनके सदस्यों को बुला के और अपने जो हमारे असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक भाई हैं उन सबको बुला के जागरूक किया जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि हम अपने जो हमारी मंशा है हमारे शासन की, हमारी सरकार की, माननीय आदित्य योगीनाथ जी की, तो हम उसको उससे उन तक पहुंचा सकें, हम अक्षरश काम करते हुए 2027 तक जो है इस समस्या से छुटकारा पा सकें।
1: श्रम विभाग द्वारा क्या बाल श्रम को लेकर वर्ष भर जो कार्यवाही है वो की जाती रहती हैं?
0: जी हमारे यहाँ पे ये है कि हमारा एक उसमें प्रति हमारे जो लेबर ऑफिसर होते हैं उनका एक टारगेट हमने फिक्स कर दिया है। जैसे नॉन हैजार्डस कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं वो प्रत्येक हमारे जो लेबर ऑफिसर होता है उसको 10 बच्चे जो हैं एक महीने में चिन्हित करने होते हैं और जो खतरनाक प्रकार के बच्चे होते हैं, जो सेक्शन 3 और सेक्शन 3A में आते हैं, वो

0: कम से कम 7 बच्चे उनको करना चाहिए। मतलब जो है हमारे अभियान चलते रहते हैं, जिला टास्क फोर्स समिति जो गठित है जिलाधिकारी के अध्यक्षता में, और ये हमारे जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, चाइल्ड लाइन है, हमारे शिक्षा विभाग के लोग हैं, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये इसमें एजुकेशन विकास विभाग के लोग हैं, एजुकेशन के भी आते हैं, सब लोग इसमें मिलके एक टीम है, वो टीम के रूप में हम प्रत्येक माह जो है अभियान चलाते रहते हैं।
1: तो क्या कहना चाहेंगे हमारे सभी श्रोताओं से इस विशेष दिवस को लेकर?
0: पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस की जो है बधाई भी देना चाहूंगा सभी लोग अग्रिम में, और मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने स्वयं और अपने आसपास के परिवेश में इस बाल श्रम जैसी सामाजिक बुराई के प्रति लोगों को जागरूक करें, और जो भी समस्या कहीं आती है या कहीं इस तरह की समस्या आप देखें अपने आसपास में, तो वह हमारे श्रम विभाग के कार्यालय में तुरंत मेरे नंबर पर सूचना दे सकते हैं। मेरा नंबर चाहे तो नोट कर सकते हैं, 9717923877।
1: सर आपने आज हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और बाल श्रम को लेकर विशेष कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद, नमस्कार।
2: श्रोताओं, इसी विषय को लेकर अब हम बात करते हैं स्थायी लोक अदालत मथुरा की सदस्य सुश्री प्रतिभा शर्मा जी से।
3: जी धन्यवाद। बच्चे मेरे लिए प्राथमिकता है, और बाल श्रम को अगर आप लेके चलते हैं तो ये एक दंडनीय अपराध है, क्योंकि बच्चे पढ़ने के लिए, खेलने कूदने के लिए होते हैं, घर परिवार की रोशनी होते हैं, और अमूमन आप देखते हैं कि हर बच्चा 2-4 घरों को छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि बाल श्रम करता नजर आता है। बाल मजदूरी का निषेध अधिनियम 1986 में बना था, वो इसीलिए कि बच्चों का बचपन सुरक्षित रहे, लेकिन आज भी कानून केवल किताबों में और कागजों में मौजूद है, उस पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। हर चाय की दुकान पे आपको एक छोटा बच्चा नजर आएगा। आवश्यकता है कि इन बच्चों को वहां से ले जा करके उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए और ऐसा शेल्टर प्रोवाइड कराया जाए जहां ये बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और शिक्षा, क्योंकि बच्चों का सबसे पहला अधिकार है जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आता है, शिक्षा का अधिकार, और हम उसके शिक्षा के अधिकार को तो छीनते ही हैं, साथ ही साथ उनके बचपन से भी उनको महरूम करते हैं। तो बच्चों को सबसे अधिक आवश्यकता है अपने बचपन को सुरक्षित रखने की। कानून में भी ये प्रावधान है कि 14 वर्ष की उम्र तक आप किसी भी बच्चे से किसी भी तरीके का कोई कार्य नहीं करा सकते, ना ही किसी कारखाने में रख सकते हैं, ना ही किसी अन्य दुकान पर रख सकते हैं, यहाँ तक कि माता पिता भी कार्य नहीं करा सकते हैं। तो इस कानून को सरकार को चाहिए कड़ाई के साथ पालित करें, और 12 जून हमेशा आता है, 12 जून अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मैं सभी से आह्वान करना चाहती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आह्वान करना चाहती हूँ कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए इस कानून को और अधिक कड़ाई के साथ लागू किया जाए, जगह जगह स्लोगन बनवाए जाएं, हर दुकान पे लगाए जाएं, और जबकि अलग से श्रम विभाग इसी बात के लिए बना हुआ है कि कहीं भी बच्चे अगर श्रम करते पाए जाएं, जो श्रम नियोक्ता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। आप जब शादियों का सीजन शुरू हो जाता है तब देखिएगा छोटे छोटे बच्चे हंडा उठा करके चलते हैं। कई बार इसको अभियान के रूप में हम लोगों ने चलाया है और ऐसे बच्चों को पकड़कर भी लाए और उनको फिर विस्थापित भी किया गया, माता पिता से भी उनके लिए शपथ पत्र लिए गए कि बच्चों से बाल श्रम नहीं करवाया जाएगा। लेकिन आज की स्थिति भी आप अगर देखेंगे तो बाल श्रम अधिक हो रहा है।
1: हमारे समाज में कहाँ सुधार की आवश्यकता है?
3: देखिए, सबसे पहले तो सुधार की आवश्यकता पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि मानसिक रूप से व्यक्ति को सुधार की आवश्यकता है। कोई बच्चा अगर परिवार के कारण बाल श्रम कर रहा है, जैसे किसी के माता पिता की मृत्यु हो गई है, वो बच्चा अगर कार्य कर रहा है तो उसकी मजबूरी है, दादा दादी भी नहीं है, और आज का महंगाई का युग है तो लोग रखना नहीं चाहते, अगर वो बच्चा कार्य कर रहा है तो समझ में आता है। लेकिन जो नियोक्ता होते हैं वो इसलिए भी रखना चाहते हैं कि बड़ों की अपेक्षा बच्चों को कम मजदूरी, तो न्यूनतम मजदूरी भी देनी पड़ती है बहुत कम, और बच्चे उत्साही होते हैं, कार्य भी अधिक करते हैं, तो इसलिए भी लोगों की धारणा है कि आप बच्चों को रखेंगे, डांट भी देंगे, इनके माता पिता की मजबूरी भी है, तो ऐसे लोगों के द्वारा भी बाल श्रम कराया जाता है। तो इस दिशा में कार्य करना चाहिए, सरकार को चाहिए कि अगर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करा रहे, तो जैसे ईंट भट्टों पे होता है या कहीं मकान बनाने के जो ठेकेदार होते हैं, तो वहां सामूहिक रूप से ऐसा कोई विद्यालय होना चाहिए जब माता पिता मजदूरी करने जाएं तो वो अपने बच्चों को वहां पर छोड़ जाएं, तो वहां उनको शिक्षित भी किया जाए और उनको भोजन पानी की भी व्यवस्था हो, तभी हम बाल श्रम को रोक सकते हैं। बच्चों की अधिक संख्या भी और परिवार की आय कम होना भी इसका महत्वपूर्ण कारण है, जिसकी वजह से भी माता पिता बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं कि जाओ जो कुछ भी है कमा करके लाओ। आज कल आप वृंदावन में देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे घास की

0: लेकर के और चंदन की वो लेकर के 10 रुपए 20 रुपए कमाते हैं, तो ये भी बाल श्रम के अंतर्गत आता है। इसके लिए जो भी बाल अधिकारी हैं या जो बाल कल्याण से संबंधित अधिकारी हैं उन सबको संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे बच्चों के लिए कार्य करना चाहिए।
1: तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, मैं सबसे पहले यही संदेश देना चाहूँगी, इसको केवल कागजों पर ना मनाया जाए। और मैं बच्चों से आह्वान करना चाहूँगी कि अगर उनसे बाल श्रम करवाया जाता है, कठोरता के साथ विरोध करें, चाहे माता पिता हों या अन्य व्यक्ति हों। और अगर नहीं मानते हैं तो हेल्पलाइन का नंबर लें, चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। अगर वो बताते हैं कि हमें कोई श्रम करा रहा है तो उनको तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बाल कल्याण अधिकारी हैं, पुलिस विभाग है और अन्य व्यक्ति हैं, महिला कल्याण एवं बाल विभाग है, वो लोग अगर सख्ती से पेश आएंगे तो बच्चों को इस ओर जाने से रोका जा सकता है। इसके साथ ही समाज में जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको भी चाहिए कि समय समय पर शिविर लगाकर बच्चों को अवगत कराएं कि वो बाल श्रम ना करें। उनकी उम्र शिक्षा की है, पहले शिक्षा पूरी करें, जब शिक्षा पूरी कर लेंगे तो आजीवन व्यक्ति को श्रम ही करना है। बाल श्रम का पूर्णतः विरोध होना चाहिए, निषेध होना चाहिए। अन्य जो लोग इसमें लिप्त रहते हैं वो लोग भी सजग रहें कि कभी भी अगर बच्चे पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसलिए बस यही संदेश है कि बचपन सुरक्षित रहे, महफूज रहे और हमारे बच्चे हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। यही आज मैं संदेश देना चाहूँगी।

और श्रोताओं, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम के अगले सेगमेंट क्या करें क्या ना करें में आपसे ये अपील करना चाहेंगे कि इस समय जून का महीना चल रहा है और इस महीने में गर्मी अपने चरम पर होती है और गर्म हवाएं, जिन्हें हम लू कहते हैं, इस मौसम में अक्सर चलती हैं और इनसे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लू एक ऐसी स्थिति है जो शरीर के अत्यधिक गर्म हो जाने पर होती है और इससे चक्कर आना, सिर दर्द, कमजोरी, तेज बुखार और बेहोशी जैसी समस्याएं हो जाती हैं और अक्सर इस मौसम में डिहाइड्रेशन की भी समस्या होती है। तो इनसे बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि दिन में 12 से 4 बजे के बीच में अपने जो आवश्यक काम हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, तभी उस कार्य से निकलें। अगर इतना आवश्यक नहीं है तो दिन के 12 से 4 बजे के बीच में बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, हल्का ताज़ा भोजन करें, मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी इत्यादि का सेवन करें और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने सर पर टोपी या गमछा आदि से अपने सर को ढकें, छाता वगैरह लेकर निकलें, क्योंकि जो धूप की तपिश है वो बहुत तेज़ होती है और इससे कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होती है और हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इससे बचें और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पानी को पर्याप्त मात्रा में पीते रहें, अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने दें और तरल पदार्थों का सेवन करें। और इसी के साथ अब हम एक नज़र आज की कुछ खास खबरों पर डाल लेते हैं। तीन तलाक और एसिड अटैक जैसी गंभीर सामाजिक त्रासदियों से प्रभावित महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से ऐसी महिलाओं को लाभान्वित करेगी। इसी के साथ एक और खबर है। अधिक मास में श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उन्हें सुविधा और सुगम आवागमन के लिए गोवर्धन में विशेष यातायात प्रबंधन लागू किया गया है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार नई यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। अब एक नज़र आज के दिन विशेष पर डाल लेते हैं। आज की तिथि 10 जून इतिहास के झरोकों से ये कहती है कि आज ही के दिन सन 1986 में भारतीय क्रिकेट इतिहास के दिन में ये इतिहास रचा गया था। क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर पहली बार टेस्ट मैच जीता गया था। और आज ही के दिन बेंजामिन फ्रैंकलिन का पतंग प्रयोग सन 1752 में मशहूर वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आकाशीय बिजली पर अपना प्रसिद्ध काइट एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे ये साबित हुआ कि आसमानी बिजली में भी विद्युत होती है। तो उसी के साथ कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। अगले कार्यक्रम में आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई जानकारी, नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

श्रोता साथियों, आज इस समय प्रसारित होने वाले NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण अब दोपहर में 2:30 से होता है। शिक्षा एवं जीवन के विविध महत्वपूर्ण पहलुओं पर आधारित ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम बच्चों, अभिभावकों एवं शिक्षा जगत से जुड़े सभी लोग इस कार्यक्रम को आप जो हैं परवर्ती समय पर दोपहर 2:30 से सुन सकते हैं। फिलहाल तो आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आपने सुना अभी किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मेरे जीवन साथी का ये गीत। गीतकार थे शायर जनाब मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत आर डी बर्मन का था। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आप सुन रहे हैं इस समय कभी कभी फिल्म के गीत को, शब्द रचना है साहिल लुधियानवी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। माफ कीजिएगा, खयाम साहब का है।

0: आपने सुना अभी कभी कभी फिल्म के इस गीत को लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। और अब आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।
1: सुनो एक तराना नया एक फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।

जीने की राह, आपने सुना भी इस फिल्म के गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

रॉकी फिल्म के इस गीत को आवाज़ें दी थीं किशोर कुमार, लता मंगेशकर ने आनंद बख्शी के लिखे इन बोलों को धुन से सजाया था आर डी वर्मन ने और साथियों। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत।

आपने सुना अभी जगजीत सिंह की आवाज़ में सरफरोश फिल्म के इस गीत को, रचना थी शायर जनाब निदा फाजली साहब की और संगीत जतिन ललित का था। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: सुरेश वाडेकर। साधना सरगम की आवाज़ में आपने सुना अभी फिल्म सल्तनत के इस गीत को। हसन कमल की इस रचना को संगीतबद्ध किया था संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है साथियों, और आप इस वक्त आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से फिल्म संगीत का। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

हम आपके हैं कौन, आपने सुना भी इस फिल्म के गीत को लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आपने सुना अभी फिल्म बंजारन का ये गीत। आवाज़ें थी सुरेश वाडेकर और अलका याग्निक की। साथियों, कार्यक्रम का आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आपने सुना अभी बाजार फिल्म के गीत को, जगजीत कौर पामेला चोपड़ा की आवाज़ों में। खयाम साहब का संगीतबद्ध यह गीत था। और साथियों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आपने सुना अभी जांबाज फिल्म के इस गीत को मनहर उदास और साधना सरगम की आवाज़ में। अब आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

आपने सुना अभी काला पत्थर फिल्म के इस गीत को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शब्द रचना साहिर की थी और संगीत राजेश रोशन का था। अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

लता मंगेशकर, मनहर उदास के गाए फिल्म लुटेरे के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। साथियों, आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से इस वक्त आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति रश्मि शर्मा की है।

0: अरे अरे घबराइए मत, मैं बीमार नहीं आपका इलाज करने आई हूँ, क्योंकि अब आपका इलाज होगा आप ही के पसंदीदा गीतों के साथ और हमारे साथ की गई प्यारी प्यारी बातों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन श्रोता हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हेलो आकाशवाणी,
1: परम आरती, सादर नमस्कार।
0: सादर नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: दीदी मैं आपका वही जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति त्रिनाथी मथुरा उत्तर प्रदेश से अरे दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से।
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में प्रजापति जी। और अधिक मास चल रहा है और देखिए आपका तो वास भी उसी जगह पर है, मतलब उसी रोड पर है जहां से हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन आते और जाते रहते हैं। और इस समय अधिक मास के होने से हमारे श्रद्धालुओं की संख्या ब्रज क्षेत्र में बहुत बढ़ी हुई है, क्या कहेंगे इस विषय में आप?
1: जी दीदी धन्यवाद, बिल्कुल आपने सही कहा है कि पुरुषोत्तम मास में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है, लोग वृंदावन परिक्रमा मथुरा परिक्रमा और गोवर्धन की परिक्रमा करने आते हैं, वहाँ के दर्शन करने आते हैं। लेकिन प्रचंड गर्मी और भीषण धूप में भी श्रद्धालुओं के लिए पर्यटकों के लिए कोई मायने नहीं रखता है, बस आस्था और श्रद्धा भक्ति भाव से बहुत ही अच्छा लगता है जब श्रद्धालु यहाँ से गुजरते हैं। और हमारा जो गोवर्धन रोड है ये 24 घंटे व्यस्त रहता है।
0: जी बिल्कुल, व्यस्त रहना भी चाहिए क्योंकि श्रद्धालुओं का आगमन ही इतना हो रहा है ब्रज क्षेत्र में। तो आज कौन से गीत सुनना चाहेंगे?
1: देवेश शब्दम, मैं आपको आकाशवाणी परिवार को 90 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। 8 जून 1936 को ये आकाशवाणी का नाम दिया गया, प्रारंभ हुआ था, और आज 8 जून 2026 हो गया, मतलब 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
0: जी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और आज क्या फरमाइश रहेगी?
1: बस इसी अवसर पर आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, उसका नाम है अनुरोध है। किशोर कुमार साहब ने गीत को गाया है, राजेश खन्ना साहब गाना गा रहे हैं आकाशवाणी से, आपके अनुरोध पर मैं ये गीत सुनाता हूँ।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं जी? परिचय दे दीजिए जी।
1: मैं ब्रज रेडियो श्रोतावृत्र सांवरिया गांव खड़ावर तहसील कुमेर जिला जी राजस्थान से।
0: कैसे हैं सांवरिया जी? कहीं चले वाले गए थे क्या भारत छोड़ के?
1: नहीं गए नहीं, घर पर ही है, किसी और को भी मौका मिलना चाहिए।
0: हाँ, अरे हम तभी कहें भाई, इतने दिनों से सांवरिया जी का फोन नहीं आया, क्या बात है? सब खैरियत से तो है?
1: सर खैरियत से है, आपके पास फोन मिल गया और हम खैरियत से हैं।
0: बिल्कुल। तो आज सांवरिया जी, आपके यहाँ अधिक मास में जो आपका क्षेत्र है, वहाँ पर भी क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ श्रद्धालुओं का अधिक आवागमन हो रहा हो?
1: इधर कामा है, ढीग है, और इधर एक ये समय हमारे यहाँ के राजस्थान में नहीं पड़ते हैं
0: जी। श्रद्धालुओं का आगमन कितना है वहाँ पर?
1: बहुत, काफी मात्रा में
0: जी। और आज क्या कहेंगे कार्यक्रम में, क्या फरमाइश रहेगी?
1: आज हमारे को साथी है श्री रूप किशोर जी, श्री रमन लाल जी और श्री लाल सिंह जी। जमीन पर उनका फोन नहीं मिलता है।
0: अच्छा, चलिए आपके माध्यम से वो हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, उसके लिए उनका आभार। पसंद बताइए क्या सुनेंगे?
1: आज सुनवाए जीवन मृत्यु फिल्म से झलमल सितारों का आंगन होगा।
0: ठीक है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: नमस्कार
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: सर। मैं ब्रिज सोता में गांव मुसार भजनलाल बोल रहा था मैडम।
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं
1: तो
0: आप?
1: सर ठीक है आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज क्या सुनना चाहेंगे भजनलाल जी?
1: सर हमें गूंजों की शहनाई का गाना सुनवा दीजिए।
0: कौन सा?
1: जीवन में पिया

0: लगा है। क्या करते हैं राकेश जी?
1: दुकान करते हैं मैडम।
0: किस चीज की दुकान है आपकी?
1: मोटर पार्ट्स की।
0: अच्छा, तो चलिए आपकी दुकानदारी बढ़िया चले और लोगों की सेवा का अवसर आपको मिलता रहे। और आज क्या फरमाइश रहेगी आपकी?
1: जी मैडम, आप कौन बोल रही हैं?
0: मैं रश्मि शर्मा बोल रही हूँ।
1: तो आप दोस्ताना फिल्म सुनवा दीजिए।
0: कौन सा गीत सुनेंगे?
1: इतना आसान है।

0: हेलो आकाशवाणी
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं राकेश लवानी अचनेरा आगरा।
0: जी राकेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं। अभी
0: आपका फोन कार्यक्रम में आता रहता है या पहली बार लगा है?
1: दूसरी बार लगा है।
0: चलिए दूसरी बार।

0: हेलो आकाशवाणी। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: मैं जवाहर सिंह, गांव सैपुर से, जिला भरतपुर, राजस्थान से अर्ज कर रहा हूँ।
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में, और क्या फरमाइश रहेगी, क्या गाना सुनना चाहेंगे?
1: पुरानी पिक्चर है क्या, दूर की आवाज? हाँ, उसका गाना है।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज का कार्यक्रम पेश किया रश्मि शर्मा ने।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
0: और अब पेश है फिल्म संगीत।

मुकेश की आवाज में आपने सुना संबंध फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा प्रदीप ने, संगीतबद्ध किया ओपी नैयर ने। और अब कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। फिल्म है संगम, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

यह है सरगम फिल्म का गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की हैं, शब्द रचना आनंद बख्शी की, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और आइए अब सुनते हैं मन्ना डे का गाया हुआ ये गीत फिल्म सौदागर से। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत था फिल्म आपकी परछाइयां से। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: थोड़ी ही देर में हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम गीत बात और SMS।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत बात और SMS।

श्रोताओं, गीत और संगीत के इस सुहाने सफर में आज मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले आपसे थोड़ी सी बात, और वो बात है पर्यावरण बचाने की। ये तो हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण बचाना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव अगर हम कर लें तो हम बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, जैसे अधिक से अधिक पेड़ लगाना, पानी की बचत करना, बिजली की बचत करना, और साथ में जो प्लास्टिक का उपयोग हम करते आ रहे हैं उस प्लास्टिक के उपयोग को रोकना, और कचरे का सही अगर हम निपटान कर देते हैं तो इन सब बातों को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपके काफी संदेश हमारे पास आ चुके हैं, तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं उन संदेशों को जो 11:45 के बाद हमारे पास आए हैं। ये श्रोता हैं मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। अगला संदेश हमें मिला है अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह, और साथ में है विनोद पुरी और जयपाल यादव। ये श्रोता हमसे जुड़े हैं बाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप विश्वदीप, अशोक येले, और साथ में अरुणा बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर। कासम कॉलोनी सनावत से हमारे श्रोता हैं यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रीश, नूर मीना, इरफान मीना और कासिफ मीना।

गंज डुंडवारा से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान और मोहम्मद उस्मान अंसारी। और ये श्रोता हमसे जुड़े हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया। गुजरात गांधी ग्राम से हमारे श्रोता हैं प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जूली और जगदीश जोहरी। अगले फरमाइशकर्ता संदेश लिखते हैं तिरुपति नगर नांदूरा से संतोष वसाने, उषा वसाने, ऋषिकेश, अनिकेत, सागर कटक और इनके संगी साथी। ग्राम पीपरलोड सरगांव से संदेश भेजा दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने। मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉ अमनदीप और इनके मित्रगण। ये संदेश है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशांत और इनके परिवारीजनों का। अगला संदेश मिला है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविन्द्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी छावड़ा का। और ये श्रोता हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी और ओम कुमार। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबिहा, अनस और रेहान। गोकुल चौक गंग जला सहरसा बिहार से संदेश लिखा है राधे कुमार विद्यार्थी सविता, राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार और इनके परिवारीजन ने। नाहर मंटोला मधुबनी बिहार से हमारे श्रोता मोहम्मद साबिर परवाना, साजिद अली, जाहिद अली और शाहिद अली का संदेश मिला। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं सोपान तायडे, वसंतराव भोजने, पीएस नावकर और तुषार। साथ में ये संदेश मिल रहा है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल और निशा का। पटेल नगर मलौट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू का संदेश भी मिला है। श्रोताओं आप सबकी फरमाइश पर सुनवाते हैं अर्पण फिल्म से ये गीत, स्वर लता मंगेशकर का है।

श्रोताओं, वृक्षारोपण। पेड़ हमें प्राणवायु यानी ऑक्सीजन तो देते ही हैं, साथ ही तापमान को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें तो हमारा जो आसपास है वो हरा भरा दिखाई देगा। इसके साथ साथ अगर हम प्लास्टिक का त्याग कर दें, यानी सिंगल यूज़ प्लास्टिक जैसे थैलियाँ हैं, स्ट्रॉ है, इनका उपयोग बंद कर दें और इनके स्थान पर अगर हम जूट की थैली या कपड़े के बने थैलों का प्रयोग करें तो ये पर्यावरण के लिए हमारा बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। अगर आवश्यकता नहीं है तो घरों पर जो लाइटें लग रही हैं, पंखे चल रहे हैं, उनका उपयोग बंद कर दें। पानी के दुरुपयोग को भी रोका जा सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। और अगर श्रोताओं, कहीं हम छोटी दूरी पर जा रहे हैं तो छोटी दूरी तय करने के लिए आप पैदल भी चल सकते हैं या साइकिल का उपयोग कर सकते हैं, या फिर अगर सामूहिक रूप से अगर हम किसी वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान हो सकता है पर्यावरण को बचाने में, पर्यावरण को संरक्षित रखने में। और श्रोताओं, अब आपके संदेशों की बारी। ये संदेश है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल का। धरदेई सरगांव से हैं चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष कुमार, विनीत और कृष्टि पटवा। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से हमारे श्रोता रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित और बेबी गर्वी।

ये संदेश हमें लिखा है बदरुद्दीन अंसारी, मुश्ताक सुलेमानी, सलीम आज़ाद और इनके संगी साथियों ने बनारस से। पदमपुर जिला श्री गंगानगर से है मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। चंडीगढ़ से हमें संदेश लिखा है सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष और महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल और इनके मित्रगण। कुम्भार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और इनके संगी साथी। कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष, योगी, सुशील, बब्बू, डब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी का संदेश मिला। और हमें ये संदेश लिखा है सादुल शहर राजस्थान से। लिखने वाले श्रोता हैं राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला और फरहान लल्ला। और ये श्रोता हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, राहुल खुराना, रचिता, केशु रिधान खुराना। और अगला संदेश है शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी का। बजनू का टीला से संदेश लिखा है कमल बालूजा, मधु सागर, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने। आदर्श नगर मलौट से यानी ये श्रोता हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरव, साइना शर्मा और निवान शर्मा। हमारे ये श्रोता हमसे जुड़े हैं डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार गौरव मंदूरकर। नाज पैलेस अजमेर शरीफ से हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद, अरहाम और इनका पूरा परिवार। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं सौरभ निषाद, प्रकाश, बबलू निषाद और इनके बाल गोपाल। और साथ में हमारे श्रोता है राजनगर बिहार से भाई नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, कामेश्वर, कपिलेश्वर और इनके सभी मित्रगण। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित ताहूजा। और अगला संदेश लिखा है भाई मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा ने भिलाई छत्तीसगढ़ से। श्रोताओं आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर यशुदास का गाया हुआ ये गीत। फिल्म का नाम है सावन को आने दो।

और श्रोताओं, अब जो संदेश हमें मिले हैं वो इस प्रकार हैं। नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन और पीआर जैन। और ये संदेश हमें लिखा है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों ने। अगला संदेश मिल रहा है चांपा छत्तीसगढ़ से दिलदार मिरी, ज्योति जानवी, दीक्षांत मिरी का। और हमारे ये श्रोता हैं फुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, नूतन, अमन पाराशर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। ग्राम पंचायत बठेना पाटन से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, उमेश और प्रमिला बंछोर। कमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। डोगरगांव छत्तीसगढ़ से हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय। हमारे ये श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय। आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग हमारे श्रोता हैं सहारनपुर के। और ये श्रोता हैं मराठवाड़ा महाराष्ट्र से सुधाकर, राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत, कुमार संचित, कुमार प्रथमेश, सर्वद, प्रणाली देशमुख, सानवी और कुमारी कल्पना देशमुख। अगला संदेश भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार का। और ये हमारे श्रोता हमसे जुड़ गए हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, लोकेश पायल, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला और अंकिता जोशी। और ये संदेश लिखा है गणेश अविका आर्ट श्रीरामपुर से, डी अशोक कुंभार, जीविका सानू कुंभार और अर्चना कुंभार ने। हमारे ये श्रोता हैं दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, नथाना।

पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण। और ये संदेश है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारका, हार्दिक और वंश बत्ता का। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू रविंद्र, रौनक सेन और इनके परिजन। अड़ार नादगांव छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा। और ये संदेश छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा, शुभम और अक्षय का मिला है। हमारे ये श्रोता हमसे जुड़े हैं करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानगुना गोपाल, माहेश्वरी प्रवालिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल। वड़िंगखेड़ा पंजाब से हैं विंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे यवतमाल महाराष्ट्र से संदेश लिखते हैं। और फोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार और अर्पिता जी। और हमारे ये श्रोता ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण और जयश्री। तेलीपारा बिलासपुर से गुणवंत श्रीवास, करुणा, आयुष और विवेक श्रीवास का संदेश मिला है। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार। और ये श्रोता जुड़े हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। कल्याण मुंबई से हैं किशोर हिवराले, सुजाता और प्रतीक हिवराले। डेर पाटन गुजरात से हैं धीरज वी रबारी। और चकला बाजार समाना शहर से पप्पू राजा, खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, अर्जू हसमुखलाल और इनका पूरा परिवार। और ये श्रोता है काशी निवास नागपुर से प्रकाश रंभाड़े, भारती, जानवी, वैष्णवी और हर्षल। साथ में ये श्रोता भी जुड़े हैं हमारे पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णवानंद और सत्यम आनंद। और अगला संदेश बीड शहर महाराष्ट्र से है नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री और इनके संगी साथी। बेरडी एमपी से हैं हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनया। और ये संदेश लिखा है जिला खरगोन सनावत से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, आयुषी, अनुज, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और इनके संगी साथियों ने। और ये संदेश हमें मिला है पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशुरिधान खुराना और तुलसी मस्कीन का। हमसे जुड़े हैं ये श्रोता रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा, रंजूबाई, युवराज और शिवांगी। और एक संदेश ये मिला है हमें क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी का। श्रोताओं आप सबकी फरमाइश पर सुनवाते हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले का गाया हुआ ये गीत। फिल्म का नाम है सीता और गीता।

और श्रोताओं, ये श्रोता हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलूफर फातिमा।

जी हाँ श्रोताओं, हम भी आपसे कल मिलेंगे इसी कार्यक्रम में आपकी फरमाइशों के साथ और आपके पसंद के गीतों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। इस कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार हैं विनीता शर्मा।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी।
2: दूसरा कोई मैच है क्या?
3: ऐसे ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
2: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
4: पर बैंकिंग में नहीं।
5: वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
4: सीनियर सबसे पहले, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत। स्वर विनीता शर्मा का है।

ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज आपने विनीता शर्मा के गाए कुछ लोकगीत सुने। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री

शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और घरेलू शेयर बाजारों में आज आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खां का सरोद वादन। संध्या 7:05 पर होगा ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में ब्रज काव्य सुधा के अंतर्गत हमारे कवि होंगे हरिबाबू ओम। अब से थोड़ी ही देर बाद 1:10 पर आप सुनेंगे देशगान। 1:15 पर महिलाएं अपना कार्यक्रम सुनेंगी वनिता लोक। इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे एकाकी परिवार और बच्चों को संस्कारित कैसे बनाएं और स्वास्थ्य और संतुलन का मार्ग योग। इसी कार्यक्रम में डॉक्टर आभा पांडे कहानी प्रस्तुत करेंगी सुधी तेरी सुध आई। एक बजकर 45 पर श्रोता आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। और 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। संध्या 5:30 पर हमारे युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युव वाणी। आज की बात के विषय रहेंगे सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और शिक्षा जीवन का आधार। इसी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे विज्ञान वार्ता विद्युत चुंबकीय तरंगे और बढ़ते खतरे। ये वार्ता प्रस्तुत करेंगे अजीत सिंह।

संध्या 6:15 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में संतुलित उर्वरक उपयोग खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत चर्चा की जाएगी और डॉ. मनीष कांवत की वार्ता का विषय होगा ऊसर सुधार हेतु सामायिक कृषि कार्य। वर्मी कंपोस्ट उत्पादक किसान से बातचीत करेंगे वीरेंद्र सिंह इसी कार्यक्रम में। संध्या 6:45 का समय होगा संध्या वंदन कार्यक्रम का। संध्या 7:31 पर हमारे श्रोता सुनेंगे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10 बजे आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: और आइए अब सुनते हैं संवेद स्वरों में ये देश गान।

अभी आपने सुनी संवेद स्वरों में ये देशभक्ति परक रचना। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब महिलाएं अपना कार्यक्रम सुनेंगी, वनिता लोक।

मुस्कुराहट पर तो हजारों फिदा हो जाते हैं, तलाश उसकी करो जो आंसुओं का हिस्सेदार बने। और इन्हीं चंद लाइनों के साथ हमारी प्यारी प्यारी बहनों को, सखियों को रेशमा अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। और बहनों, अब शुरू करते हैं आज का अपना खास मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक आज की चर्चा के साथ। बहनों, वर्तमान में आप देख ही रही हैं कि एकाकी परिवार होते जा रहे हैं, और एकाकी परिवार में बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए माता पिता का अपना आचरण सबसे बड़ा उदाहरण होता है। और यह इसलिए है क्योंकि बड़े बुजुर्गों का सीधा सानिध्य उनके पास नहीं होता है, इसलिए बच्चों को अपनी संस्कृति, नैतिक मूल्यों और अच्छे व्यवहार से जोड़ने के लिए घर में एक अनुशासित और सकारात्मक माहौल बनाना बहुत जरूरी हो गया है। तो बहनों, यह आज के माता पिता के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है, चाहे उसके पीछे कोई भी रीजन हो। अब ऐसे में माता पिता को ही सोचना पड़ेगा कि एकाकी परिवार में बच्चों को कैसे संस्कारित बनाया जाए। तो बहनों, इसके लिए कुछ प्रभावी व व्यवहारिक तरीके आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस चर्चा के माध्यम से। उम्मीद है ये तरीके कहीं न कहीं माता पिता के लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले बहनों, हम माता पिता को यानी खुद पेरेंट्स को आदर्श बनना होगा, क्योंकि बच्चे जो परिवार में घर में देखते हैं वह वही सीखते हैं। आप जो सिखाओगे वो नहीं सीखेंगे जल्दी से, लेकिन वो जो देखते हैं वो जल्दी से सीख पाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि बच्चे बड़ों का सम्मान करें, सच बोलें या दयालु बने, तो आपको स्वयं भी अपने व्यवहार में इन मूल्यों को अपनाना होगा। और पारिवारिक परंपराएं जो होती हैं तो उनके आप नियम बनाएं। भले ही परिवार आपका छोटा क्यों ना हो, लेकिन कुछ परंपरा आपको बनानी होगी, जैसे साथ में भोजन करना, दिन में कम से कम एक बार यानी रात का खाना आप साथ में अवश्य खाएं। उस समय आपको मूवी या टीवी वगैरह आप जो

देखते हैं मोबाइल इसका उपयोग नहीं करना है। इससे क्या होता है बहनों, हम साथ में बैठकर भी एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं। और इसके अलावा प्रार्थना या ध्यान, सुबह या शाम को 10 मिनट के लिए साथ में पूजा या ध्यान करें, इससे घर में शांति और संस्कार आते हैं। कृतज्ञता व्यक्त करें, रात को सोने से पहले बच्चों को पूरे दिन में हुई बातों के लिए ईश्वर या बड़ों का धन्यवाद करना सिखाएं। कहानियों और महापुरुषों की जीवनियों से बच्चों को जोड़ें। एकाकी परिवार में बच्चों को दादा दादी नाना नानी की कहानियों का विकल्प खुद माता पिता को बनना होगा। बच्चों को रात को सोते समय रामायण महाभारत पंचतंत्र या प्रेरक महापुरुषों की कहानियां सुनाएं। इससे उनमें सही और गलत का फर्क समझने की समझ पैदा होती है। जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता सिखाएं। संस्कारों का एक हिस्सा अनुशासन और आत्मनिर्भरता भी है। बच्चों से घर के छोटे छोटे काम होते हैं बहनों, आप उनको अवश्य करवाएं, जैसे अपने खिलौने सही जगह पर रखना, अपनी पानी की बोतल भरना और बड़ों को पानी देना। इससे वे परिवार के महत्व और श्रम का सम्मान करना सीखते हैं। खुले मन से संवाद करें। बच्चों को निर्देश देने के बजाय उनसे दोस्त की तरह खुलकर बात करें। उन्हें समझाइए कि उनके किसी गलत व्यवहार का परिवार पर क्या असर पड़ेगा। यदि वे गलती करते हैं तो उन्हें प्यार से समझाइए, चिल्लाने से बचें। रिश्तों की अहमियत बताएं। भले ही आप अलग रहते हैं, लेकिन बच्चों को अपने दादा दादी चाचा चाची और रिश्तेदारों के साथ वीडियो कॉल के जरिए जोड़कर रखें। जब बच्चे अपने माता पिता को अन्य रिश्तेदारों के साथ प्यार से बात करते और सम्मान देते देखेंगे तो वे भी पारिवारिक मूल्यों को सीखेंगे। तभी तो कहा जाता है कि समझो तो परिवार एक मंदिर है जिसमें अपने कुछ नियम होने चाहिए, अच्छे संस्कारों की भक्ति होनी चाहिए, एक दूजे में इसने की शक्ति होनी चाहिए, दिलों में भावना की मस्ती होनी चाहिए। इसी इसने और शक्ति और दिलों में भावना की मस्ती के साथ सुनिए यह प्यारा सा गीत।

0: बहनों, वर्तमान में प्राचीन काल की अपेक्षा कहानी का ट्रेंड कहीं न कहीं कुछ तो कम होता ही जा रहा है। आज की पीढ़ी तो इतनी व्यस्त है कि किसी को भी परिवार में कहानी सुनना या सुनाना या उस पर चर्चा करना, विचार विमर्श करने का समय ही नहीं है। तो सोचो बहनों, ऐसी परिस्थिति में परिवार में बच्चों में संस्कारों में कमी आने का तो मुख्य कारण यही है। तो इसीलिए बहनों, बच्चों को कहानी से अवश्य जोड़ें और आप सभी जुड़ें। तो जब कहानी की बात चली रही है, तो क्यों ना आज इसी क्रम में हम आपको सुनवा दें एक कहानी। कहानी का शीर्षक है सुधी तेरी सुधी आई। कहानीकार हैं डॉक्टर आभा पांडे।
1: ये चाय है या कुछ और? चाय का घूंट भरते ही बड़ा ही कटु शब्द बोलने वाले थे तपन बाबू कि कहते कहते रुक गए। दरअसल चाय रखने वाला हाथ उनकी पत्नी सुधा का नहीं बल्कि उनके छोटे बेटे अनुज का था, जो अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब किए जाने पर एहसान सा जताता हुआ चाय रखकर जा चुका था। बरसों से सुधा के हाथों की स्वादिष्ट चाय पीने के अभ्यस्त तपन बाबू का मूड सुबह सुबह ही बिल्कुल ऑफ हो गया था। रविवार की छुट्टी अब उन्हें बेमानी लगने लगी थी। सुधा के रहते रविवार का दिन कैसा उत्सव सा होता था। न्यूज़पेपर के साथ चाय के घूंट ऐसे लगते थे जैसे चाय नहीं अमृत पान कर रहे हों वे। इसके बाद गर्मा गर्म नाश्ते की डिश, जो कम से कम 2-3 महीने के रविवार तक रिपीट नहीं होती थी। नाश्ते के बाद लंच भी क्या कुछ कम होता था, बस यूं समझो आत्मा तक तृप्त हो जाती थी उनकी। पहले जिस रविवार का वे सप्ताह के 6 दिन इंतजार करते थे, वे अब नीरस और उबाऊ लग रहे थे, पहाड़ की तरह लंबे जिसमें समय काटे नहीं कट रहा था। सुधा के जाने के बाद ये चौथा रविवार है जिसकी शुरुआत उनकी इस तरह की भाषा के साथ

सुधा के रहते उन्हें कभी कोई कमी महसूस ही नहीं हुई। उनके मन की भाषा पढ़ना जानती थी जैसे वो। तभी तो उनकी हर जरूरत उनके कहने से पहले ही पूरी हो जाती थी। पर आज से पहले 30 साल के वैवाहिक जीवन में उन्हें यह एहसास कभी हो ही नहीं पाया। दरअसल इससे पहले सुधा से कभी इतने समय के लिए अलग रहना ही नहीं पड़ा था उन्हें। सुधा के माता पिता एक एक्सीडेंट में नहीं रहे थे, चाचा चाची ने ही पाला था उसे। एक्सीडेंट के मुआवजे के रूप में सरकार से मिली रकम से ही उन्हें सुधा के विवाह का दायित्व पूरा करना है, ये उन लोगों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। उनकी माँ को तो इकलौते लाडले की शादी में बड़ा अच्छा दहेज पाने का चाव था, पर उनकी पारखी नजर और व्यवहारिक बुद्धि ने यह समझने में देर न की कि ऐसी अनाथ और निरीह लड़की यदि बहू बनकर उनके घर आई तो उनके अक्खड़ और बदजुबान बेटे को तो झेल ही देगी, बुढ़ापे में जायज और नाजायज मांगों और तकाजों को भी पूरा कर सकेगी। बस उनकी सूझबूझ के कारण ही सुधा उनके घर की बहू बनकर आ गई। शायद 23-24 साल की उम्र रही होगी उसकी। तब बीए के फाइनल ईयर में थी। पढ़ने में काफी तेज, चाची जी की गृहस्थी के सभी काम संभालने के बाद भी 12वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुई थी। कितना गिड़गिड़ाई थी वो कि उसे बस फाइनल एग्जाम देने की परमिशन दे दी जाए, लेकिन तपन बाबू नहीं पसीजे तो नहीं पसीजे। दरअसल तपन बाबू थे पढ़ने में कमजोर, लगभग फिसड्डी से। हाईस्कूल में तृतीय श्रेणी पाई तो 12th में 2 बार में पास हो पाए। जैसे तैसे बीकॉम की परीक्षा पास कर ग्रेजुएट की श्रेणी में आ गए। पिता को उनसे कोई आशा न थी। उनके व्यंगपान तपन को छलनी कर देते थे। खासतौर पर अपने किसी दोस्त या सहकर्मी के घर आने पर तपन का परिचय इस रूप में कराया जाना, इनसे मिलिए, ये है हमारे इकलौते साहबजादे, हाई स्कूल में 3rd डिविजनर और 12वीं में अपनी नींव पक्की कर रहे हैं। 1 साल तो नींव पक्की करने में निकाल दिया इन महानुभाव ने, देखिए अब इनका आगे क्या मूड बनता है। आने वाले आकंतुक की होंठों के किनारे से झांकती हंसी उनके बेटे को कैसा तड़पा रही है, उसके थोड़े बहुत आत्मविश्वास के कैसे टुकड़े टुकड़े कर रही है, इसे देखने की फुर्सत उनके बाबूजी को थी ही कब। अपने सैकड़ों छात्रों का जीवन संवारने वाले उनके विद्वान अध्यापक पिता को उनसे क्या बैर था, वे समझ नहीं पाते थे। या फिर उनके बाबूजी ने अपने एकमात्र पुत्र को लेकर सपने देखे थे, उनके पूरे न हो पाने का आक्रोश शायद उनकी इस तरह की भाषा से फूटता था। लेकिन वे भी क्या करते, पढ़ाई के सिवा दुनिया का कोई भी काम वे कर सकते थे, लेकिन पढ़ाई वो उनके बस की बात ना थी। बाबूजी के स्कूल में ही एडमिशन कराया गया था उनका। प्राइमरी कक्षाओं में तो फिर भी टीचर्स उनके पिता का लिहाज कर उन्हें ज्यादा डांटते फटकारते नहीं थे, पीटते तो बिल्कुल भी नहीं थे। फिजिक्स के विद्वान उनके बाबूजी से उनमें से कई टीचर्स के बच्चे निःशुल्क ट्यूशन जो ले रहे थे। पता नहीं क्यों तपन पर माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि कुछ कम ही रही। असली आफत तो तब आई जब वे 9वीं क्लास में आए। इसमें उनके बाबूजी साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते थे। जरा जरा से और सामान्य छात्रों के लिए सरल से प्रश्नों का जवाब न दे पाने पर उनकी वो पिटाई होती थी कि पूछिए मत। पीटे तो और लड़के भी जाते थे, पर बेटी की मूर्खता बाबूजी में जो खींच जो झुंझलाहट पैदा करती थी, उसके फलस्वरूप उनके हिस्से में ये प्रसाद कुछ ज्यादा ही आता था। ऊपर से सहपाठियों के व्यंग्यात्मक हंसी सहन करना वाकई बहुत मुश्किल था। खैर, जैसे तैसे हाई स्कूल तो पास कर लिया उन्होंने। उसके बाद तो उन्हें कामर्स लेना ही निरापद लगा, क्योंकि यहाँ उनके बाबूजी का दखल ना था। फिर जैसे तैसे बीकॉम कर ही लिया उन्होंने। उन जैसे 3rd डिविजनर को नौकरी मिलना वाकई मुश्किल ही नहीं नामुमकिन ही था। लेकिन एक दिन अचानक क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बाबूजी चक्कर खाकर गिरे और फिर उठे ही नहीं। एक तो वैसे भी बाबूजी का बहुत सम्मान था उनके विभाग में, फिर उनकी तो मृत्यु भी ऑन ड्यूटी हुई थी, लिहाजा विभाग ने उनके आश्रित यानी तपन को क्लर्क के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दे दी। बाबूजी जाते जाते उनकी जिंदगी बना गए थे, वरना पता नहीं वे कब तक बेरोजगार ही घूमते रहते। बचपन से बाबूजी के साथ साथ रिश्तेदारों और समाज से मिले अपमान के कड़वे घूंटों ने उनके अंतस में इतना विष भर दिया था कि सुधा की पत्नी के रूप में उनके जीवन में आने के बाद उन्होंने वो सारा विष व मन सुधा पर ही किया। न जाने किस मिट्टी की बनी थी सुधा कि नीलकंठ की तरह उस विष को अपने कंठ में संचित किए रही, पर अपनी वाणी पर अपने व्यवहार पर उसका असर न होने दिया। यूं तो अब समय के साथ प्रमोशन पाकर वे हेड क्लर्क बन गए थे, पर थे तो क्लर्क ही। उस पर जब प्रतियोगिता में सफल होकर ऑफिस सुपरिंटेंडेंट का पद पाकर आया हुआ उनसे 15 साल छोटा लड़का उन्हें हुक्म देता था तो ये बिल्कुल असह्य होता था उन्हें। तब अपनी अयोग्यता अपनी कमी उन्हें और भी ज्यादा चुभती थी। कहना न होगा कि ये चुभन सुधा पर क्रोध के रूप में निकालना ही उन्हें निरापद प्रतीत होता था। अच्छा ये रहा कि ये चुभन उन्हें ज्यादा समय तक सहन नहीं करनी पड़ी। एक दिन सुभाष बाबू के यहाँ से शतरंज खेलकर लौटते हुए अपने घर के दरवाजे पर

पीएसए साहब की गाड़ी देख वे चौंक गए। आशंकाओं में डूबते उन्होंने घर में प्रवेश किया, लेकिन ये क्या, पीएसए साहब ने तो खड़े होकर न सिर्फ उनकी अभ्यर्थना की बल्कि उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार भी किया। कुछ देर बाद इस अभूतपूर्व आदर का कारण भी जल्दी ही समझ में आ गया। दरअसल बीएसए साहब उनके बड़े बेटे के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे, जो मल्टीनेशनल कंपनी में उनके बेटे के साथ ही बेंगलोर में पोस्टेड थी। मना करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। जल्दी ही एक महीने के अंदर ही उनकी बेटी तपन बाबू की बहू बनकर उनके घर आ गई। शादी की गहमा गहमी और रिश्तेदारों के हुजूम में तो उन्हें बहू को जानने समझने का समय ही नहीं मिला, लेकिन लगभग 6 महीने बाद उनके बेटा बहू जब दीपावली पर 10 दिन की छुट्टी लेकर त्योहार मनाने घर आए, तब उन्होंने नीरजा यानी अपनी बहू से पहली बार बात की। वैसे बात उन्होंने नहीं, नीरजा ने ही शुरू की थी, वो भी तब जब अपनी थाली में लौकी की सब्जी देखकर वाचक निगाहों से उन्होंने उसकी तरफ देखा था। बड़ी ही सहजता से उसने कह दिया, बाबूजी आपकी रिपोर्ट देखी थी मैंने, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है और शुगर भी थोड़ी बढ़ी हुई है, इसलिए आलू अब आपको बिल्कुल नहीं खाना है, लौकी तोरई वगैरह ही ठीक रहेंगी आपके लिए। ये बात यदि सुधा ने कही होती तो शायद महाभारत का सा दृश्य उपस्थित हो जाता घर में, पर बहू से वे कुछ कह सके पता नहीं। बहू के आत्मविश्वास से भरे व्यक्तित्व का असर था ये या उसके बीएसए पिता का लिहाज। जैसे तैसे अपनी प्रिय आलू की सब्जी के बगैर खाना निकला उन्होंने, लेकिन अगले दिन सुधा ने भी जब उसी तरह का मेन्यू फॉलो किया तो उनका पारा आसमान तक जा पहुंचा। बस सब कुछ भूलकर थाली उठाई उन्होंने और जोर से फेंक दी। झनझनाहट की आवाज के साथ थाली दूर फर्श पर जा गिरी। आवाज सुनकर बहू भी कमरे से निकल आई। फर्श पर पड़ी थाली और खाना देखकर वो सब कुछ समझ गई। बिना कुछ कहे उसने फर्श पर फैला खाना समेटा और बड़े ही शांत स्वर में कहा, बाबूजी क्या किसी ने आपको बताया नहीं कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए? कितने जतन कितने प्यार से बनाती है माँ आपके लिए खाना, लेकिन आपको तो जैसे उनकी कद्र ही नहीं है, उनकी वैल्यू समझ ही नहीं सके अब तक आप। न जाने कैसी दृढ़ता और आत्मविश्वास था उसके लहजे में कि वे कोई जवाब ना दे सके और आंखें चुराकर घर से बाहर निकल गए। 4-5 घंटे बाद अपने एकमात्र मित्र सुभाष बाबू के यहाँ बिताकर घर शाम को लौटी तो छोटे बेसे पता चला कि भाभी माँ को अपने साथ बेंगलोर ले गई है। हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करने वाली उनकी सहचरी नहीं बल्कि उनकी अनुगामी सुधा उनसे बगैर पूछे चली कैसे गई, वे समझ नहीं पा रहे थे। आज उसे बेंगलोर गए 1 महीना हो गया। इस 1 महीने में ही वे अच्छी तरह ये जान चुके हैं कि उनका वजूद, उनका अस्तित्व और उनका अपमान सब कुछ उस व्यक्ति यानी सुधा की वजह से ही था, जिसके वजूद को उन्होंने हमेशा नकारा, जिसके अस्तित्व को शून्य समझा और जिसके स्वाभिमान को वे हमेशा कुचलते रहे, लेकिन अब और नहीं। अचानक एक निश्चय कर वे झटके से उठे और घर से बाहर निकल गए। लौटे तो उनके हाथों में तत्काल रिजर्वेशन से बेंगलोर जाने का 1 टिकट और वहां से वापस आने के 2 टिकट थे। अगले दिन तड़के ही किसी से बिना कुछ कहे वे घर से निकलकर ट्रेन में जा पहुंचे। ट्रेन में बैठकर मंथन करते हुए उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि अपने जीवन में सुधा के महत्व को वे अब तक अनदेखा कैसे करते रहे, नकारते कैसे रहे। शायद सुधा के हमेशा उनके साथ रहकर उनके प्रति चुपचाप अपने कर्तव्य पूरे करते रहने से ही उन्होंने उसे एज ग्रांटेड ले लिया था, लेकिन इस 1 महीने के विछोह ने जैसे उन्हें आईना दिखा दिया था। बिन माँ बाप की होने के कारण सुधा का पग फेरे की रस्म के बाद एक ही बार तो होली के त्योहार पर मायके जाना हुआ था। उसके बाद तो उसकी चाची ने उसके माता पिता की तस्वीरों के एल्बम और उनकी निशानियों के रूप में सहेजी गई चीजों के बॉक्स के साथ ही उसे विदा कर दिया था, जो इस बात का संकेत था कि सुधा के प्रति उनका जो फर्ज था उसे भी पूरा कर चुके। अब सुधा को अपने पीहर को भुलाकर ससुराल में ही रहना है। समझदार सुधा भी उनके संकेत को समझकर फिर कभी पीहर गई नहीं। यही वजह है कि उसके हमेशा के साथ ने तपन को उसके अस्तित्व के साथ उसकी अच्छाइयों के प्रति उदासीन या यूं कहें कि लापरवाह सा कर दिया था, पर अब भी जितना सोच रहे थे उतनी ही शर्मिंदगी उतनी ही ग्लानि महसूस कर रहे थे। अपनी कमियों की कुढ़न को निरीह सुधा पर निकालकर वे कैसा संतोष पाना चाहते थे, पर बस अब और नहीं, बहुत गलतियां की उन्होंने, अब उन्हें इन्हें सुधारना ही होगा। बेटी के घर पहुंचकर सामने के दरवाजे से घर के अंदर प्रवेश करने का साहस नहीं हो रहा था, लिहाजा पीछे किचन गार्डन के गेट से प्रवेश किया उन्होंने। साइड की सीढ़ियों पर सुधा को मूर्तिबद्ध बैठा देखकर चौंक गए वे। उन्हें देखते ही तेजी से उठकर सुधा उनसे लिपटकर रो पड़ी, कहां चले गए थे आप घर से बिना बताए? जब से अनु का फोन आया हम सब परेशान थे। सुधा की बात सुनकर तड़प उठे वे। ऐसे निश्चल और निस्वार्थ प्रेम को कैसे 30 साल तक अपने अहंकार की धुंध में वे देख ही नहीं पाए। उनका हाथ धीरे धीरे सुधा का सर सहलाने लगा था। वे अब तक कुछ भी नहीं बोले थे, लेकिन उनके उस स्पर्श ने जैसे सब कुछ कह दिया था।

कुछ देर बाद जैसे होश आया सुधा को और प्रकृतिस्थ हो कह उठी, वो अरे सफर से थके होंगे आप अपनी चिंता में, मैं ये तो भूल ही गए, मैं चाय बनाकर लाती हूं आपके लिए। चाय रहने दो सुधी, तुम यहीं बैठो, कहकर उन्होंने स्नेह से सुधा को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ा तो 54 वर्ष की आयु में सुधा के चेहरे पर नवविवाहिता की तरह कई गुलाब से खिल गए। वे उसे निहारते ही रह गए। अब उन्होंने निश्चय कर लिया था कि इन खिले

कहानी जिसका शीर्षक था सुधी तेरी सुधी आई। कहानीकार थी डॉक्टर आभा पांडे। बहनों, इस कहानी को सुनकर यह प्रेरणा तो मिलती है कि हमारे पास जो भी रिश्ते हैं उन्हें संभाल कर रखें, इसने से सींचें। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो। खुद न रूठो पर सबको हंसा दो, यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो।

बहनों, आपने यह कहावत सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, जो हमारे दैनिक जीवन की उत्पादकता और खुशी को बढ़ाता है। और ये खुशियाँ हमारे जीवन में बनी रहें तो इसके लिए जरूरी है शरीर का फिट रहना। बहनों, फिट रहना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यह गंभीर बीमारियों से बचाता है और ऊर्जावान बनाए रखता है, और साथ ही साथ मानसिक तनाव को भी कम करता है। इसीलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए अपनी दिनचर्या में व्यायाम और योग को शामिल करना चाहिए। चाहे जितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, थोड़ा सा समय अपने लिए हमारी माता बहनें अवश्य निकालें, क्योंकि हमारे घरों में महिलाएं अपने ऊपर कम ध्यान देती हैं, और अगर उनसे कहा जाए कि आप थोड़ा समय व्यायाम और योग को दें, तो कुछ महिलाएं अक्सर यह कहते हुए मिलती हैं कि अरे, पूरे दिन तो इतना काम करते हैं, इसी में हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। तो बहनों, आपको ऐसा नहीं करना है, अपने लिए ध्यान देना है। सबसे पहले तो यह बात जान लें कि योग मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और संतुलन प्राप्त करने का एक समग्र जीवन मार्ग है। यह प्राचीन विज्ञान श्वास नियंत्रण, शारीरिक मुद्राओं और ध्यान के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा में पूर्ण सामंजस्य स्थापित करता है। बहनों, योग जो

है वो मानसिक संतुलन में क्या योगदान देता है। तो आपने योग में प्राणायाम का नाम तो सुना ही होगा। प्राणायाम से ही गहरी श्वास तकनीकों से तंत्रिका तंत्र शांत होता है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है, जिससे एक सुकून का अनुभव होता है। ऐसे ही बहनों, मानसिक संतुलन में ध्यान का भी बहुत बड़ा योगदान है। ध्यान करने से मानसिक शोर शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है, और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करने में भी मददगार होता है। ऐसे ही अनुलोम विलोम, कपालभाति, ऐसे कई तरह के योग के प्रकार हैं, जिन्हें आप अपने जीवन शैली में उतार कर अपने स्वास्थ्य को संतुलित कर सकते हैं। तो बहनों, ये तो हुई चर्चा स्वास्थ्य और संतुलन का मार्ग योग। और अब हमारी घड़ी लगातार इशारा कर रही है, समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मिलते हैं आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय पर। तब तक के लिए अनुमति दीजिए रेशमा अग्रवाल को। नमस्कार।

0: अभी महिलाएं अपना कार्यक्रम सुन रही थीं। वनिता लोक
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
0: और अब पेश है फिल्म संगीत।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत था फिल्म आन मिलो सजना से। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत एक सूचना के बाद। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार यानी कल 11 जून को 12 बजे से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है अस्थमा, टीबी, फेफड़ा एवं श्वास संबंधी रोग, कारण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर लव गुप्ता, सलाहकार अस्थमा, टीबी, फेफड़ा और श्वास रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530135 पर फोन करके अथवा हमारे मोबाइल नंबर 94-122-25-575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में अस्थमा, टीबी, फेफड़ा और श्वास संबंधी रोग, कारण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है अस्थमा, टीबी, फेफड़ा और श्वास संबंधी रोग, कारण और निवारण। श्रोताओं, यदि आप टीबी, अस्थमा और श्वास से संबंधित समस्या जैसे COPD, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, धूल, मिट्टी, पालतू जानवरों के बालों से एलर्जी, वायरल संक्रमण या फेफड़ों की सूजन, टीबी के कारण सांस की समस्या से ग्रसित है तो इनके

0: समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर लव गुप्ता, सलाहकार अस्थमा टीबी फेफड़ा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार यानी कल 11 जून 2026 और समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई और अब कार्यक्रम का अगला गीत।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है। देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा

0: कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
1: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
2: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
3: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
5: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
5: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न

0: राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
1: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ है ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उसमें क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AINewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए, इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी

0: से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले तीन दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले तीन दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
3: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
3: तो आज
2: अजीत जी जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
3: जी। विमलेश जी हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
3: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
3: जी। बिल्कुल आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
3: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
3: बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना जो बोले सो कुंडा खोले
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
2: जी। बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
3: तो क्या हुआ फिर?
2: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी अब आप आगे बताइए ना।
3: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
2: जी।
3: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
2: जी।
3: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
2: जी।
3: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से

0: प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
1: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
0: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे है। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
1: जी।
0: हैं। फिर क्या होता है विमलेश
1: जी? सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
0: वाह वाह जी।
1: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
0: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
1: जी।
0: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
1: जी।
0: फिर कॉफी परोसी जाती है।
1: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है,
0: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
1: जी।
0: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
1: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है, जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
0: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है। इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
1: जी हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
0: और अब आज का प्रश्न सुनिए। आज की ही जानकारी से तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
1: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहाँ घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी, लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे,
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर, चोट मत खा जाना।
1: हाँ, अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ?
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा।
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं।
1: ओ।
2: और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ, ये तो दिख ही रहा है।

चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह

ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

0: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
1: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इस

0: इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
1: जी।
2: अच्छा,
0: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने,
0: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
2: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
0: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
1: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
2: अच्छा।
1: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
2: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
4: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
4: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल के रहने वाली हैं।
0: हाँ, क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
4: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
4: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
4: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
4: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडु नाम की जगह है
4: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
4: अच्छा।
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
4: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान

0: और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
1: हाँ ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी, वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुंचती है।
0: अच्छा।
1: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास इडामलयार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सब का पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
1: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलडी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
2: और दूसरी इलोर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी।

0: अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। इस मीटर पर द्वितीय सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आकाशवाणी मथुरा के इस प्रिय कार्यक्रम युववाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। सपनों को नई उड़ान देने, विचारों को नई दिशा प्रदान करने और युवा मन की ऊर्जा को सकारात्मक अभिव्यक्ति देने वाले इस कार्यक्रम को लेकर हम आते हैं समसामयिक विषयों पर सार्थक चर्चा, विचार प्रेरक, ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर। युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है दोस्तों। आपके विचार, आपकी सकारात्मकता और आपका उत्साह ही भविष्य के भारत की नींव को मजबूत बनाते हैं। और इसी विश्वास के साथ आज के अंक में हम चर्चा करेंगे दो महत्वपूर्ण विषयों पर। सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और शिक्षा जीवन का आधार। तो आइए ज्ञान संवाद और सकारात्मक चिंतन की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम का ये सफर। आज की बात में चर्चा एक ऐसे विषय की जो विश्व में शांति, सहयोग और आपसी समझ का आधार है दोस्तों। सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मानव सभ्यता का इतिहास विविध संस्कृतियों, भाषाओं, परंपराओं और विचारों से समृद्ध रहा है। प्राचीन काल से ही विभिन्न सभ्यताओं के बीच संवाद ने ज्ञान, विज्ञान, कला और साहित्य के विकास को गति दी है। भारत की नालंदा और तक्षशिला जैसी शिक्षण परंपराएं और प्राचीन व्यापारिक मार्ग इस सांस्कृतिक आदान प्रदान के साक्षी रहे हैं। 21वीं सदी में वैश्वीकरण ने दुनिया को और अधिक निकट ला दिया है, लेकिन इसके साथ अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियां भी सामने आई हैं दोस्तों। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2024 में 10 जून यानी आज के दिन सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों और संस्कृतियों के बीच परस्पर सम्मान, सहिष्णुता और सहयोग को बढ़ावा देना है। दोस्तों, संवाद ही वो माध्यम है जो पूर्वाग्रहों को दूर करता है और मानवता को एक सूत्र में पिरो देता है। जब विचार मिलते हैं तो संघर्ष कम होते हैं और विकास के नए मार्ग खुलते हैं। आइए हम विविधता के सम्मान करते हुए संवाद और सद्भाव की संस्कृति को मजबूत बनाने का संकल्प लें। दोस्तों, मनुष्य के जीवन को दिशा देने वाली सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है शिक्षा। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, नैतिक विकास और सामाजिक जागरूकता का माध्यम भी है। यदि इतिहास की ओर देखें तो भारत में वैदिक काल से ही शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। गुरुकुल व्यवस्था के माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ साथ जीवन मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती है। आगे चलकर नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने दुनिया भर के विद्यार्थियों को आकर्षित किया। शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है, उसके विचारों को व्यापक बनाती है और समाज को प्रगतिशील दिशा प्रदान करती है। एक शिक्षित नागरिक न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है दोस्तों, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज डिजिटल युग में ज्ञान के

0: अनेक स्रोत उपलब्ध हैं, माध्यम उपलब्ध हैं, लेकिन शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि विवेक, संवेदनशील और एक जिम्मेदारी का विकास करना है। आइए शिक्षा को जीवन का आधार मानते हुए निरंतर सीखने और दूसरों को सिखाने के लिए या उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लें। दोस्तों, आज हम आपको सुनवा रहे हैं स्थल ध्वन्यांकन पर आधारित एक भेंटवार्ता विश्व नेत्रदान दिवस के परिप्रेक्ष्य में। डॉक्टर प्रवीण से बातचीत कर रहे हैं जितेंद्र सिंह।
1: श्रोताओं, नेत्र हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो हमें इस खूबसूरत संसार को देखने, रंग रूपों को पहचानने और हमारे दैनिक जीवन के सभी कार्य करने में मदद करते हैं। आँखों के बिना दुनिया का अनुभव करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि नेत्र ही बाहरी दुनिया से हमारे संपर्क का सबसे बड़ा माध्यम है। आँखों की रोशनी खोने से जीवन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कई ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारी आँखों की पुतली खराब हो जाती है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से हम नेत्रदान करके ऐसे लोगों के जीवन में रोशनी ला सकते हैं। इसी को लेकर हर वर्ष 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हमें जानकारी देते हुए आप हैं।
2: मैं डॉक्टर प्रवीण सेन शाही, मैं श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल में ऑक्युलोप्लास्टिक कंसल्टेंट हूँ। ये प्रोग्राम चलता तो पूरे 12 मास है, मतलब पूरे 12 महीने चलता रहेगा और लोग आपको जागरूक करते रहते हैं। आप किसी भी अस्पताल में जाओगे या कहीं भी जाओगे, आपको नेत्रदान महादान या रक्तदान महादान ये सारी चीजें लिखी हुई दिखती हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लोगों को जागरूक करते रहते हैं। नेत्रदान ऐसी चीज है जो आप अपने मृत्यु के बाद दे सकते हो, और इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता कि आप अपने जाने के बाद भी अपने अस्तित्व को जिंदा रखने की कोशिश करते हो और आपकी वजह से दूसरों को फायदा हो जाए, आप ऐसी कुछ कोशिश करके जाना चाहते हो। हमारी सरकार या हमारे जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन है वो हर भरसक कोशिश करते हैं कि जो हमारे यहाँ जो अंधापन है या जो भी चीज है जिसकी वजह से जो मरीज है वो देख नहीं पाते, या उन मरीजों के साथ जिनका देखने की वजह से जो करियर है या जो उनकी प्रोफेशनल या जो उनका पर्सनल लाइफ है वो रुक रहा है, उसको देखते हुए हमने ये देखा कि भारत में 4.5% के हिसाब से लोगों में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, जिनकी जो अंधापन है वो पुतली के अंधापन की वजह से होता है, और वो पुतली का जो अंधापन है उसका इलाज एक होता है। कुछ तरीके से हम दवाइयों से उस जो पुतली पे दाग है या धब्बे हैं या धुंधलापन है उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं, पर उसका अल्टीमेट जो इलाज है वो पुतली का ट्रांसप्लांटेशन है, जिसकी वजह से हम जो एक मृत इंसान है जो पुतली दान करके जाते हैं उसकी पुतली एक जीवित इंसान में लगाते हैं ताकि वो अपनी रोशनी दोबारा पा सके। और इस चीज को मोटिवेट करने के लिए हमने ये पखवाड़ा बनाना शुरू किया है, क्योंकि आज भी हमारे देश में जो लोग पुतली दान करते हैं या नेत्र दान करते हैं वो बहुत कम है, और जिनको ये नेत्रदान की आवश्यकता है वो बहुत ज्यादा बड़ा एक हिस्सा बनता है।
1: नेत्रदान की क्या प्रक्रिया है और किस उम्र तक के व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं?
2: नेत्रदान कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र में करा जा सकता है। पुतली है जी, बेसिकली किसी भी उम्र के लोग नेत्रदान कर सकते हैं। इन द मैटर अगर आज कोई बच्चा पैदा हुआ है वो भी नेत्रदान कर सकता है, और कोई बहुत बुजुर्ग है जिसकी पुतलियां खराब हो चुकी हैं वो भी नेत्रदान कर सकता है। नेत्रदान काम किस तरीके से करता है मैं आपको वो बताता हूँ। एक जो मरीज के काम आ जाए, एक पुतली जो हम लेते हैं वो मरीज के काम आ जाती है, और एक जो हमारी मेडिकल स्टडी रिकॉर्ड की वजह से होता है, जिनके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं, जिनके ऊपर हम और बाकी जो बीमारियां हैं उनकी जांच, उनकी इलाज और उनकी प्रक्रिया को एक बार जांच कर सकते हैं, पुतली की संरचना की पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे हमारे जो फेलो डॉक्टर्स हैं या जो हमारा जो मेडिकल साइंस है वो और डेवलप कर सके। तो नेत्रदान की जो एज लिमिट है वो कोई नहीं है, कोई भी इंसान जो इस धरती पे पैदा होता है वो नेत्रदान कर सकता है, और हमारी सरकार हर एक नेत्र का ये सुनिश्चित करती है कि वो किसी ना किसी तरीके से काम आए। जो पुतलियां खराब हो जाती हैं उससे हम उसके पीछे की विज्ञान को जान सकते हैं कि पुतलियां बेसिकली खराब क्यों हुई, या ऐसा क्या था इस इंसान के जीवन में, चोट लग गई या अल्सर हुआ, या मान लीजिए कोई किसी किसी की खुद ब खुद पुतलियां खराब होती हैं, किसी किसी की जन्मजात पुतलियां खराब होती हैं, तो उनमें हम किस दवाई से किस तरीके से ऐसा कुछ विज्ञान से हमें कुछ हासिल हो सके जिसकी वजह से हम कुछ फ्यूचर में ऐसे इंसान की पुतली खराब ना होने दें, इस तरीके की हम पढ़ाई कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। और बेसिकली ये रिसर्च पर्पज के लिए होती है, जो हमारे जो पब्लिश पेपर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम और आगे जो मेडिकल जो हमारा जो इलाज का पद्धति है उसको विकसित कर सकते हैं, या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जो आजकल की नई तकनीक है उसकी स्टडीज रिसर्च कर सकते हैं। बेसिकली हमारी जो पुतली है और या जो हमारी आंखों की संरचना है उसके लिए कुछ बेसिक वो होते हैं जो रीग्रो कर सकते हैं, उनमें से कुछ होते हैं जो हमारी आंखों की पुतली के आसपास के कुछ टिश्यूज होते हैं जिनको हम किसी मरीज की आंखों में अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें पुतली की ग्रोथ में हेल्प मिलती है, उसकी जो

है उसके भरने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो उसके बेसिस पे भी काफी रिसर्च चल रहे हैं, हमारे खुद के अस्पताल में काफी उस पे चल रही है, कुछ पद्धतियां हैं स्लेट या उस टाइप की चीजें जिनसे आप बेहतर रिजल्ट दे सकते हो बिना पुतली के ट्रांसप्लांट के, क्योंकि हमारे पास मरीज ज्यादा है और पुतलियां कम है। तो उस हिसाब से हमें ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मोडेलिटी को भी देखना है कि हाँ कैसे किस चीज से हम कर सकते हैं। तो मेडिकल तो एक चल ही रही है, बाकी बहुत सारी इंटरवेंशन है वो चल रहे हैं, हम स्टेम सेल्स को भी रीड कर रहे हैं कि किस तरीके से हम उनकी खुद की पुतली को रीजनरेट कर सकें, और हम साथ

0: खुद की पुतली को रीजनरेट कर सकें, और हम साथ साथ में पुतली का ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं जिसकी बिल्कुल भी बचाई नहीं जा सकती, हम उसका ट्रांसप्लांट भी सहारा लेते हैं। बेसिकली नेत्रदान दो तरीके से कर सकते हैं, एक आप पहले से कर सकते हैं जिसको हम आई डोनेशन प्लेज कहते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ है या हमारे साथ के जितने भी काफी लोग हैं उन्होंने प्लेज करा हुआ है। प्लेज का मतलब ये होता है कि आपने अपनी प्रॉमिस कर दी कि मैं अगर मरूंगा तो मेरे बाद जो मेरा नेत्र है वो किसी के काम आ सकता है, तो मेरे परिवार वालों को मेरी मृत्यु के बाद लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उस पर एक नंबर होता है, एक कार्ड मिलता है आपको उसके साथ नेत्रदान प्लेज का, जैसा कि आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह में भी ऐश्वर्या राय ने किया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने किया। जो भी नेत्रदान करता है उसको एक कार्ड मिलता है, उस कार्ड पे नंबर होता है। तो जैसे मान लीजिए मेरी मृत्यु होती है आजकल में, तो मेरे घर वाले या मेरे जो रिश्तेदार हैं वो उस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। जैसे ही किसी की मृत्यु होती है विदिन 6 आवर आपको पहला काम ये करना होता है कि आपको कांटेक्ट करना होता है उस नंबर पे, और ये कहना होता है कि हाँ ये सो एंड सो बंदा था, इसकी हो गई, इसने नेत्रदान को प्लेज किया हुआ है। तो उनकी एक पूरी टीम आती है। हमारे हर सेंटर में दो तरीके की चीजें होती है, एक होता है आई बैंक और एक होता है आई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। आई बैंक जो होता है वो प्रॉपर हब होता है जो कि पुतलियों को स्टोर करता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है, बेसिकली उसको देखता है कि लगाने लायक है या नहीं है और उसके बाकी की प्रक्रिया करता है। सेंटर्स का काम क्या होता है कि वो पुतली लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी मॉर्चरी में कोई बॉडी पड़ी हुई है या कोई अस्पताल में कोई बॉडी है, मैंने प्लेज करी मेरी खुद की बॉडी पड़ी हुई है, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वाले जो पास में होंगे वो जाते हैं पुतली लेते हैं, उसको केसॉल करके एक मीडिया आता है उसमें स्टोर करते हैं और नियरेस्ट आई बैंक में भेजते हैं। उसके बाद उसके ऊपर वो जांच होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं उस पुतली में कोई बीमारी है या ऐसा तो नहीं उस पुतली में गुणवत्ता कुछ कम है। अगर ऐसी कोई चीज होती है तो उसको फिर हम रिसर्च पर्पज में डालते हैं, पर अगर पुतली की क्वालिटी अच्छी है तो फिर हम उसको ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों के लिए रखते हैं। तो जिस तरीके से मरीजों का एनरोलमेंट होता है, जैसे मान लीजिए हमारे 150 मरीज आए पुतली का जिनको ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उनका एनरोलमेंट होता है, उस एनरोलमेंट के हिसाब से पुतली की अगर अवेलेबिलिटी है तो हम उसको दान करते हैं, मतलब उनको फिर देते हैं। ये टोटली फ्री है, गूगल पे जाना है आपको, आई डोनेशन के बारे में गूगल पे सर्च करना है, donateeye.org करके एक वेबसाइट आती है उसमें आप प्लेज कर सकते हो। आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, आपको आपके उम्र, आप जो आप क्या काम करते हो, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, आपकी एज है, कोई बीमारी है नहीं है। देखिए बेसिकली बीमारी से मेरा मतलब है कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो खून के थ्रू फैल जाती हैं, उन पेशेंट्स की पुतली हम किसी को ट्रांसप्लांट करके नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि वो इन्फेक्शन या वो कीटाणु, जैसे मान लीजिए HIV है, हेपेटाइटिस है या कोई कैंसर टाइप की बीमारी है जिससे खून से आपको दूसरे पेशेंट में आप दे सकते हो, तो वो बेसिकली हम ध्यान रखते हैं कि वो चीजें आपको भरनी होती है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। अगर वैसा कुछ रहता है तो वो जो पुतली है हम लेते जरूर है पर वो रिसर्च पर्पज के लिए जाती है, उसको हम किसी पर ट्रांसप्लांट नहीं करते। तो उसमें आपकी बेसिक डिटेल, आपका एड्रेस, आपका करंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपके किसी रिश्तेदार का फोन नंबर, या आप किसी को आपके जो गारंटर बनाते हो या इवन दैट एक सब्स्टिट्यूट नंबर होता है वो आप देते हो ताकि आपको कांटेक्ट करा जा सके उस पे। तो वो नंबर होते हैं और आप लोकेशन कहाँ है, आप किस जगह पे हो, उसके बारे में जानकारी होती है, उस टाइप का फॉर्म भरना होता है, एक बेसिक सा नॉमिनल सा फॉर्म है वो होता है। या फिर आप पर्सनली भी किसी भी आई सेंटर पे, आई हॉस्पिटल पे जा सकते हो जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है या फिर आई बैंक है, तो आप वहां जाकर भी खुद पर्सनली भी फॉर्म फिल कर सकते हो और उसको प्लेज कर सकते हो। और दूसरा तरीका होता है जिसके अंतर्गत आप, मान लीजिए मेरी मृत्यु हुई है, मैंने कभी भी आई प्लेज नहीं की है, बट मेरे रिश्तेदार जागरूक हैं, मेरे रिश्तेदार ये चाहते हैं कि मेरी पुतली किसी के काम आए, तो मैं अगर हॉस्पिटल में मेरी डेथ हुई है तो वो आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल स्टाफ को बोलेगा कि मेरा रिश्तेदार बोलेंगे कि मैं इनकी पुतली जो है हम दान करना चाहते हैं। जो अस्पताल है वो उसकी जिम्मेदारी है कि 6 घंटे के अंदर वो किसी आई बैंक या किसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे कांटेक्ट करे और तुरंत की तुरंत वो चीजें जो है रिट्रीव करी जाए, और उसके बाद उसके ऊपर जो मीडियम है जिसको इसमें प्रिजर्व करना होता है वो प्रिजर्व करी जा सके। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर प्लेज नहीं करी तो मैं पुतली दान नहीं कर सकता हूँ, कोई भी किसी भी टाइम पे पुतली दान कर सकता है। आप हॉस्पिटल में हो, घर पे हो, जिस समय भी आपको दान करना हो, अगर मान लीजिए आपने पहले नहीं किया प्लेज, आप आज आपको लगता है कि नहीं मेरा किसी रिश्तेदार की मृत्यु हुई है और हम करना चाहते हैं, उस पर बेसिकली एक कंसेंट लगता है, वो कंसेंट और आप एक किसी भी हॉस्पिटल में या कहीं पे भी आपको बस वो इन्फॉर्म करना है, वो अपना खोज करके निकालेंगे, वो आपको फर्दर जो उसकी नॉलेज है वो देंगे।
1: क्या सभी आई हॉस्पिटल्स में ये सुविधा उपलब्ध है कि अगर उनको सूचित किया जाए तो वो मृत व्यक्ति की पुतली को ले जा सकें?
0: पुतली ले जाने के लिए तो सब लोग सक्षम नहीं होते हैं, पर हाँ उनका ये काम होता है कि उन्हें पता होता है कि किसको कांटेक्ट करना है। बेसिकली अगर आप किसी भी अस्पताल में, किसी भी आई हॉस्पिटल में या किसी भी इन दैट मैटर नर्सिंग होम में जाते हो, तो बेसिकली उनको ये पता है कि वो किसको कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि पुतली आपकी रिट्रीव कर सकता है या उसको प्रिजर्व कर सकता है, क्योंकि 6 घंटे के बाद जो ड्यूरेशन है, 6 घंटे के बाद पुतली की जो गुणवत्ता है वो कम होने लगती है, तो वो किसी काम के हम इस्तेमाल करें वो बहुत उसकी फिर वो चांसेस कम हो जाते हैं। हमारे आसपास जो नियरेस्ट आई बैंक है वो SN मेडिकल कॉलेज में है, दिल्ली में दरियागंज में डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल में है, अलीगढ़ में है, और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर देखा जाए तो वृंदावन में हमारा खुद का जो सेंटर है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, हम रिट्रीव करते हैं और पुतली ट्रांसप्लांट भी करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। तो आसपास में ये सारी चीजें हैं हमारे पास। तो अगर किसी की भी पुतली ठीक है या मान लीजिए बीमारी नहीं है उसके शरीर में, तो हर पुतली इस्तेमाल में लाई जा सकती।
1: ऐसी कौन सी संभावनाएं हैं जिनकी वजह से हमारी आंखें खराब हो सकती हैं।
0: देखिए, आंखें डैमेज होने के लिए बेसिकली जो मोस्ट कॉमन जो कॉज है, जो जिनकी वजह से हो जाती है, जो अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस कहते हैं,

0: उनमें से कैटरेक्ट है जिसको हम मोतिया कहते हैं, काला पानी है जिसको हम ग्लोकोमा कहते हैं, कैटरेक्ट है वो होता है, एंड तीसरे नंबर पे आता है ये कॉर्नियल ब्लाइंड है, जिसमें आपकी जो पुतली है वो सफेद होने लगती है वो किसी चोट की। जैसे अभी हमारा जो देश है वो एक एग्रीकल्चर प्रधान देश है, वहां पे क्या है कि छोटी सी छोटी अगर मान लीजिए किसी को लकड़ी लग जाती है या किसी को धान की या चावल की बाल लग जाती है, उसकी वजह से पुतली सफेद होने लगती है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो उनके क्या है कि पुतली सफेद होगी, पुतली हमारी एक कांच की तरह जो टीवी का स्क्रीन है ना उसकी तरह होती है, उसमें अगर एक भी धब्बा लगा तो आपकी जो विजन है उसमें अफेक्ट डालती है। तो ये अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस है। अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है कि जिसको हम रोक सकते हैं, जिसमें हमारा कंट्रोल है। मान लीजिए अगर किसी का पर्दा गिर गया, पर्दा खराब हो गया, ऐसी कोई चीजें हुई जिसको हम जो हमारे हाथ में नहीं है, जो ईश्वरीय शक्ति है, जो जिसमें ताकत ही नहीं है, जो हम नहीं सही कर सकते, वो अनअवॉइडेबल ब्लाइंडनेस है। उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करा जा सकता। पर ये चार पांच चीजें जो मैंने बताई है अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस है। उनमें से सबसे ज्यादा जो अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस है वो हमारा देश में इसलिए है कॉर्निया पुतली का ट्रांसप्लांट, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है। मैक्सिमम काम विदा सेफ्टी के पुतली का, जो मान लीजिए फर्टिलाइजर कोई यूज कर रहा है या कोई बंदा मैकेनिक है वो यूज कर रहा है, बिना चश्मे के बिना सेफ्टी प्रोफाइल के वो यूज करता है, उनकी पुतलियों पर चोट लगती है और उसकी वजह से वो सफेदी होती है। और ये सारे के सारे पेशेंट्स जो हैं, जो हमारे पास जो मैं बता रहा हूँ, ये वर्किंग क्लास के लोग होते हैं, वो उस एज ग्रुप के होते हैं जो 20 से लेकर 40 साल के होते हैं, क्योंकि जो इंसान काम कर रहा है उसी को चोटें लगती हैं पुतली पे। तो ये बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग जो हैं ये यंगस्टर्स होते हैं। मान लीजिए मैं मोतिया बिंद की बात कर रहा हूँ, जो सफेद मोतिया होता है वो 60 साल 70 साल के बाद की चीज है। मोतिया के भी ऑपरेशन है, वो भी नेसेसरी है, वो भी चीजें हैं, वो भी चल रही होती है, उसके लिए प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, जैसे नेशनल ब्लाइंडनेस अवॉइडेबल प्रोग्राम है या DBCS है, डिस्ट्रिक्ट जो ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी है वो बनी हुई है। पर कॉर्निया बहुत ज्यादा, जो पुतली का जो अंधापन है वो बहुत ज्यादा लोग केटर नहीं करते, और बहुत ज्यादा इसके लिए हमें लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि अगर पुतली है हमारे पास डोनेटेड आई है तो ही हम पुतली की जो बीमारी है वो सही कर सकते हैं। तो उसमें हमारा डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है आपके समाज के सहयोग का, पुतली के लिए हमें समाज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो इसीलिए हम इसकी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि लोग जागरूक हो जाए। लोग बहुत खुश होते हैं, मैं बता सकता हूँ कि आप उन माँ बाप के चेहरे को देख रहे हैं जिनके बच्चों की पुतली ट्रांसप्लांट हुई है, या उन यंगस्टर्स को देखना जिन्होंने 2 साल पहले जीने की इच्छा छोड़ दी थी और अब वो फिर खुश होकर काम करते हैं और बताते हैं कि हम क्या क्या काम कर पा रहे हैं। तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही मुझे तो लगता है कि उन चेहरों को, उन हंसते हुए चेहरों को हर किसी को देखना चाहिए कि वो क्या है और किस तरीके से लोग खुश हो पा रहे हैं किसी एक दान। गूगल पे टोल फ्री नंबर्स भी हैं, जो iDonation.org करके जो साइट है उस पे टोल फ्री नंबर्स भी हैं, उस पे भी आप कॉल कर सकते हो। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपने प्लेज कर लिया है तो आप बहुत महान हो डेफिनेटली। अभी प्लेज का मतलब क्या होता है कि आपने आज जीवित रहते संकल्प ले लिया कि मैं इस चीज को दान करना चाहूंगा। ये किसी भी पूजा, किसी भी यज्ञ, किसी भी पाठ से बहुत ऊपर है, और अगर आपने नहीं किया तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, बिकॉज आपकी इस चीज की वजह से जो आपका जो ओवरऑल आपको जो प्रसन्नता आएगी, जो खुशी मिलेगी, उसका कोई कंपैरिजन नहीं, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक अलग लेवल पे ले जाएगी कि आपने कुछ अच्छा किया अपने जीवन।
1: तो दोस्तों अभी आप स्थल ध्वन्यांकन पर आधारित ये भेंटवार्ता सुन रहे थे विश्व नेत्रदान दिवस के संदर्भ में। डॉक्टर प्रवीण से बातचीत कर रहे थे जितेंद्र सिंह, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक विज्ञान वार्ता, विद्युत चुंबकीय तरंगें और बढ़ते खतरे। वार्ताकार हैं अजीत सिंह।
2: वैज्ञानिक जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के समीकरणों के संयोजन से प्राप्त अनेक महत्वपूर्ण परिणामों में से एक विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र वेक्टरों का स्थिति के साथ तथा समय के साथ परिवर्तनों में सहसंबंध था। यह संबंध उसी प्रकार का प्राप्त होता है जैसा कि तरंग गति में उसके किसी लाक्षणिक गुण का होता है। इस प्रकार इन क्षेत्र सदिशों का समय के साथ परिवर्तन एक दूसरे के लिए स्रोत का कार्य करता है, तथा ये परिवर्तन किसी एक बिंदु पर सीमित नहीं रहते बल्कि आकाश में तरंग रूप में संचारित होते हैं। इन्हीं तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। मैक्सवेल समीकरणों से प्राप्त तरंग समीकरण को हल करके जब निर्वात में इन तरंगों का वेग ज्ञात किया गया तो यह निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर प्राप्त हुआ। ये तरंगें यांत्रिक तरंगों से भिन्न होती हैं और इनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये किरणें निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। जब प्रकाश की तरंगों एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों में समानता का आधार प्रकट हुआ तब वैज्ञानिक जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। इन तरंगों में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों साथ साथ समान कला में सरल आवृत्ति में समान रूप से परिवर्तित होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र वेक्टर सदिश एवं चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर सदिश परस्पर लंबवत होते हैं और साथ ही साथ ये दोनों तरंग संचरण की दिशा के लंबवत भी होते हैं। इन तरंगों में दोनों सदिश वेक्टर समान रूप से तरंग के अभिलाक्षणिक गुण को प्रदान

प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कुछ क्रियाओं में विद्युत क्षेत्र वेक्टर सदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर की तुलना में अधिक प्रभावी होता है, जैसे फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्मों को केवल विद्युत क्षेत्र वेक्टर ही प्रभावित करता है। इसी प्रकार देखने की क्रिया में विद्युत क्षेत्र वेक्टर सदिश ही अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र वेक्टर ही आंख के रेटिना को प्रभावित करता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र वेक्टर को प्रकाश वेक्टर भी कहते हैं। अंतरिक्ष किरण, गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश किरण, अवरक्त किरण, माइक्रो तरंगे एवं रेडियो तरंगे सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जो आवृत्ति में एक दूसरे से भिन्न हैं, परंतु समान माध्यम में समान वेग से संचारित होती हैं। भौतिकी में जिस प्रकार मूल राशियां होती हैं उनकी व्युत्पत्ति संभव नहीं होती है, इसी प्रकार अनेक ऐसे मूल नियम हैं जो वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रायोगिक परिणामों की सफल व्याख्या करते हैं, लेकिन इन नियमों की व्युत्पत्ति संभव नहीं है। न्यूटन के गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऊष्मा गति का नियम, कूलम्ब का नियम आदि इन्हीं मूल नियमों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार विद्युत चुंबकीय में गाउस के नियम, वैज्ञानिक एम्पियर का नियम व वैज्ञानिक फैराडे का नियम ऐसे मूल नियम हैं जिनके द्वारा संपूर्ण विद्युत चुंबकीय की घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। सन 1873 में वैज्ञानिक जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इस नियमों को अधिक व्यापक रूप देते हुए इन्हें अवकल समीकरणों में प्रस्तुत किया। ये समीकरण इतने व्यापक हैं कि इनके द्वारा प्रकाश, विद्युत व चुंबकत्व का एक प्रकार से एकीकरण हो गया और ये अनेक विद्युत चुंबकीय युक्तियों जैसे मोटर, रडार, कंप्यूटर, टेलीविजन आदि की अधिकल्पनाओं का स्रोत सिद्ध हुआ है। विद्युत चुंबकत्व गामा किरणों का आविष्कार वैज्ञानिक बेकरल तथा क्यूरो ने संयुक्त रूप से सन 1896 में किया था, जिनका उपयोग फोटोग्राफिक प्लेटों पर रासायनिक क्रिया हेतु, प्रतिदीप्ति हेतु, आयनीकरण, उच्च भेदन क्षमता, आवेश रहित कैंसर के इलाज में किया जाता है। इन किरणों का मुख्य स्रोत परमाणुओं के नाभिकों के विघटन होने पर होता है। एक्स किरणों का आविष्कार वैज्ञानिक रोजन ने सन 1895 में किया था। इन किरणों में वे सभी गुण होते हैं जो गुण गामा किरणों में प्रयुक्त होते हैं, तथा इनका उपयोग शरीर में टूटी हड्डी का पता लगाने, मूल्यवान वस्तु का पता लगाने तथा क्रिस्टलों की संरचना के अध्ययन में होता है। इनका मुख्य स्रोत तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के भारी लक्ष्य पर टकराने से होता है। परावैगनी किरणों का आविष्कार वैज्ञानिक रिटर ने सन 1801 में किया था। इन किरणों में गामा किरणों वाले सभी गुण होते हैं तथा इनकी वेधन क्षमता बहुत कम होती है, तथा इनका उपयोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, कीड़े मारने में तथा प्रकाश संश्लेषण में होता है। दृश्य प्रकाश किरणों का आविष्कार वैज्ञानिक न्यूटन ने सन 1666 में किया था। इनका उपयोग प्रकाश वैद्युत युक्त प्रभावित फोटोग्राफिक क्रिया में तथा वस्तुओं को देखने में प्रयुक्त होता है। इन किरणों का मुख्य स्रोत आयनित गैस तथा ताप दीप्त वस्तुएं होती हैं। अवरक्त किरणों का आविष्कार वैज्ञानिक हर्सेल ने सन 1800 में किया था। इन किरणों में ऊष्मीय प्रभाव सर्वाधिक होता है तथा इनका उपयोग रात्रि में फोटोग्राफी करने में तथा रोगियों की शिकायत करने में होता है। इन किरणों का मुख्य स्रोत गर्म वस्तुएं होती हैं। लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार वैज्ञानिक हर्ट्ज ने सन 1888 में किया था। ये किरणें अविग्राही परिपथों के गैपों में स्पार्क उत्पन्न करती हैं। इनका उपयोग रडार तथा टेलीविजन में किया जाता है। इन किरणों का मुख्य स्रोत स्पुलिंग विसर्जन के द्वारा होता है। दीर्घ रेडियो या बेतार तरंगों का आविष्कार वैज्ञानिक मार्कोनी ने सन 1895 में किया था। इनका उपयोग नौसंचालन, पुलिस रेडियो तथा प्रसारण में किया जाता है। इन किरणों का मुख्य स्रोत दोलित्र विद्युत परिपथों द्वारा उत्पन्न होता है। अब आप इनसे संभावित खतरों के बारे में जानिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इनके प्रभाव से व्यक्ति का दिमाग कमजोर हो जाता है तथा सोचने व याद करने की क्षमता कम हो जाती है। इन तरंगों का प्रभाव व्यक्ति के हृदय पर भी पड़ता है, जिसके कारण हृदयाघात होने की आशंका बनी रहती है। विद्युत चुंबकीय से उत्पन्न तरंगों का बुरा असर गर्भवती महिला अथवा छोटे शिशु के स्वास्थ्य पर सर्वाधिक पड़ता है। इन तरंगों के कारण छोटे शिशु बचपन से ही मानसिक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। इनके दिमाग के तंतु अपेक्षाकृत नर्म होने के कारण ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। टेलीविजन से उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रभाव व्यक्ति की आंखों पर सर्वाधिक असर डालता है, जिसके कारण आंखों की रोशनी कम हो सकती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में उपस्थित वायुमंडल में घुल मिलकर वायु प्रदूषण भी उत्पन्न करती हैं। आधुनिक युग में सबसे अधिक उपयोग मोबाइल फोन का हो रहा है, लेकिन मोबाइल फोन से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें दिमाग के ऊतकों को अधिक नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये तरंगें ऊतकों को गर्म कर देती हैं, जिसके कारण वे कमजोर हो जाते हैं, जो स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालते हैं। सुनने वाले यंत्र जैसे पेसमेकर
आईपॉड, मोबाइल फोन आदि विद्युत चुंबक

0: ये तरंगे उत्पन्न कर स्वास्थ्य पर विपरीत असर उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों से अनेकों बीमारियां जैसे हृदयाघात, ब्रेन ट्यूमर, मानसिक परेशानी, बेचैनी आदि उत्पन्न हो सकती है।
1: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विज्ञान वार्ता, विद्युत चुंबकीय तरंगें और बढ़ते खतरे। अजीत सिंह से ये जानकारी आप प्राप्त कर रहे थे और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा गीत, शफ़क़त अमानत अली खान और सलीम मर्चेंट की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है डोर।

शफ़क़त अमानत अली खान और सलीम अर्जेंट की आवाज़ों में ढोर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और इस गीत के साथ ही युववाणी कार्यक्रम से अब मुझे यानी अरविंद को अनुमति दीजिए। नमस्कार। इसी कार्यक्रम में कल पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र। समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर

0: पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

संध्या 6:15 पर किसान श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण, जिसमें संतुलित उर्वरक उपयोग से संबंधित चर्चा की जाएगी। साथ ही आप सुनेंगे वार्ता ऊसर सुधार हेतु सामायिक कृषि कार्य। वार्ताकार होंगे डॉक्टर मनीष कामंत। इसी कार्यक्रम में स्थल ध्वन्यांकन पर आधारित भेंट वार्ता भी सुनवाई जाएगी। वर्मी कंपोस्ट उत्पादक किसान वीरेंद्र जोशी से वीरेंद्र सिंह की बातचीत।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन का प्रसारण समय होगा संध्या 6:45। संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा ब्रज काव्य सुधा के क्रम में हरि बाबू ओम का ब्रजभाष काव्य पाठ। संध्या 7:31 पर श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर। रात्रि 8:35 पर देशगान प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर सुहाने तराने कार्यक्रम। रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 10 बजे आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद अमजद अली खान का सरोद वादन, राग होगा मालकोंस, तबले पर संगति सुभाष की होगी।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम सिमसेलर डॉक्टर में इस गुरुवार यानी 11 जून को 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है अस्थमा, टीबी, फेफड़ा एवं श्वास संबंधी रोग कारण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर लव गुप्ता, सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट अस्थमा, टीबी, फेफड़ा और श्वास रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-253-0135 पर फोन करके अथवा व्हाट्सएप नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में अस्थमा, टीबी, फेफड़ा और श्वास संबंधी रोग कारण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है अस्थमा, टीबी, फेफड़ा एवं श्वास संबंधी रोग कारण और निवारण। श्रोताओं, यदि आप टीबी, अस्थमा और श्वास से संबंधित समस्या जैसे COPD, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, धूल मिट्टी, पालतू जानवरों के बालों से एलर्जी, वायरल संक्रमण या फेफड़ों की सूजन, टीबी के कारण सांस की समस्या से ग्रसित हैं, इन सब के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर लव गुप्ता, सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट अस्थमा, टीबी, फेफड़ा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार 11 जून 2026, समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 हो चुके हैं। समय हो रहा है कार्यक्रम देशगण का।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में ये देशभक्ति परक रचना। इसी के साथ देशगान का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। शाम के 6:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं ममता रानी।

राम राम भैया। देखो गांव में ठौर ठौर मेड़ मेड़ पे यही चर्चा होवे कि हमारे खेत की माटी तो बड़ी कमजोर रह गई है, अब कहाँ बह दे में जामे और लागत खूब लगाए रहे हैं पर हमें फसल को उत्पादन ही ना मिल रो। अरे भैया जाके काजे जो हमारे खेत की मृदा है माटी है बा में सुधार की आवश्यकता है। सुधार करवे काजा में बहुत कछु करनो ना है, कछु ना है करनो, बस नेक दिमाग लगाना है, ध्यान रखना है, बस काम बन जाएगो। संतुलित जो उर्वरक हथना है उनको हमें प्रयोग करना है संतुलित रूप से, जो माटी की जांच के आधार पे फसलन को उनकी आवश्यकता के अनुसार सही मात्रा और सही अनुपात में सभी पोषक तत्व किसान भैया प्रदान करे जा में है। जैसे कहे कि जो हमारी मृदा है माटी है वाको स्वास्थ्य बढ़िया हो वह है। किसान भैया यह प्रक्रिया पौधा के स्वास्थ्य विकास और सतत कृषि के लिए बेहद जरूरी है। किसान भैयाओं खेती में जो पोषक तत्व की कमी या अधिकता को सामना ना करना पड़े जाके लिए प्रमुख कार्य माटी की जो हमारी उर्वरा शक्ति है उत्पादन क्षमता है माँ में अधिकतम उपज अगर हम प्राप्त करना चाहें तो वाके लिए हमें ऐसा करना है कि सही समय पे पोषक तत्व और उचित अनुपात में वाको अनुपात हमें पता होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए किसान भैया खेती में प्रयोग करवो। और जो जैविक खाद है गोबर की जैसे खाद है और कंपोस्ट खाद है को संतुलित मिश्रण को उपयोग खेती में करवो ही संतुलित उर्वरक उपयोग हते जाते हमारे खेत की जो मृदा है माटी है वाको स्वास्थ्य बढ़िया बनो रहे है। संतुलित उर्वरकन के प्रयोग तो देखो भैया सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा पर्यावरण है वो सुरक्षित रहवे है और किसान भैया जो हमारी फसल है ना वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी वर्धक है। यानी कि वा में हम अगर वाको जो भी हम फसल लगा रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक है, खान पान के लिए बढ़िया है, किसान भैयान की लागत कम आवे है और संतुलित उर्वरक के प्रयोग से खेती में पौधा में जो रोग आ जामे हैं वा में कहा हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े है और पैदावार की गुणवत्ता बढ़ जाए है। भूमि सुधार होवे है भैया जो बहुत जरूरी है खेत के लिए, खेत की माटी मजबूत होवे है, खेत की माटी को स्वास्थ्य बढ़िया रहे और किसान भैयाओं खेती में संतुलित उर्वरकन को प्रयोग करो और है सके तो आप अपनी देसी खाद को प्रयोग तो जरूर करो। जाके ले भैया ऐसा है कि जो हमारे पास गांवन में हमारे पशु जेंगरे हैं और पशुशाला है वहाँ पे गोबर उपलब्ध है वो हमें मिल सके हैं और बहुत सस्ते दाम पैसन पे मिले हैं वो, और वहाँ से आप खाद बना सके हैं जो हमारी खेती की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है। तो भैया जाके लें हमें कहाँ करना है बाकी लें कछु प्रशिक्षण है या कोई जानकारी वहाँ से संबंधित है हते भैया? हाँ तो ऐसो ही आपको सुनवाएंगे एक हम बातचीत बर्मी कंपोस्ट उत्पादक बीरेन जोशी से बीरेन सिंह की बातचीत, सुनो भैया।

0: किसान भैयाओं, आज हैं हम देवराहा बाबा गो आश्रय स्थल बिहार वन राल में, और आज हैं हमारे संग एक ऐसे किसान जो या गौ आश्रय स्थल पे जैविक खाद केंचुआ की खाद न सिर्फ उत्पादन कर रहे हैं, बल्कि संग ही किसानन ने एक प्रशिक्षण दे रहे हैं जाते कि वे अपने घर पे हु अपने खेतन पे वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकें और अपने खेतन को ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती के काजे प्रेरित कर सके। राम राम जी।
1: राम राम जी।
0: क्या शुभ नाम है आपको?
1: मेरा नाम बीरेंद्र कुमार जोशी है।
0: अच्छा, तो आप जो यहाँ वर्मी कंपोस्ट तैयार करवाते हैं या प्रशिक्षण देते हैं, क्या काम करते हैं?
1: हमारे यहाँ प्रशिक्षण भी दिया जाता है और वर्मी कंपोस्ट को तैयार भी किया जाता है।
0: अच्छा, कैसे करते हैं आप? सबसे पहले बिल्कुल नई शुरुआत कैसे करे किसान?
1: हाँ, नए किसानों के लिए हम लोग शुरुआत में कहते हैं गोबर को थोड़ा ठंडा कर लें, कम से कम 3 हफ्ते करीब ठंडा होने में लगता है
0: जी।
1: उसके बाद हम लंबाई करके बेड बनाते हैं, उसमें छाया का प्रबंध रहना चाहिए
0: जी।
1: और बेड में हम केंचुआ छोड़ते हैं तो लगभग 3 से 4 महीने में हमारा

0: कंपोस्ट तैयार हो जाता है।
1: अच्छा।
0: तैयार होने का तरीका यह है कि उसका जो गोबर है वो चाय की पत्ती की तरह दानेदार हो जाता है।
1: अच्छा, जब तैयार हो जाए तो आप उसको लेकर के फिर उसका भंडारण करते हैं, कहीं कट्टा बोरे में भरते हैं?
0: हाँ, बोरियों में इसको नमी के स्थान पर रखा जाता है जिससे नमी बनी रहे और उसमें माइक्रो न्यूट्रिशंस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। सूखने से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं तो इसको नमी बना के रखना पड़ता है और छाया में स्टोर करना पड़ता है।
1: जैसे आपने बताया कि चाय कैसे दाने बन जाते हैं, तो अगर वो गीला रहेगा तो वो इकट्ठा हो जाएगा, उसके लड्डू जैसे बन जाएंगे?
0: नहीं नहीं, ज्यादा गीला नहीं करना है, नमी रहना चाहिए। ज्यादा गीला रहेगा तो वो भी खराब हो जाएगा। सूखी स्थिति में रहे, हल्की नमी बनी रहे उसमें और बिल्कुल ना सूख जाए जिससे उसका उपयोगिता खत्म हो जाए।
1: तो जब नमी उसमें रहती है तभी उसको हम जो है खेती के प्रयोग में ले सकते हैं।
0: हाँ, नमी के हिसाब से क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को जीवन रहता है, सूखा हो जाएगा तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी आएगी, तो उसमें हल्की सी नमी रहना ही चाहिए।
1: अब आप ये बताओ कि अगर हमें एक क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार करना है तो उसके लिए क्या क्या सामग्री हमारे किसान भैया को लानी होगी, ये बिल्कुल शुरुआत से बताओ।
0: हाँ, लगभग 2 क्विंटल गोबर होता है, उसको तैयार करने के बाद यानी 90 से 120 दिन के अंतर हमको वर्मी कम्पोस्ट तो उपलब्ध हो जाता है। तो 2 क्विंटल गोबर को ठंडा करने के बाद उसमें फिर केचुआ छोड़ते हैं।
1: कितने केचुआ लाने?
0: केचुआ 1 क्विंटल में करीब करीब ये समझ लीजिए आपकी 2 किलो केचुआ हम डालते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ जी,
1: तो केचुआ हमारा किसान कहाँ से लावे?
0: केचुआ हम अपने यहाँ से भी उपलब्ध करा सकते हैं उनको अगर आवश्यकता है
1: जी,
0: नहीं तो वर्मी कम्पोस्ट हमारे यहाँ पे नियमित रूप से बन रहा है।
1: हाँ, यानी आपके यहाँ केचुआ जो है अलग से वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए उपलब्ध है?
0: उत्पादित हो रहे हैं, उपलब्ध है हमारे यहाँ।
1: अच्छा, दूसरी बात ये है कि यदि कोई किसान यहाँ आकर के प्रशिक्षण लेना चाहे तो क्या उसकी सुविधा है?
0: बिल्कुल प्रशिक्षण की सुविधा है, क्योंकि हमारे पे रेगुलर बन रहा है तो हम उनको सिखा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। हम प्रशिक्षण देने का प्रयास भी करते हैं। गांव से गाय से किसान को जोड़ना जरूरी है, इससे हमारी जैविक खेती को धरती माता को उर्वरक बना सके, क्योंकि हमारी भूमि में जीवांश का कमी हो रही है, जमीन बंजर हो रही है। इसका एकमात्र स्थायी साधन हमारे गाय का गोबर है। इसका उपयोग हम जितना अधिक से अधिक करेंगे हमारी जमीन उपजाऊ बन पाएगी
1: जी। अच्छा, अगर कोई किसान यहाँ प्रशिक्षण लेने आवे तो उसका रहना खाना फीस या कुछ क्या यहाँ लिया जाता है या निशुल्क?
0: निशुल्क सिखाया जा रहा है हमारे यहाँ पे।
1: अच्छा।
0: और हम लोग गांव में भी जाके प्रशिक्षण देते हैं, गांव किसानों को जोड़ने का हमारा प्रयास है। गाय से जितना अधिक से अधिक जोड़ पाएंगे किसानों के लिए उपयोगी रहेगा और गाय के हित में भी रहेगा।
1: एक किसान यहाँ अच्छी तरह से गाय के गोबर से वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिए तैयार हो जाए तो उसको कितने दिन प्रशिक्षण लेना जरूरी है?
0: ये तो देखो, एक तो एक सीखने के ऊपर है, कोई वैसे हम लोग 4 दिन का प्रशिक्षण रखते हैं तो अभ्यास जितना अच्छे से कर पाएगा वो सीख जाएगा आराम से।
1: अच्छा,
0: ऐसी समस्या नहीं रहती कि ना सीखे, क्योंकि थोड़ा तकनीकी विषय है, बताना पड़ता है, समय देना पड़ता है। तो 4 दिन का हम प्रशिक्षण रखते हैं अपने यहाँ पे और गांव में भी हम 4 दिन का प्रशिक्षण रखते हैं।
1: अच्छा, तो किसान भैया जैसे हमारे यहाँ आवे और वर्मी कम्पोस्ट बनाना सीख जाए तो अपने खेतन के अलावा वो ये चाहे कि मैं अपने जो वर्मी कम्पोस्ट बना के बाजार में बेचूं तो वो कहाँ जाके बेचे?
0: वो किसानों से संपर्क कर सकता है जो मालियों का काम करते हैं, फूल बेचते हैं। शहरों में ये लोगों की बहुत आवश्यकता है, वहाँ पे खाद उपलब्ध नहीं है तो अपना
1: वर्मी कम्पोस्ट,
0: हाँ नर्सरी है जहाँ पे पौधे बिकते हैं, फूल के पौधे बिकते हैं नर्सरियों में, माध्यम से किसानों के माध्यम से सिखा के बता के बेचने का तरीका भी हम लोग सिखाते हैं
1: जी,
0: मार्केटिंग भी करना सिखाते हैं।
1: तो बीरेंद्र जी ये बताओ कि आपके मन में जो है वर्मी कंपोस्ट बनाने को कैसे विचार आयो, आपने कहा दिल में सोच करके यहाँ ये तैयार करे और प्रशिक्षण देवे को आपके मन में विचार कैसे आयो?
0: क्या है कि हमारे क्षेत्र में लगभग हर घर में ऐसा कोई घर नहीं जो आजकल बीमार ना हो, तो बात यही पता चलती है कि जब तक हमारे देश में गोबर से गौमूत्र से खेतों में खाद का उपयोग करते थे तो बीमारियों का इतना प्रभाव नहीं था, लेकिन रासायनिक खादों के प्रयोग से हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे गांव में सभी जगह लगभग बीमारियां बढ़ रही हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, अस्पताल बढ़ रहे हैं, लेकिन बीमारियां कम नहीं हो रही, क्योंकि हमारा खाना पीना अगर जहरीला होगा तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो इसके लिए हमें अपनी गौ माता का गोबर का गौमूत्र का जितना अधिक उपयोग करेंगे उतना ही उत्तम रहेगा।
1: बिल्कुल। तो अब जैसे कि मान लो गांवों में ज्यादातर तो हमारे किसान भैया के पास कम पशु रह गए, 2 क्विंटल अगर हमें गोबर लेना है कितने पशु हो जाते हैं 2 क्विंटल गोबर प्राप्त है?
0: वर्मी कंपोस्ट के अलावा देखिए ऐसा है कि कंपोस्ट खाद भी है जो 1 किलो गोबर से 30 किलो भी बनाया जा सकता है।
1: अच्छा।
0: इसमें हम खाद के रूप में जो हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, घास फूस है, खरपतवार है, इनको गोबर

0: के साथ उपयोग करके अधिक से अधिक गोबर बना सकते हैं। तो गोबर से इतना नहीं बचा है कि हम वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर पाए, तो उसके लिए हम इस तरह का खाद भी बनाना सिखाते हैं जो 1 किलो गोबर से 30 किलो तक खाद बन जाता है।
1: अच्छा, तो उसकी क्या प्रक्रिया है पूरी बताओ।
0: उसकी प्रक्रिया अभी लगभग यही हमारे यहाँ गोकृपा अमृतम के माध्यम से कंपोस्ट करते हैं खरपतवार को, एग्रीकल्चर वेस्ट को और गोबर के घोल का उपयोग करके इस खाद को बनाते हैं जो किसानों को अधिक से अधिक लाभ दे सके।
1: अच्छा अच्छा।
0: वर्मी कंपोस्ट किसानों के हिसाब से थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन ये हमारा जो कंपोस्ट खाद है ये उपयोगी भी है और हमारे गंदगी को, हमारे कचड़े मचड़े का, जो भी हमारे खरपतवार है, इनका भी खेत में उपयोग करके हम खेत को उपजाऊ बना सकते हैं।
1: तो उसके लिए यहाँ किसान है क्या करना है जय पहले ते बताओ। बिल्कुल,
0: ये भी हमारे जैसे हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं गोबर से ही बनता है वो, इसमें हम खरपतवार का भी यूज करते हैं, इसमें तो लेयर बाई लेयर बनाते जाते हैं, खरपतवार गोबर का घोल, खरपतवार गोबर का घोल, मिट्टी, इस तरह से हम लेयर बना के रखते हैं। तो वो भी कंपोस्ट होने में थोड़ा समय लगता है।
1: तो गड्ढे में बनाते हैं या कैसे बेड?
0: ओपन एरिया में भी बन सकता है, इसको मिट्टी से लेप करके एयर टाइट करके उसको पकाते हैं।
1: अच्छा,
0: उसके भी 2-3 प्रकार की विधियां हैं, अगर किसान इच्छुक रहता है तो बिल्कुल हम सिखाने को यहाँ पे व्यवस्था करते हैं।
1: और तो ये जो आपने बताया कि
0: 1 किलो गोबर से 30 किलो खाद,
1: हाँ, तो इसको जो है किसान भैया अपने खेत पे बना सके।
0: हाँ हाँ, तो बना छाया में जरूरत पड़ती है, छोड़ा छाया जरूर होना चाहिए।
1: अच्छा, अब चलते चलते एक बात और जानना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि ये जो गायन को गोबर प्राप्त हुए,
0: हाँ हाँ,
1: तो या गोबर है आप जो है कहाँ के काज प्रयोग करें, या बाहर फेंकवा दें, या अपने या खाद बनावे, या किसान अंत कह दें कि या अपने यहाँ उठा के ले जाओ, कहाँ करें आपको?
0: हम लोग इसको 60 पैसे किलो के हिसाब से बेचते भी हैं यहाँ, जो किसान सीधे ले जा सकते हैं गोबर, कंपोस्ट भी बनाते हैं, गोकास्ट भी बनता है हमारे, और गोत्पाद में दीपक है, मूर्तियां हैं, इस तरह का हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है।
1: अच्छा।
0: जिसके गाय के गोबर की उपयोगिता अधिक से अधिक सिद्ध हो सके, गौमूत्र से हम फसल रक्षक बनाते हैं।
1: अच्छा,
0: और जैविक खेती को हम प्रोत्साहित करते हैं, सिखाते भी हैं, और अगर इसका उपयोग करेंगे तो हम ढेर सारी बीमारी वैसे सुरक्षित रह सकते हैं। और गाय की उपयोगिता सृष्टि की बचाने के लिए बहुत अधिक है, अगर हम जितना उसका ध्यान दे पाएंगे तो हम सुरक्षित रह पाएंगे। अगर किसान भाइयों को वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद के बारे में कोई जानकारी या खरीदना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 63-93-155-266। मेरा नाम वीरेंद्र जोशी है, मैं बिहार बन राल गौशाला में प्रशिक्षण भी देता हूं और किसानों को सिखाता भी हूं खाद बनाना, फसल रक्षक बनाना, जिससे हम लागत कम से कम कर सकें और उत्पादन को बढ़ा सकें और स्वस्थ रह सकें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।
0: राम राम जी। राम राम जी किसान भाइयों।
2: भैया, आप बातचीत सुन रहे वर्मी कंपोस्ट उत्पादक से, वीरेंद्र जोशी से बातचीत थी वीरेंद्र सिंह की। तो भैया, आपने तो एक अच्छी जानकारी ली, आप भी अपने आप तैयार कर सके हैं और अपनी खेती के काम में ले हुए और फिर जाको आप है गाय रोजगार के रूप में अपना सके हैं और आमदनी है सके हैं आपकी, और जो हमारे खेतन की माटी है वो उपजाऊ बन जाएगी। और अपने देश की माटी तो अनमोल है, अद्भुत है, जामे तो खजानो है, बस हमें आपको जाए सजानो है और ध्यान रखना है बस। तो सुने हैं या बात को जा लोकगीत में, मेरी भारत की माटी।
3: मेरे भारत की

0: गिरीश कुमार को गाए हुए। सुनो आपने भैया ये लोकगीत, तो बिल्कुल सही बात है कि हमारी जो माटी है और हमारे जो गांव हैं वो माटी से ही सजे हैं, समरे हैं। और जिन खेतन की माटी जैसे ऊसर है, तो भैया बहुत सोचे हैं और वा में लागा तू लगा दे में है, पर उत्पादन आपको ना मिले भैया। तो ऐसी बात ना है, उत्पादन मिल सके है। देखो भैया कैसे मिल सके है कि जो विशेषज्ञ बताएंगे वा अनुसार हम वा में कार्य करेंगे, तभी हमें वा में उत्पादन मिलेगा और हम वा में सुधार कर सकेंगे। तो विशेषज्ञ देंगे जानकारी ऊसर भूमि सुधार हेतु कृषि कार्य, डॉक्टर मनीष कामत दे रहे हैं भैया आपको ये जानकारी।
1: लवणता एवं क्षारीयता की समस्या कृषि के विकास के लिए गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। विश्व में जहां लगभग 1000 मिलियन हेक्टेयर भूमि

इस समस्या से प्रभावित है, वहीं भारत में 673 मिलियन हेक्टेयर भूमि ऊसरता की समस्या से ग्रस्त है। विशेषकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश एवं बिहार जैसे राज्यों में यह प्रमुखता से पाई जाती है। ऊसर भूमि क्या है? ऊसर शब्द संस्कृत के उस्तर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ बंजर है। उत्तरी भारत में ऊसर शब्द का प्रयोग लवणीय क्षारीय मृदाओं के लिए किया जाता है। इन मृदाओं को हम रेह अथवा सेम भी कहते हैं। किसान भाइयों, यह ध्यान देने योग्य बात है कि इन ऊसर भूमि का पीएच मान एवं विनियम योग्य सोडियम अधिक होता है। किसान भाइयों, वो क्या कारण है जिसकी वजह से हमारी कृषि योग्य भूमि ऊसर बन जाती है? ऊसर भूमि का प्राय शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां आमतौर पर कम बरसात तथा अधिक तापमान रहता है। उन जगहों पर लवण का संचय अधिक होता है। इसके साथ ही जिन भूमियों में जल निकास की समस्या होती है, वहाँ पानी किसी एक निचले स्थान पर इकट्ठा हो जाता है, जिससे लवणों का संचय वहीं पर हो जाता है। किसान भाइयों, जिन भूमि में भूजल का स्तर सतह के नज़दीक होता है तथा जहाँ पर सिंचाई एवं वर्षा जल भूमि में अच्छी प्रकार से नहीं जा पाता है, जिसके फलस्वरूप भूमि की ऊपरी सतहों पर लवण का संचय होता रहता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी जमीन ऊसर भूमि में परिवर्तित हो जाती है। भाइयों, अधिक समय तक लवणीय जल से खेत में सिंचाई करने से भी मृदा में लवण संचित हो जाते हैं और हमारे किसान भाई अपने खेतों को ज़्यादा पानी पिलाने के चक्कर में खेतों को खराब कर देते हैं। भाइयों, हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि हम क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग सीमित मात्रा में ही करें, क्योंकि उर्वरकों में उपस्थित लवणों की वजह से भी हमारी जमीन खराब हो सकती है। इसलिए सदैव वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई उर्वरकों की मात्रा ही अपने खेतों में डालें। किसान भाइयों, अब तक हमने ये जाना कि ऊसर भूमि क्या है और किन कारणों से सामान्य जमीन ऊसर भूमि परिवर्तित हो जाती है। अब हम ऊसर भूमि के सुधार की चर्चा करेंगे। आज के इस परिवेश में अगर हमको इस समस्या से मुक्ति पानी है, तो हमको सामूहिक रूप से ही सुधार कार्यों को करने की आवश्यकता है। मुख्यतः ऊसर भूमि को तीन प्रकार से सुधारा जा सकता है। पहला है भौतिक जल तकनीक सुधार, दूसरा रासायनिक सुधार एवं तीसरा जैविक सुधार। भौतिक एवं जल तकनीक विधि में तीन प्रमुख विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले है गहरी जुताई करना, दूसरी विधि है बालू मिट्टी का भरना तथा तीसरी विधि है सब सोइलिंग। इनके द्वारा भूमि में जल का गमन नीचे की ओर होने लगता है, जिसे हम इंग्लिश में इनफिल्ट्रेशन भी कहते हैं। इसके द्वारा भूमि की सतह पर मौजूद लवण पानी में घुलकर नीचे जाते हैं। भूमि सुधार के क्रम में एक और विधि है, जिसमें हमारे किसान भाई भूमि की सतह पर उपस्थित लवणों को हाथों से खुरच कर हटाते हैं। जब वातावरण का तापमान 40 डिग्री से अधिक हो, तो भूमि में उपस्थित लवण वाष्पीकरण के द्वारा भूमि की ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, जो एक सफ़ेद चादर जैसी परत बना लेते हैं। इसी परत को खुरच कर हमें खेत से बाहर करना होता है। ऊसर भूमि को सुधारने की एक और विधि है, जिसको हम निक्षालन कहते हैं। इसको इंग्लिश में लीचिंग भी कहते हैं। भाइयों, इस विधि के लिए हमको ये ध्यान देना होगा कि सिंचाई के लिए उपलब्ध जल की गुणवत्ता अच्छी हो तथा भू जल का स्तर भी नीचे होना चाहिए, अन्यथा पानी नीचे ना जाकर सतह पे ही रह जाएगा। निक्षालन की इस प्रक्रिया में किसान भाई अपने खेतों के चारों तरफ मेड़ बना देते हैं तथा खेतों को छोटी छोटी क्यारियों में बांट कर उनमें पानी भर दिया जाता है, ताकि खेत भी ऊपरी सतह पर उपस्थित लवण पानी में घुलकर भूमि में नीचे की भीतरी सतहों में चल जाते हैं। ऊसर भूमि में रासायनिक सुधारकों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। रासायनिक उपायों में सोडियम युक्त मृदाओं को जिप्सम, फॉस्फोजिप्सम, सल्फर, सल्फ्यूरिक अम्ल एवं चूना पत्थर आदि का प्रयोग कर ऊसर मृदाओं को सुधारा जाता है। जैसा कि हमें ज्ञात होना चाहिए कि ऊसर भूमियों में सोडियम आयंस की मात्रा हमेशा अधिक होती है, और रासायनिक सुधारकों में हम सबसे ज़्यादा जिप्सम का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो ये आसानी से मिल जाता है और दूसरा ये सस्ता होता है। लेकिन किसान भाइयों, जिप्सम मिलाने पर यह ध्यान रखना कि जिप्सम भूमि में उपस्थित सोडियम आयंस के साथ में रासायनिक क्रिया कर उन्हें अपने कैल्शियम आयन से विस्थापित कर कैल्शियम क्ले में बदल देता है, जिसकी वजह से ही आपकी ज़मीन भुरभुरी हो जाती है। खेत में हम कितनी मात्रा में जिप्सम डालें, यह भी एक बहुत अच्छा बात है जो हमें पूछनी चाहिए, जाननी चाहिए। इसका निर्धारण भूमि की पीएच मान एवं मृदा की इसी पर निर्भर करता है। अतः इस कार्यक्रम को सुन रहे समस्त किसान भाइयों को मैं इस कार्यक्रम

के माध्यम से सलाह देना चाहता हूँ कि ऊसर भूमि सुधार में जिप्सम का प्रयोग करने से पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। इसके द्वारा ही अपनी भूमि में जिप्सम कितनी मात्रा में डालना है यह पता चलेगा और इसको आपको विशेषज्ञ द्वारा भी जान सकते हैं। ऊसर भूमि सुधार में जैविक सुधार की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें कार्बनिक पदार्थ सड़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बनिक अम्ल पैदा करते हैं जो अघुलनशील कैल्शियम लवणों को विलय करके मृदा की क्षारीयता कम करते हैं। उदाहरण के लिए किसान भाइयों को अपने खेत में गोबर की खाद अधिक से अधिक मात्रा में डालनी चाहिए तथा हरी खाद के रूप में ढैचा की फसल को लेना चाहिए तथा कटीली नामक खरपतवार का प्रयोग भी हम भूमि की क्षारीयता को कम करने में कर सकते हैं। जैविक विधियों में कृषि वानिकी का एक

0: में कर सकते हैं। जैविक विधियों में कृषि वानिकी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें कीकर का प्रयोग भी हम क्षारीयता को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा नीम एवं शीशम आदि का भी उपयोग कर सकते हैं। इस ऊसरता की समस्या से निजात पाने के लिए इस ऊसरता की समस्या से निजात पाने के लिए हमारे किसान भाइयों को ये चाहिए कि वे मृदा में मौजूद लवणों की मात्रा के अनुसार फसलों का चयन करें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हमारे देश में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जो कि करनाल में स्थित है, जिसका प्रमुख उद्देश्य ही लवणता के सुधार के लिए नित नई तकनीकों को ईजाद करना, ताकि किसान भाई उनके उपयोग से इस ऊसरता से छुटकारा पा सके। ये संस्थान लवणरोधी किस्मों के विकास के साथ साथ कौन सी फसल किस क्षेत्र में उपयुक्त रहेगी ये बताता है, जो कि इस प्रकार है। जैसा कि उच्च लवण सहिष्णु मृदा में जौ, ढेचा, सरसों, कपास आदि फसलों को ले सकते हैं, जबकि सब्जी वर्गीय में हम शलजम, चुकंदर, पालक, मूली तथा फलों के अंदर हम खजूर एवं फालसा को आसानी से ले सकते हैं, जबकि मध्यम लवणीय मृदा के अंदर हम गेहूं, बाजरा, ज्वार, अरहर, जई, धान आदि की फसल ले सकते हैं, और सब्जियों में हम टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, आलू, गाजर, प्याज, खीरा, लौकी, करेला का उत्पादन सफलतापूर्वक कर सकते हैं। जबकि न्यून लवण सहिष्णु मृदा के अंदर मूंग, उड़द, चना, मटर, सनई व सब्जियों में सेम तथा मूली व फलों में बेर, नींबू, नारंगी आदि हम सुविधापूर्वक ले सकते हैं। भाइयों, अब हम फसलों की उन प्रजातियों तथा किस्मों की बात करेंगे जो ऊसर भूमि में भी अच्छी तरीके से उग सकती है। जैसे कि धान की फसलों के लिए ऊसर 2, ऊसर 1, CSR 10, IRR 8 जया है, जिनको हम ले सकते हैं, तथा गेहूं में KRL 210, 213, KRL 19 तथा KRL 1-4 है। मैं आपको ये बता दूं, ये गेहूं की ये फसल केंद्रीय मृदा एवं लवणता संस्थान द्वारा ही निकाली गई है। इसके अलावा जौ के लिए DL 70, DL 36, DL 88 तथा DL 3 भी है, और सरसों की फसल के लिए NDR 8501, T59, RLM 198 तथा प्रकाश आदि है। किसान भाइयों, एक बात हमें हमेशा सदैव याद रखनी चाहिए कि भूमि को खाली नहीं छोड़ना, अन्यथा वो वापस अपनी पहले जैसी अवस्था में आ जाती है। ऊसर भूमि की समस्या को ध्यान में रखते हुए ही भारत सरकार द्वारा कुछ सामाजिक भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख रूप से है IWDP तथा MGNREGA जैसी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, जिनके द्वारा हम बंजर भूमि सुधार कार्यक्रम में सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। इन योजनाओं में से सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, जिसको हम IWDP तथा हरियाली कार्यक्रम भी कहते हैं। इस योजना को वर्ष 2009 में बदलकर एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम कर दिया है। इसके तहत बंजर भूमि विकास लोगों की भागीदारी से ही किया जाता है। इसके तहत मृदा संरक्षण उपाय, प्राकृतिक संरक्षण के उपाय में कृषि वानिकी एवं उद्यानिकी को प्रोत्साहन देना आती है। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जन भागीदारी पर आधारित है। इसके तहत लोगों को रोजगार के साथ साथ ही यह भी कार्य करते हैं कि वे बंजर भूमि का विकास कर उसे खेती योग्य बनाकर देश के विकास में एक सक्रिय भागीदारी निभाएं।
1: तो भैया, आप ले रहे ये जानकारी ऊसर भूमि सुधार हेतु कृषि कार्य विशेषज्ञ है डॉक्टर मनीष कामत। तो भैया, अब पता है समय के अनुसार सारे कार्य करने चाहिए। अब हमारी घड़ी की सुई भी कह रही है कि आज के ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम को समय हुए अब संपन्न। कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को हमारी राम राम।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया ममता रानी ने। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन।

राजेश किशोर में अभी आप सुन रहे थे बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म से सौम्य की रचना, संदीप चौटा का संगीत निर्देशन था। आइए अब सुनते हैं A.R. रहमान के स्वर में जोधा अकबर फिल्म से जावेद अख्तर की ये भक्ति रचना, संगीत A.R. रहमान का है।

ए आर रहमान के स्वर में अभी आप सुन रहे थे जोधा अकबर फिल्म से जावेद अख्तर की ये भक्ति रचना। ए आर रहमान का संगीत निर्देशन था। संध्या वंदन कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति जोगन फिल्म से मीरा बाई की रचना, भूलो सिरानी का संगीत, स्वर है गीता रॉय का।

गीता रॉय के स्वर में अभी आप सुन रहे थे जोगन फिल्म का ये भजन, रचना मीराबाई की थी, संगीत निर्देशन बुलो सी रानी का था। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति, पुष्पा पगधरे और सुषमा श्रेष्ठ के युगल सुरों में। फिल्म का नाम है अंकुश, अभिलाष की रचना, संगीत कुलदीप सिंह का।

0: अभी आप सुन रहे थे पुष्पा पगधरे और सुषमा श्रेष्ठ के सुर में अंकुश फिल्म का ये भजन। रचना अभिलाष की थी, संगीत कुलदीप सिंह का था। इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम ये अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रज काव्य सुधा के क्रम में लीजिए सुनिए हरि बाबू ओम का ब्रज भाषा काव्य पाठ।
1: बहुत आज के काव्य पाठ को विषय है वन्य जीव संरक्षण। विषय में प्रवेश करूं, बाकी भूमिका में प्रस्तुत हैं ये छंद। भौतिकवाद

भौतिक ता मार गई रेल, अब जीवन की जीवन को जीनो बस वेद को विधान है। कि भौतिक ता मार गई रेल, अब जीवन की जीवन को जीनो बस वेद को विधान है। और आदमी में आदमी को ढूंढ रहे हो आदमी, आदमी में आदमी को ढूंढ रहे हो आदमी, आदमी के ढांचे में बड़ो शैतान है। इंसान बनाया था इंसान बना नहीं, खुद पर खुदा ओम खुद परेशान है। और मानवता मानव को छोड़ गई बहुत दूर, मानवता बिन आज दुखी भगवान है। कि मानवता मानव को छोड़ गई बहुत दूर, मानवता बिन आज दुखी भगवान है। बुद्ध श्रेष्ठ बन मानव तेने भावई कुंबो डारो है, बुद्ध श्रेष्ठ बन

है, बुद्धि को विकास कहें जीवन को नासी आए। और मानव की मत देखो कैसी गई मारी है, सुखदाई दुनिया में दुख पैदा करके हूं, अपने ही आप माने करी होशियारी है। जग के अनेक जीव बन गिर नष्ट किए, धरती खोद खोद पोली कर डारी है। वन्य जीव संरक्षण है गयो जरूरी बहुत, वन्य जीव संरक्षण है गयो जरूरी बहुत, मानवता मानव ने काहे को बिसारी है। कि वन्य जीव संरक्षण है गयो जरूरी बहुत, मानवता मानव ने काहे को बिसारी है। बुद्धि को विकास कहे जीवन को नाश आए, मानव की मत देखो कैसी गई मारी है। मानव मत या कलयुग मारी, स्वार्थ वंद भयो खलवारी। मान

ऊपर है जगत के जीवन में, के बुद्ध ते तो ऊपर है जगत के जीवन में, जीवन में बुद्ध ते न ले तो सब हाथ रे। और सबके जो ऊपर है बाऊ का भरोसो नाए, सबके जो ऊपर है बाऊ का भरोसो नाए, सब निज हाथ माने यो ही पछतात रे। और जन्म ते रोमनो है रोमनो न पूरा होए, जन्म ते रोमनो है रोमनो न पूरा होए, रोमते ही रोमते चो जीवन बितात रे। जन्म ते रोमनो है रोमनो न पूरा होए, रोमते ही रोमते चो जीवन बितात रे। प्रकृति ते छेड़छाड़ कर तो नो आदमी, मानव के संकट की होती नहीं बात रे। बुद्ध श्रेष्ठ बन मानव तेने,

अभी आप हरिबाबू ओम का ब्रजभाषा काव्य पाठ सुन रहे थे। इसी के साथ ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम सिमसलो डॉक्टर में इस गुरुवार 11 जून 2026 को 12 बजे दिन में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है अस्थमा, टीबी, फेफड़ा एवं श्वास संबंधी रोग, कारण, लक्षण एवं निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर लव गुप्ता, सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट, अस्थमा, टीबी, फेफड़ा और श्वास रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-253-0135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412-225575 पर संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में सहभागिता निभा सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:18 हो चुके हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा अब से कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर पारित किया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिले सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में भाजपा के शीर्ष नेता, एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहे। पेश है एक रिपोर्ट।
4: बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और 2047 तक देश को विकसित देश में बदलने के मोदी सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन और नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
1: श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री मोदी को बधाई दी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई।
2: राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एवं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु उनके नेतृत्व की प्रशंसा करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय लोकतंत्र का ये अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। इस क्रम में लखनऊ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हनुमानु सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं अयोध्या समेत जौनपुर के श्री गौरी शंकर धाम मंदिर, देवरिया के सोमनाथ मंदिर और राज्य के अन्य मंदिरों में विशेष पूजा पाठ और हवन का आयोजन किया गया। कानपुर देहात में लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपोत्सव स्वच्छता एवं सेवा कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। दिन भर चले कार्यक्रमों के तहत विभिन्न मंदिरों, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान तथा पौधारोपण किया गया। वहीं अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सेवा संस्थानों में फल, दवा, वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रसाद वितरण, आतिशबाजी और मिठाई बांटकर लोगों ने अपनी खुशी व्यक्त की। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अनेक नई उपलब्धियां हासिल की हैं। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: आकाशवाणी समाचार। सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है।

0: कार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण बीबी जीरामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों के लिए इंटरिम अवलोकेशन में उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए धनराशि की व्यवस्था है। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ईओडब्ल्यू की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने ईओडब्ल्यू की आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई और दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पेश है एक रिपोर्ट।
2: बैठक में आर्थिक अपराधों से संबंधित लंबित जांच, विवेचनाओं, गिरफ्तारी, अभियोजन, जन जागरूकता गतिविधियों और संगठनात्मक सुधारों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनमें अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को गति दी जाए, प्रत्येक मामले की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में बताया गया कि जांच, विवेचना और कार्यवाहियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराधों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए 1,183 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर पारित किया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। विकसित भारत जीरामजी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिले सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी। शाम सुहानी प्रोग्राम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अरविंद कुमार।

श्रोताओं, दिन भर की भागदौड़ के बाद जब सूरज अपने सुनहरी किरणों को समेटकर क्षितिज के आगोश में उतरने लगता है, जब आसमान पर संध्या के रंग धीरे धीरे बिखरते हैं और हवाएं दिन भर की थकान को सहलाने लगती है, तब मन चाहता है कुछ मधुर बातें हों, कुछ प्यारे गीत हों और अपनों का साथ हो। शाम की चादर ओढ़े जब धरती मुस्कुराती है, यादों की महफिल सजती है, रो गुनगुनाती है, दूर कहीं कोई अपना संदेश भेज जाता है, तब हर शाम सचमुच सुहानी बन जाती है।

अलबेला फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण की रचना थी, सी रामचंद्र का संगीत निर्देशन था, आवाज थी लता मंगेशकर और चितलकर की। श्रोताओं, रेडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये दूरियों को भी रिश्तों में बदल देता है। कोई गांव से संदेश भेजता है, कोई शहर से, कोई खेतों से, तो कोई अपने घर की चौखट से। लेकिन जब वे संदेश हमारे पास पहुंचते

करते हैं तो लगता है जैसे पूरा देश, पूरा विश्व एक ही परिवार बन गया हो। बहुत सारे श्रोता व्हाट्सएप के जरिए पहले से ही जुड़े हुए हैं और लगातार जुड़ रहे हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी शिवन्या और अनु गोस्वामी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से ही रमणी वर्मा, परस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। दरियापुर भावली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप अशोक येले, शेरी वटनी रकुल से अरुणा बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जूली और जगदीश जौहरी का संदेश में मिला है। बुलढाणा महाराष्ट्र से वासुदेव बोधवड़े, अनीता और रमेश राव गाठोड़े। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, कालका से। कासगंज उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं योगेश नायक, गीता नायक, निहारिका, सुशांत, सुरेश चौरसिया, फरुखाबादी। सांगली से हनुमंत शिंदे, संगीता ऋषिकेश और वसुंधरा। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा का संदेश मिला है। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल शिवा, सनीता, पुष्पा, योगिता, अंजू, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी। सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। कुंडलवली महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद और प्रदीप। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा के संदेश में मिला है। सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गंजेश, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, अच्छे लाल, बुल्की वाली और फलना जहां। पैठर से बाबा साहब सरगर, ज्योति, शुभम और महेश। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनुष्का और तन्मय गजभिये। कुछ शब्दों में सिमटा होता है प्यार श्रोताओं, कुछ संदेशों में मिलता है संसार। रेडियो के इस मधुर डगर पर हर श्रोता हमारा परिवार।

शहनाज और शबीर कुमार की आवाज़ों में गीत मेरे प्यार का, फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इब्राहिम अश्क की रचना थी, मनोहर राय का संगीत निर्देशन था। बठिंडा पंजाब से जुड़े हैं परम सिंह चौड़ा, मनजीत कौर चौड़ा, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिंहू, एकम दमन और अभिजोत। अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, सलमा सदर हाम और इनके परिवारीजन। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तड़े, वसंतराव भोजने, पिया स्नानकर और तुषार करंगले। मंगलवेढ़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा, आयुष, विवेक, आयुषी। बागपत से संजय ढिंगिया, नमन और अपार ढिंगिया। डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, लकी और तानिया नारंग। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, वैदेही, अंशिका, अंकिता और जयमंत्री केवट। दुर्गा कॉलोनी हाथी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। पलारी छत्तीसगढ़ से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, अन्नपूर्णा वर्मा और यशस्वी वर्मा। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम गुप्ता। श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति, भूमिका। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा का संदेश। गुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत और सोनम। बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, प्रतीक, रोशनी और प्रांजल। श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और इनके ढेर सारे साथीगण हमें सुन रहे हैं।

सरगांव छत्तीसगढ़ से सरगांव बाजार के श्रोता नसीब मोहम्मद, सलमा, रेहान और फैजान, लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनो, गुरलाल, अविराज, पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रौनिक, रविंद्र, नागपुर के श्रोता हैं काशी निवास से प्रकाश रमहड़े, भारती, जानवी, वैष्णवी और हर्षल, सीतामढ़ी के श्रोता हैं अकरम हुसैन और इनके ढेर सारे साथीगण, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल और निशा, यवतमाल से राहुल मरवर, सरला मनवर, रोशनी, चेतन, प्रियंशी और विशाल, वाशी महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा परिधि और मायरा सुरोशी, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। श्रोताओं से निवेदन है कि अपना लोकल एड्रेस ना देकर के सिटी का नाम लिखें। सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक। श्रोताओ, सूरज ढल रहा है पर उम्मीदों का उजाला अभी बाकी है, दिन विदा ले रहा है पर यादों की महफिल अभी भी बाकी है। आइए आपको ले चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर, शमशाद बेगम की आवाज में जोगन फिल्म का गीत आप तक पहुंचा रहे हैं मीराबाई की रचना, बुलोसी रानी का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे जोगन फिल्म का गीत शमशाद बेगम की आवाज में। जबलपुर मध्य प्रदेश से जुड़े हैं सोनाली दुबे, मोनिका रानू और रानू। खड़ग सिंह छोंकर एडवोकेट प्रकाश नगर मथुरा से। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकास्ट्रो, रोजी परल और विलिस डिकास्ट्रो। आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ साइना और निवान शर्मा। बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। खंडवा से राजेश सिंह, सुरेखा, शुभम और अक्षय। दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजीव, सुमेश और प्रमिला बंछूर। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति सुरभि, अश्विन मंगलबीन, राजेंद्र जी शाह। तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन, लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाश, टी पनहत और गुरुशब्द। वस्टिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। जालौन से सतेंद्र कुमार चंसौलिया, सार्थक, आदर्श, अलौकिक चंसौलिया। दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता और केशोरी धान खुराना। नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता सूरज और पी आर जैन। तेलंगाना से नईमुद्दीन, सैयद खलील और इनके ढेर सारे साथीदार। राजनगर बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, शुभ नारायण महतो, भुलिया, संगीत और पासवान। श्रोताओं से एक विशेष निवेदन है कि जब भी आप संदेश भेजें तो आगे कोई प्रीफिक्स ना लगाएं, भाई, श्रीमान, श्रीमती, ये सब ना लगाएं, केवल अपना नाम लिखें और अपना संक्षेप में पता लिखें। बठिंडा पंजाब से इंजीनियर अशोक ग्रोवर, प्रवीण, विक्रमजीत अनमोल, प्रवीण, पवनीत। खुपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहार, पोपलघर, चंद्रकांत और देवीदास। और अब कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम देश गान।

अभी आप सुन रहे थे घनश्याम दास के स्वर में ये देशभक्ति पर रचना। इसी के साथ देशगान का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में NDA की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने NDA सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
2: NDA के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8%

0: रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
0: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
0: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर, सही स्थान पर, सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने

0: देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
0: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 2,300,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 1,600,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है।

0: नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled, says Viksit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 crore se zyada logon ka garibi se bahar nikalna ye dikhata hai कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
2: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फागुन फिल्म का गीत। हमारे जलाल आबादी के बोल थे, ओ पी नैय्यर का संगीत निर्देशन था।

शमशाद बेगम की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे मजरूह का लिखा गीत, सीआईडी फिल्म से। संगीतकार थे ओपी नैयर। सुहाने तराने कार्यक्रम की अगली और आखिरी पेशकश हम आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म नागिन से। लता मंगेशकर की आवाज़ में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये गीत है, जिसे संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने।

नागिन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल थे राजेंद्र कृष्ण के, संगीत हेमंत कुमार का था। इसी के साथ सुहाने तरहने कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए श्रोताओं। स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम सिमसिला डॉक्टर में इस गुरुवार यानी 11 जून में 12 बजे दिन में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है अस्थमा, टीबी, फेफड़ा एवं श्वास संबंधी रोग, कारण एवं निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर लव गुप्ता, सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट, अस्थमा, टीबी, फेफड़ा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। जानकारी के लिए हमारा टेलीफोन नंबर होगा 0565-2530-135। संदेश भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा 9412225575। सूचना समाप्त हुई। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा अब से थोड़ी ही देर में।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर केजी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार।
2: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
4: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थशेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़ी पैगाम लगी, इसीलिए हो रहा है

0: कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत UN जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट भारत आए हैं। और हमारी प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले, अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
2: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे तो मैं इसमें दो तीन महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांधकर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था, उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बिफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें CDS जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है। यह मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे, हमने यहाँ आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है। जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है। और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है, उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है, 26 जनवरी में तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूल चूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे, वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को

0: हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइंस खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है। अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शिखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें, तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
2: देखिए, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है, और एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म एमएसपी रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने एमएसपी को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक है, जिन्हें आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेके चल रहा है, उसमें अप टू डेट वेदर इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो, उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफें एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया।

0: है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
1: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं भी। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी छोटे से दुकान में भी यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी यूपीआई पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव-गांव तक यूपीआई पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में यूपीआई और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है खुले पैसे के।

0: आज अगर आप देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है, खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहां से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है। आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड राशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूं, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूं। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव गांव में जो है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे, कि आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है, आज निवेश जो है गांव गांव तक पहुंच रहा है। उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं। किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है। यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है, आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज
1: जी
0: जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी कुछ और विषय शेखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे, और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की। अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सब से बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, पर पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी, देखिए ऊर्जा भी बड़ी चीज है। आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख पे अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारे सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी

0: इसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले, और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है। उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है। आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है। ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है, भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है। इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर शिक्षण की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ। दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण, यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए, कई बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते आपको लग रहा है, जैसे दिल्ली पहुंचेंगे एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है। आनंद जी, जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं, आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के एकजुट होके सरकार और नागरिक और देश प्रथम ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे, कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वोप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वोप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत की संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में, इसको हमने रीइंट्रोड्यूस

0: किया, हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्राधिशीघ्र, जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है, हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल, जो हमारे यहाँ, आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट, हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई, जो भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है, हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी, तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदलकर जो है हमको जो है हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है
1: जी
0: उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था
1: जी
0: कि
1: सर,
0: सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे। जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है। जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहां परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर, विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल विकसित भाव, ने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है आनंद जी, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारतीय भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है। कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं। वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा।

0: इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: चर्चा का विषय है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिन के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया है और अब वो आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय

0: नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। यह प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसके संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टेलो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आशा भोसले की आवाज़ में अंगूर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। रचना गुलजार की थी, संगीत आर डी बर्मन का था। आइए अब सुनते हैं मधुमति फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में शैलेंद्र का लिखा हुआ यह गीत, सलिल चौधरी का संगीत निर्देशन है।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे मधुमती फिल्म के लिए। शब्द रचना शैलेंद्र की थी, संगीत सलिल चौधरी का था। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए एक बार फिर से लता मंगेशकर की आवाज में आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है परख, शैलेंद्र की रचना, सलिल चौधरी का संगीत निर्देशन।

परख फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज में। गीत सलिल शैलेंद्र का था और संगीत सलिल चौधरी का था। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाजें हैं हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है जाल, बोल साहिर के हैं, संगीत एसडी बर्मन का।

अभी आप सुन रहे थे हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में जाल फिल्म का गीत। गीतकार थे साहिर, संगीत सचिन देव बर्मन का था। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाइड फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत तैयार किया है सचिन देव बर्मन ने।

ये थे मोहम्मद रफ़ी फिल्म गाइड के लिए। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीत SD बर्मन का था। फिल्म संगीत की अगली पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पुष्पांजलि से। आवाज़ आशा भोसले की है, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

आशु भोसले की आवाज़ में पुष्पांजलि फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उस्ताद अमजद अली खान का सरोद वादन। राग है मालकॉन्स, तबले पर संगति सुभाष की है।

0: अभी आप सुन रहे थे अमजद अली खान का सरोद वादन, राग था मालकोंस। हम आकाशवाणी की मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित तो प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत हो गए। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 400